मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

बारिश के रिमझिम फुहारें और चमकते सूरज की गुनगुनी धूप, हरे भरे पत्तों से लदी पेड़ों की शाखें और नदियों में उछलती लहरें, कहीं उमड़ते घुमड़ते बादल तो कहीं मंद मंद सरसराती हवाएं, धरती की गोद में मुस्कुराते हुए प्रकृति के ये खूबसूरत नज़ारे दिल को कितना आनंद देते हैं ना। और ऐसे सतरंगी मौसम में माटी की सोंध ही खुशबू लिए नमस्ते लखनऊ के एक और ज्ञान और मनोरंजन से भरे अंक के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात लखनऊ, नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं। सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज

0: दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ में करते हैं सफर की शुरुआत किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के साथ। आज कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की दलहनी फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, तो उनमें सामयिक प्रबंधन क्या करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसके सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दलहनी फसलों में इस समय अरहर, उड़द और मूंग खेत में है, तो किसान भाई सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें?
3: किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो खरीफ की तीनों दलहनी फसलें हैं बड़ी ही प्रमुख फसलें हैं, जिसमें कि अरहर विशेष करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, फिर इसके बाद उड़द है, इसके बाद मूंग है, और तीनों दलहनी फसलों की बुआई लगभग किसान भाई पूरा कर लिए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पहली प्रक्रिया है ये है कि किसान भाई जो है, चूंकि इस समय बरसात हो भी रही है, कहीं नहीं भी हो रही है, अगर जहाँ ज्यादा बरसात हो रही है तो जिसे अरहर के खेत में, चूंकि अरहर की जड़ें जो है मूसला जड़ें होती हैं, एकल जड़ें होती हैं, तो अगर पानी का भराव अगर एक दिन पूरी तरह से रहेगा खेत में 1 फीट या उससे भी ज्यादा, तो निश्चित तौर पर अरहर की फसल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो अरहर के खेत में पूरी तरीके से जल प्रबंधन, जल निकास की पूरी व्यवस्था करें कि पानी उसमें किसी भी तरीके से 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए
2: जी।
3: साथ ही साथ हमारी जो उड़द की फसल है वो भी उसी तरीके की, सभी हमारी जो दलहनी फसलें हैं ये मूसला जड़ की होती हैं, इसमें एक तरह से जो है शाखाएं निकलती हैं, तो इन फसलों में अच्छी तरीके से जल का जो प्रबंधन है, जल का अगर निकास जो बरसात का है उसको किसान भाई कर लेते हैं तो जो फसलों की बढ़वार है एक अच्छी होती है, उनमें जो है फूल अच्छे आते हैं और फलियां अच्छी लगती।
2: डॉक्टर साहब, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होंगी, वैसे तो बरसात का मौसम है
3: जी, जी, जी।
2: लेकिन कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होंगी जब फसल को सबसे ज्यादा प्यास लगती होगी?
3: हाँ हाँ, देखिए ऐसा है कि क्रांतिक अवस्थाएं तो विशेष करके जैसे उड़द और मूंग तो ऐसी प्रजातियां विकसित हो गई हैं जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से, अगर लोग जैसे विराट है, शिखा है और भी सूर्या है और हीरा है, सब प्रजातियां जितनी भी हैं ये सब एक तो एक साथ फलियां पकती हैं और 55 से 60 दिन में जो है पक्के तैयार हो जाती है। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि भाई अगर किसान भाइयों ने बुआई किया है और बरसात नहीं हुई है, तो आज जो है अगर आपने जुलाई के द्वितीय पखवाड़ा में बोया है तो फसल आपकी 30-35 दिन की हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत अगर जहां बरसात हो रही है ठीक है, नहीं है तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत पानी का प्रबंधन करना

0: चाहिए, क्योंकि ये कम दिन की फसल है, तो इसमें पानी का प्रबंधन कर देने से फसल की जो है बढ़वार अच्छी होगी, उसमें फूल आएंगे और फलियां अच्छी लगेंगी। उसी प्रकार से उड़द की भी फसल 70 से 80 दिन में पकती है, तो उसमें भी अगर पानी की अगर कहीं कमी है तो उसमें भी पानी का प्रबंधन करें। अरहर में इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरहर हमारी जो है, चाहे अगेती अरहर है तो 140 दिन की होती है, जो दीर्घकालीन जो चैतिया अरहर जिसको बोलते हैं वो 250 से 260 दिन में होती है, तो उसमें पानी देने की कोई जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन इन दलहनी फसलों में कैसे हो?
0: जी, बहुत अच्छी बात है। 8-10 साल में दलहनी फसलों के लिए, विशेष करके खरीफ दलहनी फसलों में, आप समझते हैं कि खरीफ में चूंकि उच्च तापक्रम होता है और जो आर्द्रता का प्रतिशत है वो ज्यादा होता है, तो जब आर्द्रता का प्रतिशत ज्यादा होता है तो उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा खरपतवार नाशी जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनके परिणाम बड़े अच्छे आते हैं। अभी रबी दलहनी फसलों के लिए कोई भी बाद में बुआई के खरपतवार नाशी कोई भी नहीं है,
1: यानी पोस्ट इमरजेंस
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: पोस्ट इमरजेंस खरीफ के लिए है, क्योंकि आर्द्रता अच्छी रहती है उसमें काम करता है, तो ये खरपतवार जो है ना, चूंकि उड़द मूंग कम दिन वाली फसल है तो इसमें प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है,
1: जी
0: तो इसके लिए जो है ना एक इमेजा थापर दवा जो है 400 से 500 ग्राम जो है इस दवा का घोल बना करके, अगर किसान भाई इसका 20 से 25 दिन के जो हमारी खड़ी फसल है उसमें प्रयोग करते हैं इमेजा थापर का, तो आपका विशेष करके जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे दलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9794769353, 9794769353, 97947-69353।
1: डॉक्टर एसके सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और दलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। सुबह के 6:10 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ में अगला कार्यक्रम सुविचार, आज का विषय जीवन मंथन।
3: कि अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बुराइयां सामने आती हैं, चाहे समाज सेवा का कार्य हो अथवा बड़ा से बड़ा धार्मिक आयोजन हो, और चाहे जितने निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए फिर भी आलोचनाएं और बुराइयां बाधाएं अवश्य आती हैं, और बहुधा अच्छा कार्य करने वाले निराश हो जाते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में प्रकृति का नियम ही है कि जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलता है। हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन आता है, जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। साक्षात ईश्वर ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष बाहर आया, बाद में अमृत। साक्षात ईश्वर के आदेश से किए गए समुद्र मंथन में पहले विष ही निकला। संदेश मिलता है कि मंदराचल रूपी मन को ईश्वर के आधार पर स्थिर करके बासुकी नाग रूपी प्रेम की डोर से मंथन करोगे तो भी पहले विष ही निकलेगा, और अगर विष को सहलोगे तो बाद में अमृत भी मिलेगा। समुद्र मंथन की तरह जीवन का मंथन भी 16वें वर्ष में प्रारंभ होता है, जिसमें पहले विषय रूपी विष आते हैं। चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, उसके जीवन में विविध कष्टों के रूप में विष आते हैं। महापुरुष हंसते हंसते विष का पान करते हैं, अर्थात कष्टों को सहन करते हैं, और बाद में उन्हें अमृत के रूप में ज्ञान का अमृत मिल जाता है। जीवन में हर अच्छे कार्य में जो बुराइयां मिलती हैं वे ही विष हैं, परंतु विष को कैसे सहन किया जाए इसका उत्तर भी समुद्र मंथन की कथा में स्पष्ट किया गया है। जो ही समुद्र से विष बाहर निकला देवता घबरा गए। विष की दुर्गंध उनसे सहन न हुई तो प्रभु ने विषपान हेतु शंकर जी को बुलाया। जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा होती है वो विष को पचा सकता है। इस संसार में निंदा और कर्कश वाणी का विष सभी को सताता है।

0: परंतु ज्ञानियों को नहीं। जब शिव जी से विष पीने के लिए कहा गया तब वे मान गए, क्योंकि जो दूसरों को सुखी करने के लिए दुख सहता है वही शिव है, तथा जो दूसरों को दुख देता है वो जीव है। अतः शिव ने विष का पान किया, परंतु एक महानतम सूत्र दे दिया कि विष को गले में धारण करना है, पेट में नहीं ले जाना है और बाहर भी नहीं लाना है। आशय स्पष्ट है कि कर्कश वाणी एवं निंदा आदि का जो विष है उसका स्थान गला होना चाहिए। अगर वो पेट में गया तो मृत्यु हो जाएगी और बाहर निकला तो संघर्ष होगा। समुद्र मंथन का पौराणिक वर्णन अनेक सूत्रों का प्रतिपादन करता है, जो जीवन के लिए प्रेरणादायी ही नहीं मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर गौ माता कामधेनु निकली। कामधेनु को ऋषि मुनियों और तपस्वियों को दे दिया गया, अर्थात जीवन में जब भी प्रथम संपत्ति मिले उसी पर उपकार में लगाओ। तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो कीर्ति का प्रतीक है। सद्गुणी को कीर्ति से बचना चाहिए क्योंकि इससे अहंकार आता है, अतः घोड़ा राक्षसों को दे दिया गया। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी, इसकी आंखें छोटी होती हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, अतः ऐरावत हाथी देवताओं को दे दिया गया। पांचवें नंबर पर पारिजात का वृक्ष और अप्सरा निकली, जिन्हें सद्गुणों के प्रतीक देवों को दिया गया। छठे नंबर पर लक्ष्मी जी निकली, वे सर्वगुण संपन्न नारायण का वर्णन करती हैं। लक्ष्मी जी ऋषियों के क्रोधी स्वभाव, देवों के कामी स्वभाव, परशुराम के निष्ठल स्वभाव, मार्कंडेय ऋषि के अनाशक्त भाव तथा शिव के अमंगल वेश के कारण उनकी तरफ नहीं जाती, अर्थात जीवन मंथन में लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो धीर वीर गंभीर सदाचारी होते हैं। मंथन की क्रिया में सातवें नंबर पर मदिरा आती है, वो राक्षसों को तथा अंत में अमृत कलश लेकर धनवंतरी जी प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में विष से अमृत प्राप्त होने का क्रम अत्यंत सांकेतिक है। लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करना है तो कर्म करते ही कुबेर का खजाना नहीं मिलेगा, कार्य प्रारंभ करते ही विष रूपी कष्ट प्रारंभ होंगे। विष को धारण करने के बाद छठवें नंबर पर लक्ष्मी जी आएंगी, और लक्ष्मी जी भी सीधे आपकी तिजोरी में तब तक नहीं जाएंगी जब तक आपका तिजोरी रूपी मन साफ स्वच्छ और परोपकारी नहीं है। रातों रात अमीर बनने वाले लोग भले ही नकली नोट छापकर या डकैती लूट हत्या या नकली माल बेचकर पैसा कमा लें, परंतु वो लक्ष्मी उनके पास टिकने वाली नहीं है। अतः अमृत मंथन के आध्यात्मिक चिंतन से धैर्य के साथ मेहनत करते हुए ज्ञान का अमृत पाने हेतु अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। हमें विश्वास रखना होगा सत्कर्म का मंथन चलता रहे और एक दिन अमृत अर्थात उद्देश्य लक्ष्य और सफलता की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होगा।
1: जीवन मंथन इस विषय पर आधारित था कार्यक्रम सुविचार। यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। जारी है नमस्ते लखनऊ का सफर। सुबह के समय हो चले हैं ईश्वर भक्ति के गीतों से सजे कार्यक्रम आराधना की।

हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन जीवन को बदलने का अवसर है। ईश्वर की आराधना में बीता हर पल ही जीवन का सार है।

धन्यवाद। जो आपने दिया है वो आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान।

हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका

भक्ति हो, प्रेम हो, हे प्रभु तुम ही मेरी साधना हो। सुबह की पहली आराधना हो तो रात्रि की अंतिम प्रार्थना हो। जीवन का मजबूत तंत्र हो तो जिंदगी का बीज मंत्र भी हे प्रभु तुम ही हो।

जब चारों ओर अंधेरा हो और कुछ ना सूझे, ऐसे में ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में चमकता है, आशा का मार्ग रोशन करता है और हमें सिखाता है, दिखाता है कि छाया में भी हम अकेले नहीं हैं।

प्रसन्नता ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। जब आप भीतर से आनंदित और संतुष्ट होते हैं, तब आप वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होते हैं।

ईश्वर की इस आराधना के साथ भक्ति गीत के साथ संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं मीनाक्षी वासवानी, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह और ओम व्यास।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना मीडियम वेव के मीटर पर। यह है नमस्ते लखनऊ का सफर और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति श्री रामचरितमानस गान।

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें ही बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए, अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 6:55 होने हैं। सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरम् 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,03,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे

0: गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अंतर्गतम रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मंत्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। सुबह के 7 बजे हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में समय है सेहत की बातों को जानने का। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय विश्व मच्छर दिवस, डेंगू मलेरिया से करें बचाव। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय थोड़ा असामान्य जरूर है लेकिन उतना ही जरूरी भी, क्योंकि ये विषय हमें उस अदृश्य दुश्मन से सतर्क करता है जो न केवल असुविधा का कारण बनता है बल्कि गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। आज हम बात करेंगे विश्व मच्छर दिवस, जो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि कैसे एक छोटा सा जीव यानी कि मच्छर मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि मच्छर केवल परेशान करने वाली भिनभिनाहट या खुजली का कारण नहीं है बल्कि ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका और फाइलेरिया जैसी कई खतरनाक बीमारियों के वाहक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मच्छर सबसे अधिक लोगों की मौत का कारण बनने वाले जीवों में से एक हैं और भारत जैसे देश में जहां मौसम, साफ सफाई और जनसंख्या की घनता मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है, वहां इन बीमारियों का खतरा और भी अधिक हो जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 20 अगस्त 1897 को डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने ये खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के जरिए फैलता है। उनकी ये खोज मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि यहीं से मलेरिया की रोकथाम और मच्छरों के नियंत्रण की दिशा में वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत हुई। और आज इतने वर्षों बाद भी ये खोज हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि मच्छरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए। तो सबसे पहली और जरूरी बात है मच्छरों को पनपने से रोकना। मच्छर स्थिर पानी में अंडे देते हैं और ये पानी कहीं भी हो सकता है। आपके घर की छत पर जमा पानी, कूलर में रुका हुआ पानी गमले

0: नालों की तश्तरी, नालियों की रुकावट और यहाँ तक कि बगीचे में पड़ी हुई कोई खाली बाल्टी। जरा सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही और मच्छरों को घर में प्रवेश का निमंत्रण। इसलिए पहला और सबसे प्रभावी कदम है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, पानी को जमा न होने दें, और यदि कहीं पानी अनिवार्य रूप से है जैसे कि कूलर, तो उसमें समय समय पर कोई मच्छर रोधी दवा डालते रहें, कूड़े कचरे को खुले में न रखें, बाथरूम और रसोई की सफाई नियमित रूप से करें, और ये ध्यान रखें कि मच्छरों को पनपने का अवसर ही न मिले। इसके बाद आती है व्यक्तिगत सुरक्षा की बात। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, खासकर बच्चों के लिए मच्छर भगाने वाले क्रीम, लोशन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करें। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, खासकर शाम के समय जब डेंगू फैलाने वाले मच्छर सक्रिय होते हैं। दरअसल ये एक गलत धारणा है कि मच्छर केवल रात में काटते हैं। डेंगू का मच्छर दिन के समय भी सक्रिय होता है, और वो भी सुबह और दोपहर के बीच। अब बात करें इन बीमारियों के लक्षणों की, तो डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। मलेरिया में ठंड के साथ तेज बुखार आता है, पसीना आता है और फिर कमजोरी भी महसूस होती है। चिकनगुनिया में जोड़ों में असहनीय दर्द होता है जो कई बार महीनों तक बना रह सकता है। इन सभी बीमारियों में लक्षण एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इलाज का तरीका अलग होता है। इसलिए यदि किसी को इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और स्वयं दवा लेने से बचें। श्रोताओं, जब हम मच्छरों से होने वाली बीमारियों की बात करते हैं तो ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक समस्या भी बन जाती है। डेंगू या मलेरिया से प्रभावित एक व्यक्ति सिर्फ बीमार नहीं होता, वो काम पर नहीं जा पाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, परिवार की दिनचर्या बाधित होती है, इलाज का खर्च पड़ता है और कई बार गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ती है। यानी बीमारी केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि हम मच्छर जनित रोगों को व्यक्तिगत नहीं सामाजिक जिम्मेदारी समझें, अपने घर के साथ साथ पड़ोस का भी ध्यान रखें। अगर आपके पास की गली में पानी भरा है तो नगर निगम को सूचना दें। अगर पड़ोसी के कूलर में कई दिन से पानी जमा है तो उन्हें सजग करें। एक घर की लापरवाही पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बन सकती है। अब जबकि बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छरों के पनपने का सबसे अनुकूल समय, ऐसे में ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हर स्तर पर सतर्क रहें, क्योंकि मच्छर किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, उन्हें मौका ना दें। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और मैं थी नीना सोनकर। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए विषय, नई जानकारी और एक और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े संवाद के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मच्छरों को कहें नो एंट्री।
1: विश्व मच्छर दिवस, डेंगू मलेरिया से करें बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी लखनऊ से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम में सुनेंगे तबला वादन, कलाकार होंगे रजनीश मिश्र। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेंगे नितिन मुकेश के स्वर में भजन, रात्रि 8:10 पर। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:00 सुनेंगे श्रीमती ममता सिंह का कविता पाठ। शाम 7:31 का समय होगा कार्यक्रम खेल जगत के प्रसारण का। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज सुनेंगे राम अकबाल सिंह व साथी के स्वर में आल्हा गान, सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोक रंग में, और दोपहर 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में। सुबह 9:15 का समय कार्यक्रम जिले की हलचल का होगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे लखनऊ और जौनपुर जिलों की हलचल।

उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:30 पर। आज के कार्यक्रम में सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश सेहतनामा। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें आज की बात के साथ सुनेंगे भेंटवार्ता समाज आधारित अर्थव्यवस्था। इस विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी से भेंटवार्ता होगी। नई उड़ान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर। कार्यक्रम में युगांतरण के अंतर्गत सुनेंगे कपिल के साथ ओबी। विषय होगा तकनीक का नया दौर, डिजिटल गवर्नेंस एवं स्मार्ट सेवाएं। साथ ही जानेंगे विभिन्न विषयों पर जानकारी समय के साथ और होगा राजीव गांधी जयंती पर मुद्दा लाइव। शाम 6:30 का समय कार्यक्रम लोकायतन का, जिसमें सुनेंगे सरिता देवी की वार्ता राष्ट्रीय पोषण मिशन और ग्रामीण भारत। साथ ही योगी चर्चा और जानेंगे अपनी बात। कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय होगा शाम 6:50 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत सुनेंगे भेंटवार्ता सब्जियों में पोटाशियम, जिंक और बोरान कमी के लक्षण और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर काशीनाथ तिवारी से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। साथ ही होगी चर्चा, जानेंगे आज की खबरें और सुनेंगे लोकगीत। और आज के किसान में सुनेंगे अनुष्का जायसवाल से हाईटेक नर्सरी और सब्जी उत्पादन के बारे में। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर, जिसके अंतर्गत सुनेंगे भेंटवार्ता मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर रूपन रघुवंशी से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दोपहर 1:15 पर होगा कार्यक्रम महिलाओं के लिए घर आंगन। आज कार्यक्रम में चर्चा के साथ सुनेंगे काव्य पाठ। साथ ही जानेंगे फैशन और सौंदर्य के बारे में और सुनेंगे लोकगीत। इन सभी कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं के मनोरंजन के लिए फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे, जिसमें सुबह 8:45 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दिन में 11:00 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का। दोपहर 1:50 पर होगा कार्यक्रम जवानों के लिए और रात्रि 9:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 पर हमें है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:10 हुए, थोड़ी देर में कार्यक्रम सुनेंगे विविधा। आज का विषय सद्भावना दिवस, प्रेजेंटर कीर्ति विश्वकर्मा।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जीवन के हर क्षेत्र के लोग अपने मतभेदों के बावजूद एकता और सद्भाव की भावना से एकजुट हों, क्योंकि एकजुट होकर रहना, साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के भावों को समझना, सद्भावना शब्द की वो परिभाषा है जो किसी भी देश, राष्ट्र या समाज के विकास और उज्ज्वल भविष्य की नींव है। और यही वो विकासशील सोच है जो किसी भी व्यक्ति और देश के नागरिक को विकसित बनाती है। सद्भाव के इस सुविचार को लोगों के जीवन का एक परोपकारी हिस्सा बनाने के उद्देश्य से ही आज के विशेष दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सद्भावना दिवस, जिसे समरसता दिवस भी कहा जाता है। इसके साथ ही आज के दिन को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर। और उनकी स्मृति में आज के विशेष दिन शांति और सांप्रदायिक सौहार्द में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है, जिसमें क्रमशः मदर टेरेसा, सुनील दत्त, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, के आर नारायणन

दोस्तों, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मात्र एक विशेष दिन नहीं बल्कि उत्सव है जो एकजुट समावेशी समाज के आदर्शों के अनुरूप है और एक ऐसे राष्ट्र की भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है जो न्याय, सहानुभूति और समझ के सिद्धांतों का सम्मान करता है और उन्हें कायम रखता है और समाज में मानवीय रिश्ते, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सद्भावना दिवस हमें सिखाता है कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी मायने रखते हैं। एकता और सद्भाव केवल अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे गुण हैं जिन्हें पोषित करने की आवश्यकता है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में इस दिन को मनाना इस संदेश को पुष्ट करता है कि विभिन्नताओं को विभाजनकारी होने के बजाय सम्मानित किया जा सकता है। ये दिन व्यक्तियों को सतही भिन्नताओं से परे देखने और उस मानवता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम सभी को एक साथ बांधती है। सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अलग अलग हों, फिर भी हम सद्भाव से एक साथ आ सकते हैं। विभिन्न टुकड़ों से जुड़ी एक अनोखी तस्वीर की तरह, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए लोगों की एक सशक्त टीम की तरह, सद्भावना दिवस हमें ऐसे चिंतन का अवसर प्रदान करता है जो हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण विश्व में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये उत्सव राजनीतिक सीमाओं या धार्मिक संबद्धताओं तक सीमित नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तन का सूत्रधार बनने का आह्वान है और एक संदेश है कि आइए एक दूसरे को समझें और सम्मान करें, और इस देश दुनिया ही नहीं बल्कि खुद को प्रगति के मार्ग पर ले चलें।

एकता और मित्रता के इस अभिवादन के साथ आप सभी को सद्भाव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। विविध कार्यक्रम में अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। आपका दिन शुभ हो।

मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। इस अवसर पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। हीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
5: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
5: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
4: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि

0: भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
1: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ने इस ऐतिहासिक बांध को विश्व धरोहर सिंचाई संरक्षण WHS के रूप में मान्यता दी है। एक रिपोर्ट।
2: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर अलियू साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है।
3: यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया उसका सुपरिणाम।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्र आज से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में 84 घाटों का संपर्क भी टूट चुका है। सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर करीब 67 मीटर दर्ज किया गया है, वहीं 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ना लगातार जारी है। चित्रकूट में बारिश की संभावना को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:32 हुए हैं। समय है नमस्ते लखनऊ की सफर में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। प्रस्तुत है जब ताल बर तबला वादन। कलाकार हैं रजनीश मिश्र आपके साथ, हारमोनियम लहरा संगीतकार हैं दीपक चौबे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तबले पर झपताल कलाकार थे रजनीश मिश्र, आपके साथ हारमोनियम पर लहरा संगतकार थे दीपक चौबे। रजनीश मिश्र का तबला वादन आप रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव के मीटर पर हमें आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की, और इसी के साथ ही नमस्ते लखनऊ का सफर भी अब समाप्त होता है। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए हिंदी समाचार पत्र का समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के

0: कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपरा।

0: को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अगले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार

0: की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेनजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मेरे साथ पूरे आधे घंटे तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए होंगी बरेली की कुछ खास खबरें। जिसमें शामिल हो गए हैं रामगंगा नदी की ठंडी ठंडी हवा, झुमका चौराहे की अनोखी चमक और ऐतिहासिक नाथ नगरी के सभी ऊर्जावान श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और उम्मीद है कि आज का दिन आपका बेहद अच्छा होगा और नई संभावनाओं और बड़ी सफलताओं से भरा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ।

बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और अगर बात करें अपने शहर नाथ नगरी बरेली की, तो पूरे बरेली को नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। शहर के कोने कोने को इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराने के लिए मुख्य चौराहों को नाथ नगरी की थीम पर सजाया जा रहा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कैंट एरिया के जो प्रमुख चौराहे हैं, जिसमें धोपेश्वर नाथ चौराहा, उसे भव्य तरीके से संवारा गया है, जहां भगवान भोलेनाथ की विशाल सुनहरे रंग की प्रतिमा और सुंदर कलाकृतियां हर आने जाने वाले का मोह रही हैं। साथ ही अगर आप शहर में प्रवेश करते हैं तो डमरू और नंदी बाबा की विशाल प्रतिमाओं से सजा डमरू चौक अब हर बरेली वासी के लिए सेल्फी पॉइंट और गर्व का जो प्रतीक है वो भी बन चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सांस्कृतिक बदलाव हमारी नाथ नगरी को ऊंचाइयों पर तो जरूर ले जा रहा है।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नमस्ते बरेली में। बात करें अपने शहर बरेली की तो तरक्की के क्षेत्र में भी हर कदम आगे बढ़ रहा है अपना शहर। और एविएशन के क्षेत्र की बात करें तो ऊंची उड़ान देने के लिए बरेली एयरपोर्ट से भी इस हफ्ते बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। और अब मुंबई और जैसा कि हम सभी जानते हैं आईटी हब बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान तो चल ही रही है और हाल ही में नोएडा जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली के लिए भी विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी रुकिए, आपको बता दें कि इंडिगो के बाद अब अकासा एयरलाइंस ने भी सर्दियों के शेड्यूल से सीधे 157 सीटर बोइंग विमान उड़ाने का प्रस्ताव दिया है। और एयरपोर्ट प्रशासन की खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में बरेली से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोवा, श्रीनगर, देहरादून और जयपुर जैसे बड़े पर्यटन और व्यवसायिक शहरों के लिए सीधी विमान सेवा करने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, बरेली से देश के किसी भी कोने में पहुँचना बेहद आसान होने वाला है।

तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। 8:30 और 3 सेकंड हो चुके हैं। बरेली के शहर की अगर हम विकास की बात करें तो लगातार हमारा शहर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं में नए भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न सेक्टर्स में आवासीय भूखंडों के लिए 7 सितंबर तक पंजीकरण कराया जा सकता है, लेकिन अगर आवासीय भूखंडों के आवंटन की बात करें तो लॉटरी के माध्यम से ही किया जाएगा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। बात कर रहे हैं बरेली की कुछ खास खबरों की। जरा सोचिए, अगर हमारे क्षेत्रीय संस्कृति, रहन सहन और जो हमारी परंपराएं हैं, वो सभी एक ही छत के नीचे मिलें, तो क्या बात हो। तो अब आपके लिए ऐसा ही कुछ ला रहा है हमारा पर्यटन विभाग, और इसके लिए खास तौर पर परियोजना बनाई गई है। 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर लिया गया है और चौबारी पर इसकी स्थापना कराने के लिए जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ी लोक कला, लोक संस्कृति, स्थानीय खान पान, ODOP में शामिल जो तमाम तरह के प्रोडक्ट है वो भी इसमें आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो लोक संस्कृति को सहेजने और समृद्ध बनाने के लिए इसका आयोजन भी किया जाएगा।

और बात करें अपने बरेली के कैंट बोर्ड की, तो लगातार स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। नकटिया नदी को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए कैंट बोर्ड ने 20 अगस्त से पहले चरण के तहत सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए आपको बता दें कि कई यूनिवर्सिटी भी सामने आई है। स्कूल कॉलेज के 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को सारथी बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर छावनी परिषद ने नदी के संरक्षण के लिए 6 स्टेप्स में इस अभियान को चलाने की रूपरेखा बनाई है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए और हमारे शहर बरेली को बनाइए साफ सुथरा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। अगर हम बात करें बरेली के मौसम की, तो आज यानी कि 20 अगस्त को तो सावन का जो माह है वो चल रहा है और आसमान में बादलों की अटखेलियां जारी रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की धूप छांव के साथ शहर के कुछ इलाकों में रिमझिम फुहारे या हल्की बारिश होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। हवा में हल्की सी ठंडक और नमी आपको जरूर मिलेगी, तो आपकी सुबह की चाय का जो मजा है वो दोगुना कर देगी। लेकिन हाँ, अगर घर से आप बाहर निकलते हैं तो अपने साथ छाता रखना मत भूलिएगा।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए लोकगीत सारिका श्रीवास्तव की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम लोकगीत की आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: डियर जिंदगी ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर ने इसे लिखा। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया। एक

0: निर्देशक और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, ये जवानी है दीवानी फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये सफर चित्रलोक का यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
3: ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

14 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

0: हुआ।
1: पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती बेफिक्र अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को

वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं। इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

गारा में शेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले शेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ शेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में शेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं, रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी शेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार शेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी इस चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, काला कांडी, बाजार और शेफ। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग ली। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपनी व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। गांव बांडी वाला फजल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश रजत और बेबी गरिमा, ये हैं। बेड़ी एमपी से हुकुम करमकर, सुनीता और हार्दिक। मणिनाथ बरेली से हैं डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित। गांव बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम भी और राज कमल रेडियो श्रोता संघ। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान तनवीर, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। बड़ा बमचौक खंडवा एमपी से हैं ममता बामरकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, जो गाना अब आप सुनेंगे। और बहेड़ी से हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु सत्यार्थ और थियारा। गोविंदगढ़ मांझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला, मनु शिव सेठी, करणपुरी और इस्माइल। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू। नजमुल होदा एसएम जावेद हैं गुमला झारखंड से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई जिला सल्लोड छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली प्राजक्ता घोट के, वैष्णवी घोट के गायत्री और यज्ञेश। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी, तृप्ति जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम और कृष्णा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबे निशा, सद्दाम, सोनी जाहिद और आबाद खान। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से ही हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा फरसाराम, श्यामलाल घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का। ग्राम और पोस्ट बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष अंशिका, यूनुस और सोफिया। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य, लदावली मुरादाबाद से हैं। जिला उज्जैन एमपी उनहिल से हैं भेरूलाल, वाकतड़िया, धाकर, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। मुकेश गौतम, सुनील, अमन, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से बुद्धनगर, खंडवा से नदीम और राजू। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट से रतलाम से एमपी से हैं जगदीश ठाकर, रंजुबाई, युवराज और शिवांगी। बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार, श्रीवास्तव, रागिनी और मुस्कान। गांवगढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी। गंज टुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी और जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासिन और शमसुल कमर राही। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव। और पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली। अंजुम खान बहेड़ी से हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जैवी, डॉक्टर अमनदीप, कालका।

से शुभचंद्र बजाज और साहिल और बिट्टा बजाज भी हैं यहीं से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। वारसी क्लब संधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करुणा मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम और गुड़िया। कस्बा मीरगंज बरेली से आदर्श दिवाकर, लव, उमेंद्र पुरी और कलू भाई मिस्त्री। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा रूर। और आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम कपूर एंड सन्स, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये गाना।

0: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद, और जो अगला गाना वो फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। छबीलपुर गुन्नौर यूपी से हैं हरवेश कश्यप, अरिजीत और दिव्यांश। गंगवार रेडियो सरोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता और इनके मम्मी पापा। कस्बा उघैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और डी के हिटलर के अलावा इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से हैं बबलेश पवार, डैनी और मनीष। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबू राम जयपाल। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। ये हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव दीवान, राधे, भाविक डिंगरा। पंचकुला सेक्टर 11 से हैं अतुल शर्मा और इनका पूरा परिवार। कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ मोहम्मद अजहान, अलमीर और इनका पूरा परिवार। शिरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, नीलेश येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। तहसील मिलक जिला रामपुर ग्राम एचौरा से हैं विकास श्रीवास्तव, सौरभ और चंद्रपाल। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशु। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरण हुजरे और रेहान शेख। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। परिमहल कासगंज से है आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा और एम असलम सैफी। गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव और सोना यादव। जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, श्वेत मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना। सतामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। राम लसोडिया नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुष, शौर्य और दिनेश। महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, उमा सिंह भी यहीं से हैं। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी। जी के परमार गांधीनगर गुजरात से है, रावर करनाल से विनोद लखनपाल। सिरसा हरियाणा गांव खारिया ढाणी से सदवीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजरानिया। साथी गांव खोखरा वाली से हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चंपा, कपिल चंपा, ईशान और पूजा परिहार। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला राजस्थान हनुमानगढ़ से हैं भाई प्रेम सिंह बरवाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू कृष्णा, श्रीमती छुंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल और चिटकू और मटकू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही गंज डंडवारा यूपी से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नवाजे शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर यूपी से राधा नामदेव। कस्बा उघैती बदायूं से उत्तर प्रदेश से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और निर्भया। साथ ही ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लालू मिस्त्री अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन, अल्ताफ, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती जो की है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, नेहा जैन, विनोद मूरत, दीपक और मयंक, चेतन नाहटा, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से हैं, गाड़ीखाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा, मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी करगैना बरेली यूपी से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर सिंह, हितेश,

राजेश और रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथम। मंसूरी क्लब ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब सलीम, तौफीक मोहम्मद, नवी मंसूरी, सुनील, राहुल और इनके बहुत सारे दोस्त भी हैं। साथ ही ये हैं दीपक जी जो कि बुल्ढाना से हैं, और ये है स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप से भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर चावला, लोकेश, अंकिता, लक्ष्मी, हंसिका, वैदेही खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू और सलार पहलगाम कश्मीर से पैरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसर उद्दीन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है ऊंचे गाँव नादेड़ से शिंदे पाटिल भी। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र और इसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है
1: इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और समय की बात करें तो 10:19:13 हो चुके हैं। तो चलिए गाना सुनेंगे अगला, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप सभी इस गाने को कहां से सुनना चाहते हैं। ये है ऊंचे गांव नादेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और

साथ ही ग्रामर पोस्ट गोठा खंडुआ आंवला बरेली यूपी से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी प्रदीप, सविता सत्यम, शीतल, राधा सलोनी और शिवम। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी। रेडियो श्रोता ये हैं हमारे ओखला संगम बिहार, दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम।

बबीता, रानी सत्यम और सुंदरम। साथी जेवरा हिसार से वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज भ्याण भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी दुविया वादा गाजीपुर से हैं प्रतीक रोशनी और प्रांजल, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जयसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, जयश्री महतरे, अंजलि, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, नंद किशोर घटे, संगीता और साक्षी बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार और इनके पूरे परिवार के सदस्य। ये है हमारी श्रोता उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत मिथिला, तिलक और गोपाल, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र, नारंग, अंजू, मोहित और तानिया, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभनी, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रग्रेश और प्रतीश, पूरा परिवार महाराष्ट्र के जालना से हैं, विजय पाटिल और तहसील भांडेर, दतिया एमपी से राहुल पाल, ज्योति, अंजना, हरिमोहन और बेबी गर्वी लक्ष्य, नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नूरी, नत्थू चाचा, जाहिद मुर्गिया और नन्नी ठेकेदार हिना, सूरज मौर्य, मंजनों का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही मलिक, शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू रविंद्र, वृंदावन प्रजापति, ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या और मित्रगण, बरेली से हैं अलकनाथ मंदिर के सामने बेचीलाल गंगवार, गुट्टी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, महावीर कश्यप, सुनील यादव और बर्फा देवी, रमेश चंद्र सैनी, राम राठौर, गौतम राठौर और राज कश्यप। सदर बाजार कुरावली से हैं हमारे श्रोता अनिल कुमार मौर्य, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कली, मलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत, कैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू और भाविक सिक्का, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी, मालवा रेडियो से हैं ग्राम गुल बालोद तहसील लालोट जिला रतलाम से कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप, नरेंद्र, विशाल और इनका पूरा परिवार, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म बदलापुर से, जिसमें आवाज है आतिफ असलम की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद 100.4 FM पर। और अब आप सुनेंगे ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम कुदरत। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, ये है तहसील पूर्णा महाराष्ट्र ग्राम दिगांव से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमांश, गांव अली डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित विपिन अतुल और फूलजी यादव, शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश सचिन देव प्रियल कार्यव और गोविंद के अलावा गौरी गुप्ता। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता, मौर्य इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल मिहिलाल, प्रीति रीना और सुनीता, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा खानम, फरीदा जब्बार मोहम्मद और अशरफ खान, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, विकी अर्चना मुन्नी और चांदनी कुमारी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद यश और प्रयाण, दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल, और ये हैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय, अंजना रानी गर्ग, रवि शिल्पा और इनका पूरा परिवार, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ, ललिता आशा रानी, गणेश संजना परी, लड्डू चौधरी, देविका स्वाति और इनका पूरा परिवार, ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अंसार, अहमद अंसारी, दिलदार मोहम्मद दर्श और मोहम्मद आरिश, नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और

फैजान, साथी ये हैं कविता मानसी अरोरा, नई दिल्ली मिनिस्ट्री से रोड से हैं, मोती नगर एरिया जोन से, जो इस गाने को भी सुनना चाहते हैं। अनिल गौरव भी हैं इनके परिवार के सदस्य, जापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर, सोनका धमतरी से, छत्तीसगढ़ से फरेश कुमार, सावित्री मोहित देविका, गजेंद्र कुमार चंदन हेयांश, ये है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन अमन दीपांशु, और एंटर रोड गंज चंडवारा से फैजल शेख, नुसरत कैसर, अरमान अदीप और शेख परिवार। ले गए छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी, ग्राम पीपलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश, कुमल सेन, तोशन सेन, विनायक, धमतरी छत्तीसगढ़ से नई बस्ती गंज रंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है कुदरत, लता मंगेशकर की आवाज में।

ये गाना है फिल्म एनिमल से और आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मदरसा गेट भावपुर मुरियावू जौनपुर से इशरात अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेक जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और राफिया परवीन। साथ ही वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद शादाब खत्री, खुजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शमा, शिवी मधुबाला, चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से, वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार, जॉन डिकिस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकिस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हैं, विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका और उनके बहुत सारे साथी, नई दिल्ली से हैं दीपांशु खोरवाल, अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं, सरलाही सुकनाहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल, वंदना, प्रियंका और उनके बहुत सारे दोस्त, फाजिलका पंजाब से, खेड़ा विशाल, विष्णु लाडी, शालिनी टिवांशी और वानी खेड़ा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है चक्कर भाटा कैंप से डी आर नरवानी, रवि चांदनी और खुशी, मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ यूपी से दलशाद हुसैन, नानाजी लाम से मीना लाम से तेजा जय हर्षिता, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से हैं प्रदीप कुमार, आशीष कुंदन, करीना, पूजा आरती, सुनीता गड़िया मौजे उस्तू भोपालगढ़ से हैं, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली मोरमंदी से रतन माला, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा गौरव, चंद्र प्रकाश और मंडू भाई, साथ ही रेलवे कॉलोनी गंज डंडवार से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल हसन, नाजमा बेगम, सरिता बेगम, शबनम, फुले नगर बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी कारवा, गीतांजलि आकाश और आकांक्षा, मोहाली पंजाब तंगोरी से हैं गुरप्रीत, जसप्रीत, महकप्रीत और सहजप्रीत, ग्रामर पोस्ट गोठा खंडवा से धनपाल सिंह यादव, राहुल गुट्टो देवी और बहुत सारे साथी, स्टेट आसाम से बीके हितेंद्र दास, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशुर रधान और तुलसी मस्कीन, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बास से निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान, रेडियो श्रोता ये हैं हमारे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष, साथ ही प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से हैं, ये हैं अड़ार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी, साथ ही विष्णु मस्कीन, रीतिका वानी, आराव मस्कीन परिवार दयानंद कॉलेज के पास भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, आदेश नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरभ और शाइना। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है एनिमल जिसमें आवाज है अरिजीत सिंह की।

सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और जो अगला गाना है वो है फिल्म बरेली की बर्फी से आवाज आरको की, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। आकोर से विनायक बेंडे, मंगला विजय, पवन चरिए और संजीव डोबे राव, गांव जाखोद राजस्थान से है शंभू दयाल खटक, विमला अमरजी, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू, ज्योति, चरौदा बार, नवापारा अभ्यारण्य, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका, राजकोट से जयमिन, हेतल, कृष्णा और राकेश, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा, पूजा, बबीता, नंदिनी, वंदना, मराठा भाऊ, मराठा ललित चौहान, चंदा, युवराज बानखेड़े और इनका पूरा परिवार, ग्राम टोडरपुर, बूढ़ बिसौली बदायूं यूपी से पीएस यादव, अजय पाल, पवन कुमार, मयंक प्रभात, मुन्नी देवी, नीतू सिंह यादव, प्रतिभा और प्रतिज्ञा, वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिरा बाई और सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा और अभिषेक हैं, तालुका निवासा खुपटी से बंडू लोहार, पीपरघट, माया श्रीमान, चंद्रकला पोपलघट, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति।

ईदगाह चंदबुई जिला बकार पंजाब से हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब खलील और अली। साथ ही ईदगाह जनूबी जिला बकार पंजाब से है रिहाना खान और हाफियाजुर रहमान। और ये हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, पापा जी नानक चल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष तिक्का कोयल और डुगू, भागलपुर से विक्रम पाठक, बुंदेन शहर से है उमेश गौड़ रानी गौड़ और जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर एमपी से विनोद नारायण कुशवा, नारायण सिंह, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, ईशिका, खुशी और ऋषि, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब, साबरीन, शहबाज सैफ, ईशान, आजम, अरहान जो कि गनगोला ताताकंज जिला बदायूं से हैं, गांव टोरेवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी मामिका और वाणी थांदी, दिलशाद हुसैन। और ये हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा, भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, गंज चुंडवार से शमसुल कमर राही, शहीन फातिमा और अनूप खान। साथ ही ये सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, आकूर जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राव नितोने, शारदा, सानिका और रिया, गांव सिद्धुवाला सूरतगढ़ राजस्थान से इंदिरा ज्ञानी, अंकुश और इनका पूरा परिवार, जामिल बलोच जफराबाद बलूचिस्तान पाकिस्तान से हैं, बरकत रामदानी और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी आरती, लवली अरोड़ा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, जैद इनायत और इनायत जो कि इंग्लैंड से हैं, रेलवे रोड गंजवार से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल, नाजमा बेगम, सरिता और बेगम शबनम। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी जिसमें आवाज है आरको की।

सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में गाया ये गाना, फिल्म का नाम है डंकी। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अली, मसीम अदीम और अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत, फुले नगर बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा, जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर एमपी से विनोद नारायण, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, ईशिका, खुशी, ऋषि और निधि नारायण कुशवाहा, उमेश कुमार गौड़ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बेबी जानविका, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा और इनके बहुत सारे साथी, चनौरा जिला फिरोजाबाद यूपी से। और ये है हमारे श्रोता सैयद मसरूर, शायरा हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब, गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से।

जीके परमार गांधीनगर गुजरात से, रावर करनाल से विनोद लखन पाल और इनका पूरा परिवार, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सदवीर सिंह बिजवानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बेजरानिया।

साथ ही हमारे ये श्रोता जो कि है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा और इनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, फिल्म का नाम है

और इसमें आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा, टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा राजीव और संजीव, प्रमोद कुमार साहू, बीमा बैवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशी साहू जो कि हैं बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, और रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान हनुमानगढ़ राजस्थान से। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम महाराज, जिसमें आवाज है मोनाली ठाकुर की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी पसंद, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब समय है सब रंग का, और सबसे पहले सुनते हैं ये भजन सोनू निगम की आवाज में। साथ ही इसमें आवाज है धारिणी ठक्कर की भी।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और 11:15 हुए हैं। चलिए सुनते हैं प्रोग्राम झुमका गिरा रही।

नमस्कार, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। आप सभी के अपने प्रोग्राम झुमका गिरारे में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे ही कानों में बरेली का नाम गूंजता है, दिल सीधे झुमके की तरफ खिंचा चला जाता है। लेकिन इस गुरुवार को हमारा ये झुमका शहर सिर्फ सच में सवरने की बात नहीं करने वाला है, बल्कि हम बात करेंगे अपने आने वाले कल की, हमारे पर्यावरण की और उस असीमित ऊर्जा की जो प्रकृति हमें बिल्कुल मुफ्त देती है। जी हाँ, 20 अगस्त यानी की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा यानी कि वो ताकत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे हमारी जीवन दायिनी सूर्य की किरणें, पवन की रफ्तार और जल की धारा। आज के 15 मिनट के विशेष सफर में हम जानेंगे कि हमारा बरेली इस मुफ्त की सौर ऊर्जा को लेकर कितना तैयार है। हम सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, बातचीत करेंगे बरेली की जनता से, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत दोपहर को और भी हसीन बनाते हैं और सुनते हैं सूरज देवता और इस प्यारे मौसम को समर्पित एक बेहद खूबसूरत सा गाना।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज हमें रोजाना बिल्कुल मुफ्त में असीमित ऊर्जा देता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में करते हैं लेकिन बहुत सी चीजों में नहीं कर पा रहे। इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए हम सीधे पहुंचे लोगों के बीच और ये भी जाना कि किस तरीके से वो अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो बरेली के लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम 20 अगस्त को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, और बरेली के लोगों से जानते हैं कि वो किस तरीके से अक्षय ऊर्जा दिवस को मनाते हैं और क्या वे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल के बारे में जानते हैं और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जी, आपका नाम?
1: जी, मेरा नाम मनोज सिंह है।
0: जी, तो आप सोलर पैनल के बारे में जानते हैं?
1: जी हाँ, मैं सोलर पैनल के बारे में जानता हूँ।
0: आपने लगाया अभी घर पे?
1: मैंने एक्चुअली काफी महंगा है, इस कर से भी लगाया नहीं है, और मैं राष्ट्रीय में ये कहना चाहता हूँ कि इससे बिजली की बहुत बचत होती है।
0: बिल्कुल,
1: बिजली की बहुत ज्यादा बचत होती है। मेरे कहने से हर जगह इसको लगाना चाहिए, क्योंकि गांव घरों में ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रखी है सरकार ने।
0: प्रधानमंत्री की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी चलाया जा रहा है।
1: हाँ जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है हमारे देश के वासियों, खास तौर से जो गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कदम है। जो लोग अपने घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे, आज उनके घर में भी सोलर पैनल के थ्रू लाइट आ रही है।
0: बिल्कुल, यानी कि आप कह सकते हैं कि लागत कम है और घर में बिजली के बिल बिल्कुल शून्य आ रहे
1: हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लागत कम है और जो बिजली के बिल बहुत ही ज्यादा कम हो गए, कईयों के तो शून्य आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, और बिल्कुल ये कमाल की बात है। तो है ना श्रोताओं, ये वाकई बहुत ही फायदेमंद योजना और इसके विस्तार से जानने की भी हम सभी को जरूरत है।

0: बरेली के लोगों से वो किस तरीके से अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जी आपका नाम?
1: मेरा नाम सैयद फजान है मैडम।
0: जी सैयद, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय ऊर्जा जो कि काफी इन दिनों पॉपुलर हो रहा है, हमारे देश के हित के लिए है, पर्यावरण के लिए है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
1: मैडम ये अक्षय ऊर्जा बहुत अच्छी चीज है। ये जो आसमान से बिजली और हवाओं से पानी से मिलकर जो सौर ऊर्जा बन रही है, जिससे लोग घर पे लगा रहे हैं, मैंने भी घर पे अपने सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रखा है, इससे बिजली के बिल में काफी बचत होती है। मैं लोगों से अपील करूंगा इसे लगाएं। पहले मेरा बिल 8-9 हजार आता था, अब 1.5 से 2 हजार रुपए आता है। ये काफी अच्छी चीज है, मैं इसको बढ़ावा देना चाहता हूँ, लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूँ उसे लगवाइए।
0: तो लोग लगाए, आपने अपील भी की, तो क्या कुछ फायदा होगा?
1: फायदा क्या मैडम, इसमें तो ये तो सब्सिडी 1 लाख रुपए खर्च करके आपको 1 लाख रुपए सरकार वापस भी दे रही है, और फिर आपको इसमें फायदा भी, इसमें कोई नुकसान पब्लिक को तो है नहीं, फायदा ही फायदा है
0: पर्यावरण के लिहाज।
1: मैडम काफी फायदा है, बिल्कुल फायदा है। जब आसमान और ये अक्षय ऊर्जा जब इसका वो रखा गया प्रोजेक्ट का नाम, तो कुछ सोच समझ के रखा गया है, तो कुछ इससे फायदे ही फायदे हैं मैडम इसके। अब लोग समझेंगे, जानेंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसको उनको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
0: जी शुक्रिया। तो बरेली के लोग अक्षय ऊर्जा के बारे में कितना जानते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। जी आपका नाम?
2: जी मेरा नाम अभिषेक है।
0: अभिषेक, जैसा कि सोलर ऊर्जा काफी पॉपुलर हो रहा है, आप इसके बारे में जानते हैं?
2: जी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ।
0: जी
2: इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ, ये धूप से
0: चलता है। जी ये बात आपने सही की, सोलर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, लेकिन क्या आपको पता है कि जल और वायु से भी हमें ऊर्जा मिलती है?
2: जी हाँ, इस चीज के बारे में मेरे को जानकारी है। धूप से एक तो आपका टर्बाइन लगा करके ऊर्जा चलता है, और जो नदियां हैं उनसे लाइट को डैम्स के थ्रू बनाया जाता है,
0: बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो बरेली के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप इस ऊर्जा के बारे में? उन्हें लगवाना चाहिए अपने घरों में,
2: उन्हें अपने
0: होती है,
2: उनको अपने घरों में लगवाना चाहिए सौर ऊर्जा को, पैसे की बचत होती है इससे, और
0: पर्यावरण
2: के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके पैसे की बचत होगी। मेरा बिल खुद 10 हजार रुपए आता था, अब वो 1.5 हजार रुपए उधर आया है।
0: ये तो काफी अच्छी खबर है। जी आपका शुक्रिया।

0: सुन रहे हो आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। हमारे बरेली के लोग नई टेक्निक को अपनाने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें सही जानकारी और दिशा की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा को अपनाना सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हरा भरा पर्यावरण देने का सबसे बड़ा संकल्प है। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे की आकाशवाणी बरेली है 104 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एफएम रेनबो लखनऊ से।

0: तक ज्ञान क्या कहते हैं बंद चक्षु से हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर और बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रही है। खासतौर से सुमोना को हम इसके लिए बहुत बधाई देंगे कि बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही है। कम से कम आकाशवाणी को फिर से जिंदा कर दिया इसने।
1: थैंक यू सो मच नीना जी, और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग भी प्रेरित होते रहे हैं।
0: तो क्योंकि उस जमाने में इतनी कंसर्ट्स, इतने कार्यक्रम, इतने अच्छे अच्छे होते थे, जो अब थोड़ी कंसर्ट्स वगैरह बहुत कम हो गई हैं।
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि सुमोना उसको भी शुरू करे।
1: जी,
0: और दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे सुमोना भी, और साथ साथ आकाशवाणी भी
1: जी, और
0: एफएम चैनल भी
1: जी। एफएम रेनबो के लिए क्या

0: चाहेंगे हमारे प्रेजेंटर्स के लिए, खासतौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं,
0: जी
1: कुछ कुछ को थोड़ा सा मतलब आपस में एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जिसकी जो चीज अच्छी हो वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: ये
0: ये
1: चीज।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी और ये बात भी सीखनी चाहिए, जैसा कि मैं अभी कह रही हूं कि नीना जी सुबह 5 बजे ड्यूटी करने आती थी, तो हम लोग के बहुत सीनियर रही हैं, तो उस वक्त कभी हम लोग को ये लगता ही नहीं था कि मतलब कि हमारे अनाउंसर्स जो है ट्रांसमिशन के लिए नहीं आ पाएंगे। मतलब एक बार को ये भी होता था कि मौसम बहुत ही खराब है, लेकिन अनाउंसर अपने टाइम पे जरूर आ जाते थे। और यही सबसे प्रेरित करने वाली चीज है, यही जज्बा चाहिए आज के भी जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि समय देना पड़ेगा
1: समय
0: अपने।
1: की बहुत वैल्यू होती है
0: हाँ, और
1: जी जी
0: इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
1: वो वही
0: जी
1: बात है ना कि अगर उद्घोषक नहीं आया, अनाउंसर नहीं आया, अगर वो उसको 1 मिनट, यूं तो 1 मिनट आदमी कहलेगा, लेकिन वो 1 मिनट आकाशवाणी के लिए बहुत बड़ा, 1 साल के बराबर हो जाता है।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
2: बिल्कुल।
0: और
1: आपका लेट शुरू हुआ, सारी दुनिया को पता लगे, अरे आज
0: हाँ
1: अनाउंसर नहीं आया,
0: जी
1: तब पता
0: जी
1: लगता है कि अरे आज अनाउंसर नहीं पहुंचा स्टूडियो
0: जी
1: में।
0: और ये एहसास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रेडियो
1: हाँ
0: सब हर समय के लिए है, सबके लिए है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल, हर घड़ी में, हर पल, हर समय तत्पर है, सुख में, दुख में, विपत्ति में, अच्छे में, बुरे में, सब में साथ रहता है,
0: जी जी
1: हर तरह के एहसास देता है,
0: जी
1: हर
0: जी
1: तरह की खबरें देता है।
0: कुछ खास और कहना चाहेंगे,
1: हाँ
0: कोई घटना ऐसी याद हो आपको? आपने ओपनिंग के बारे में तो बताया, क्योंकि उस वक्त आप ही वहां पे थी मंच पर, तो वो एहसास तो
1: नहीं,
0: है
1: मैं
0: ही।
1: मंच पर नहीं थी, गन्ना संस्थान
0: सॉरी, हाँ आप
1: में
0: स्टूडियो
1: स्टाफ
0: में थी।
1: अलग था।
0: जी जी
1: हाँ
0: स्टूडियो
1: मैं
0: में।
1: स्टूडियो में थे,
0: जी
1: स्टूडियो एंड पे थे हम
0: जी
1: लोग
0: जी आपने मतलब
1: उस
0: कनेक्ट
1: समय।
0: किया था। जी हाँ,
1: हाँ
0: और बिस्मिल्ला खान साहब का की शहनाई के साथ
1: हाँ ये
0: शुरुआत
1: सब
0: हुई।
1: लाइव था
0: जी जी जी
1: गन्ना
0: जी
1: संस्थान से।
0: जी जी जी तो बहुत आपका आभार है, और इसी तरह अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रखिए, और हम लोग आपसे
1: बिल्कुल,
0: हमेशा प्रेरणा भी लेते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे आगे भी। क्यों
1: बहुत
0: करो
1: अच्छी
0: सुन।
1: बात है
2: बिल्कुल मैम,
1: सुना
2: आज
1: तुम।
2: ये सब सुन के ही अलग से एक जज्बा जागता है कि हमें कहीं से भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ लोग रहे हैं, उन्होंने इतना जब इतनी मेहनत करके इस चीज को आगे बढ़ाया, तो हमारा भी ये एक फर्ज बनता है कि हम उनसे कुछ सीख के, उससे और उनकी जो प्रेरणा है उससे लेकर हम आगे बढ़े, और आने वाली जो पीढ़ी
1: बिल्कुल
2: है
1: बिल्कुल।
2: उसको भी
0: हाँ
2: अग्रसर
0: नहीं,
2: रखें,
0: अभी आप लोग यंग पीढ़ी
1: अग्रसर भी रखें,
0: है।
1: और दूसरे आपसे दूसरे लोग भी कुछ सीख सके।
0: बिल्कुल। विनय क्या कहना चाहोगे?
3: नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है पदचिन्ह आकाशवाणी के, तो हमारी मैम से मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर जब हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिले थे, तो मैम की आवाज अभी भी एकदम फ्रेश सी है, और जब हम मिले थे तो वो जो जोश था ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल
0: बिल्कुल
3: हमसे ज्यादा जोश मैम में है।
2: अभी भी
0: बिल्कुल
2: आवाज में ताजगी है, जो कहते हैं ना
0: बिल्कुल।
2: आवाज की ताजगी,
0: ये एक्चुअली
1: क्या
0: एक
1: बात
0: आवाज जो है ना, यही एक्चुअली इस तरह की आवाज होनी चाहिए जो हमेशा ताउम्र
3: है।
0: जिंदा रहे और
2: जिंदा
0: जवान
2: रहे,
0: रहे।
2: बिल्कुल
0: थैंक
2: बिल्कुल,
0: यू सो मच नीना जी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सुमोना।
0: जी
2: तो मैम आप ये बताइए, आज आप हमारे स्टूडियो आई हैं, और वैसे तो स्टूडियो बड़ा सजा सजाया लग रहा है, कैसा लग
0: हाँ,
2: रहा है आपको
0: बहुत
2: देख
0: अच्छा
2: के?
0: लग रहा है। मैं देख रही हूँ इतने रंग बिरंगे, लाल, नीले, पीले, हरे, इवन सफेद भी
2: सब
0: गुब्बारे
2: हर तरह
0: लगे
2: के,
0: हुए हैं, और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: सतरंगी है ना तो चैनल, ये
0: हाँ
2: सतरंगी दुनिया ही है, अब हमने दुनिया ही बना दी
0: हाँ
2: सतरंगी।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से आप लोग भी कार्यक्रम करिए, देखिए जितनी अच्छे से अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, लाइवली प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा हर दिन होना चाहिए। ये नहीं
2: बिल्कुल
0: कि किसी एक दिन पे हम खास ऊर्जा के साथ आए, हर दिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम आते हैं हम श्रोताओं से कहाँ पे कैसे मिल रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता है।
2: बिल्कुल
0: हम तो
2: बिल्कुल
0: एक स्टूडियो में बंद हैं, लेकिन हमारी आवाज करोड़ों तक पहुंच रही है।
2: सच में। और मैम सच में इसका एक लाइव एग्जांपल मैं देती हूँ कि मेरे से मतलब हम लोग से जो श्रोता जुड़े हैं वो पूरी दुनिया से जुड़े
0: बिल्कुल
2: हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ लखनऊ में बैठ के हमारे लखनऊ वासी ही सुन रहे हैं, कितने दूर दूर से लोग यहां से जो जाते हैं बाहर वो सुनते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज भी मुझसे अभी इस टाइम पे ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, मुझसे बैंगलोर से कनेक्ट है, पुणे से कनेक्ट है, तो मतलब एक ये रहता है कि हम जिस तरह से इस सुरों की जो लखनवी अंदाज है उनको वहां तक पहुंचा रहे
0: क्या बात है,
2: हैं।
0: लखनऊ हर दिल तक पहुंच रहा है हमारे चैनल से, और ये अच्छी बात है कि हमारे जो कार्यक्रम है लोग पसंद करते हैं। कहाँ, आपने इतनी सारी जगह बताई, जम्मू कश्मीर तक से आते
2: हाँ
0: हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं,
2: इवन इवन यूरोप से मेल आया है यहाँ पर।
0: क्या बात है, क्या बात है, इसने तो दिन बना दिया।
2: हाँ सच में, दूर देश देश विदेश से आ रहा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम हैं, वेव्स ओटीटी ऐप पर हम
2: आप
0: लोग
2: है।
0: हैं, और आप कहीं पर भी हो आप सुन सकते हैं हमें, बस आपका दिल हमसे जुड़ा होना चाहिए। चाहिए और उसी

0: के लिए हम कार्यक्रम लेकर आते हैं, उसी के लिए तरुश्री और विनय भी आपके साथ है, आगे भी बने रहेंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी के लिए मैं अपने श्रोताओं को कहूंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहां।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: वैसे ये अनजाना अनजानी जितने भी यहाँ पर अनजाना अनजानी है ना, सब आ चुके हैं स्टूडियो में जी। और ये एक दूसरे से अनजाना अनजानी नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: और आपको पता है जब भी बर्थडे होता है, कोई खास सेलिब्रेशन होता है, हमारे स्टूडियो को सजाता है कोई, और थोड़ी थोड़ी देर में आवाजें भी आने लगती है,
0: फट फट। लेकिन क्या करें, वो तो उनकी फितरत है, लेकिन हमारी फितरत तो ऐसी है ना कि हम बिल्कुल चूकते नहीं है, हमारा सजा होना चाहिए स्टूडियो एकदम
1: बिल्कुल।
0: और इसी को सजाने के लिए हर बार एक बंदा बड़ा प्रयास करता है, और वही जो शख्स है वो हमारे बीच आ चुके हैं, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। उनकी क्या हमेशा से एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट रहती है उनके अंदर भी, बड़ी तरह का जोश रहता है, तभी तो आप इतने तरीके से मैं इतनी खुश हूं आज मैं स्टूडियो आके, हाँ सतरंगी दुनिया पहुंच गई मैं। तो दीपक जी हमसे जुड़ चुके हैं, तो दीपक जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी नमस्ते नमस्ते।
0: तो ये बताइए, आप ये प्रयास करते हैं स्टूडियो को सजाने का, तो आपका ये जो एफएम से लगाव है इसके बारे में आप कुछ बताइए।
2: अरे मैं बहुत इंतजार करता हूँ एफएम सजाने का, कब मुझे मौका मिले, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार मौका मिले, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रोज ये मौका मिले।
0: अरे
2: मगर मुझे इंतजार करते करते 364 दिन निकल जाते हैं, फिर 365वें दिन मुझे मौका मिलता है इसका।
0: अब ये क्या कहते हैं ना कि सालगिरह तो साल के बाद आती है ना, तो अगर हम रोज वो चीज मनाएंगे तो उसका फिर जश्न मनाने का वो जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा।
2: मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं रोज आऊं यहाँ, रोज सजाऊं इसको, और रोज सजा हुआ दिखे।
0: वैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं रोज, क्योंकि आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो के द्वारा आप हमसे जुड़े ही हुए हैं।
2: वो तो मैं रोज रोज सुनता हूँ, मैं रोज जुड़ता हूँ
0: बिल्कुल। तो इस तरह के आपके जो अनुभव रहे हैं, आप कुछ अनुभव बताइए। जैसे मैं देख रही हूँ इतनी ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, तो इसको लगाने में आप क्या करते हैं, मतलब ये भी एक अपने आप में कलाकारी है।
2: जी ये तो मेरी कला है, इसको मुझे लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, मगर अगर यही आप करेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगा।
0: हाँ, जो जिस तरह से अच्छा मैं

0: आपको बता दूं हमारे श्रोता नहीं देख पा रहे हैं हमारा स्टूडियो, लेकिन हाँ अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेज पे वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर हमारे स्टूडियो का जो रंगत है ना, जो इतनी खूबसूरती से सजा हुआ है ये स्टूडियो, वो सोशल मीडिया पे जरूर पहुंच चुका है।
1: वो हमारा हमारा यूट्यूब चैनल है खूबसूरत इवेंट के नाम से। अगर जो आप श्रोता देखना चाहते हैं तो हमारा खूबसूरत इवेंट पे जाकर के अपना लाइव वीडियो देख सकते हैं, कैसे हम डेकोर करते हैं, कैसे
0: बिल्कुल भी। तो आकाशवाणी में जिस तरह से आप ये जो स्टूडियो आपने सजाया है, वो भी आप आकाशवाणी लखनऊ केंद्र जो है हमारा जो चैनल है वहां पर भी हमारे श्रोता देख सकते हैं। तो दीपक जी, आपका अनुभव बहुत, मतलब मैं कहूँ सराहनीय आपका ये प्रयास है जो आप हमसे जुड़े और इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा ये जो ने स्टूडियो सजाया है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, जैसे कि हमारे साथ अभी दीपक जी जुड़े और इसी तरह से और भी कई सारे मेहमान हमसे जुड़ने वाले हैं और भी बाकी आरजेस बस अपने धमाल को लेकर आ रहे हैं और ये जो एक्साइटमेंट है ये तो बंद नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और बढ़िया सा गाना, फिर उसके बाद एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।

0: अजी सुनती हो?
1: हाँ सुन रही हूँ, बोलो।
0: अरे तुमने वाईफाई का पासवर्ड फिर चेंज कर दिया क्या?
1: हाँ तो?
0: अरे हर बार पासवर्ड चेंज कर देती हूँ, पिछला वाला ही नहीं याद हुआ अभी।
1: इसीलिए तो इस बार अपनी शादी की डेट का पासवर्ड रखा है।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
10: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
11: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
10: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
11: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
12: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
13: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉग इन करें या 1097 पर कॉल करें।
14: मूर्खों जैसी बातें क्यों करते हो?
15: अरे ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जौनपुर में आज सुबह हुए सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल जाना। उन्होंने सीएमओ को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों को बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा है। आज सुबह तेज रफ्तार निजी बस की टक्कर से स्कूली वैन पलट गई, जिसमें सवार कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शहर, कस्बा या गांव की स्थानीय सरकार को 16वें वित्त आयोग के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए सशक्त करने के विषय पर आज लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है कि किस प्रकार ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर अधिक से अधिक राशि 16वें वित्त आयोग से प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है।

सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान दोनों यात्रियों से कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। दोनों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा है कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल की उम्र के युवा जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, एनएसएस, वॉलंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, युवा संगम के आर्टिफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉक ओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिला था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: रंग हमारे संग तुम्हारे। सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन
1: 100.7 FM रेनबो,
0: सुरों का लखनवी एहसास।
2: जी हाँ, सुरों का लखनवी एहसास। और 12:03 का वक्त, मैं तरुश्री जुड़ चुकी हूँ आपके साथ, और मेरे साथ हैं आपके अपने दोस्त विनय।
3: जी हाँ, आपका अपना दोस्त विनय एक बार फिर से हाजिर है। दोपहर हो चुकी है लेकिन जो एनर्जी है वो कम नहीं हो रही है।
2: बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए।
3: सुबह 7 बजे से हम लोग एकदम एनर्जेटिक तरीके से आपके साथ मौजूद है। आज है बड़ा खास दिन, 20 तारीख है आज।
2: जी 20 अगस्त, सावन का महीना, और इसी दिन शुरुआत हुई थी 26 साल पहले, 2000 में FM रेनबो की, और इसकी आज बर्थडे हम मना रहे हैं, यानी 26वां वर्ष गांठ मना रहे हैं आज के दिन की, आज के दिवस की। और जैसे कि लगातार आज हम सबसे जुड़ रहे हैं, उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस FM रेनबो की नींव रखी थी।
3: बिल्कुल,
2: और
3: बिल्कुल।
2: ये सिलसिला अभी पूरे दिन जारी रहेगा। हमसे और भी RJs जुड़ेंगे, और भी मस्ती होगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है FM रेनबो की, खास की हमारे जो सुरों का सिलसिला है ना, वो नहीं थमना चाहिए। तो फिर एक गाना हो जाए
3: और इसमें डांस भी हो जाए।
2: हाँ, बिल्कुल, अभी और भी लोग आ रहे हैं।
3: बिल्कुल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, आकाशवाणी लखनऊ FM रेनबो के सुनने वाले तमाम दोस्तों को सुनील पाल का नमस्कार। आप सभी को FM रेनबो के 27वां स्थापना दिवस बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे ही खुशी बांटिए और स्वस्थ रहें, यही कामना है।

0: मैं बिगड़े ज्ञानोदय वाजपेयी एफएम रेनबो की सतरंगी 26वीं सालगिरह पर उनको अपने सारे फौजी भाइयों की तरफ से बधाइयां देता हूं। उम्मीद है कि एफएम रेनबो की सतरंगी सेवा जारी रहेगी अगले 1000 साल तक और सारे जवान जो हमारे देश की सरहद पे हैं इसको सुनेंगे।
1: देखिए जो जवान है ना, जो हमारी सरहदों पे भी तैनात है ना, उन तक भी हमारा ये जो कार्यक्रम है या हमारा जो रेडियो है, ये जो फ्रिक्वेंसी है वो वहां तक पहुंचती है न्यूज ऑन AIR ऐप के द्वारा, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा, या फिर आप हमसे ऑन लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी ये हमें टाइप करिए FM रेनबो लखनऊ लाइव और आप हमसे जुड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए बहुत आसान से तरीके हैं हमसे जुड़ने के लिए। और एक बड़ी प्यारी सी याद है, सन 2000 में जब लखनऊ का पहला रेडियो स्टेशन FM रेनबो शुरू हुआ था,
1: FM स्टेशन
2: पूरे लखनऊ में पहला FM रेडियो स्टेशन जब शुरू हुआ था 2000 में 20 अगस्त को, तो आप समझिए एक तरह की क्रांति थी लखनऊ में FM रेडियोस को लेकर। और उसके बाद कई सारे रेडियो चैनल्स आए, लेकिन तरुषी एक बड़ी खास बात ये रही कि लखनऊ में जितने भी प्राइवेट स्टेशन हैं उनमें मैक्सिमम आरजेस इसी हॉट सीट पर बैठ चुके हैं।
1: बिल्कुल, आज के टाइम पर जितने भी फेमस आरजेस हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, वो कभी ना कभी इस हॉट सीट पर बैठ चुके हैं और अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने यहीं से करी है।
2: उन्होंने सीखा है और बहुत कुछ, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, हमारा अपना प्यारा चैनल है, इसने हम सभी को आगे बढ़ना सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है और किस तरह हम अपने लिसनर से जुड़े वो भी सिखाया है।
1: बिल्कुल, और इसी बात पर हम लोग कुछ मेल शामिल कर लें क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, हम तक पहुंच चुके हैं। और जैसे कि एक कॉन्टेस्ट हम लोग ने अभी ऑर्गेनाइज किया था, 26 शब्दों में आपको बतानी है रेनबो की, रेनबो से अपना इश्क जाहिर करना है 26 शब्दों में।
2: और सुबह सुबह हमारी जो आदरणीय कार्यक्रम प्रमुख जी ने उन नामों को बता दिया है हमारे लिसनर्स को कि वो आखिर लकी लिस्नर कौन है जो हमसे हमारी पार्टी में जुड़ने वाले हैं।
1: जी, तो अभी हम लोग और भी लिसनर्स को शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो क्रेज है अभी भी बना हुआ है और उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो अशोक कुमार जी का मेल आया है हमारे पास, राम राम लिखते हैं, पता है इनका रायपुर अदौरा मितौली लखीमपुर खीरी से, सुगंध माटी का प्रोग्राम इनको काफी ज्यादा पसंद आया और आज के दिन की उन्होंने बहुत ढेर सारी बधाई दी है हम सभी आरजेस को।
2: और साथ ही साथ देखिए हमें सादर प्रणाम कर रहे हैं पिंकू सोनी, ये है बाराबंकी से, तिकैत नगर बाराबंकी से हमें सुन रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम इन्हें लग रहा है और इन्होंने हमारे प्यारे FM को बर्थडे कहा है, पूरी टीम को बधाई दी है, आपको बहुत बहुत बधाई।
1: वैसे सच बताएं तो जितना एक्साइटेड हम हैं उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हमारे लिसनर्स भी हैं, इसीलिए हर एक कार्यक्रम पे अपनी जो
2: प्रतिक्रिया
1: है वो देते रहते हैं। इसी तरह से सुगंध माटी का इनको बहुत पसंद आया है, दीक्षित जी को, अनिल कुमार दीक्षित जी LGA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ से मेल कर रहे हैं।
2: जी, हरदोई से हमारे पास मेल है संडीला से, और ये कह रहे हैं राम राम सब जाने, सुगंध माटी अगेन इन्हें बहुत पसंद आया, ये विनीत संतोष ममता और बड़े सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरपाल सिंह की मेल आईडी से मेल हमें मिला है।
1: और मोहम्मद आसिफ अंसारी हमें हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और लिखते हैं, मुझे 15 साल हो गए सुनते हुए और अपने दादाजी के रेडियो पर ये सुनता था, तब मेरी उम्र 8 साल की थी, तब से लेकर अब तक बहुत सी चीजें बदली लेकिन रेडियो नहीं बदला। आज हमारे दादाजी नहीं है लेकिन घर जब जाते थे तो उनके वहां उनके कमरे में रखा रेडियो आज भी दादाजी की याद दिलाता है, और उस टाइम आकाशवाणी पर राजकिशोर जी और नूतन दीदी आती थी।
2: क्या बात है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि राजकिशोर जी और नूतन मैम दोनों के साथ मैंने काम किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से कहते ना कि ये हम लोग का सौभाग्य रहा है कि जिन्होंने इस सब FM रेनबो की नींव रखी है, हम उनसे अभी भी जुड़े हैं, उनसे कितनी सारी चीजें हमने सीखी हैं, और जो तारतम्यता रहती थी उनकी बात करने की अंदाज ऐसा रहता था, अभी भी आवाज में वो ताजगी बनी हुई है, आप उनकी आवाज सुन के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो उनकी उम्र क्या होगी।
2: बिल्कुल, और उनकी वो हंसी जो थी नूतन मैम की वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है, और सुगंध माटी में आपने उनको जरूर सुना है, अभी भी आती रहती है और उनको देखकर एक अलग सा ही एहसास होता है नूतन मैम को।

0: और नो डाउट हमारे राजकिशोर सर से भी हम मुलाकात करते रहते हैं। अभी हमें स्थापना दिवस पर वो मिले थे। और देखिए, हमें जो एक लिसनर है हैदराबाद से, उन्होंने हमें एक पोस्टर भी भेजा है मोहम्मद आसिफ जी ने,
1: हाँ
0: और रिक्वेस्ट की है कि पूरा पढ़िएगा। और इन्होंने अंजू, आरजे अंजू और आरजेता की फोटो भी भेजी है, चैट जीपीटी से किया है, थोड़ा सा शक्ल बदल गई है।
1: वैसे कोई बात नहीं, एआई हमारा बहुत साथ देता है। कम से कम जो वो कहना चाहते हैं वो तो उन्होंने रंग बिरंगे तौर पे भेजा है।
0: बिल्कुल, लिखते हैं कि रेनबो रेडियो सुनी लिव मन, अच्छा थोड़ा
1: सुन ली,
0: अवधि
1: ये
0: में,
1: अवधि में
0: अवधि
1: है।
0: में, यस।
1: लिखते हैं, रेनबो रेडियो सुन लीव मन हरसाई जात, सुर ताल धुन सुघड़ सबही के मन भाई जात। बरिस बरिस पर पावन यह दिन आवा है, खुशियां के फूल सबही के आंगन में छाई जात।
0: आहा, क्या बात है। और प्रोग्राम चौपाल इनको अच्छा लगा, और अंजू जी और ऋचा जी को बधाई दे रहे हैं, पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं यूं ही हमेशा हम लोगों का मनोरंजन और ज्ञान वर्धक जानकारियां देते रहिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: वैसे कहते हैं ना कि अपनी माटी की सुगंध ही अलग होती है, और
0: बिल्कुल
1: यही
0: बिल्कुल
1: जो सुगंध माटी का हमारा जो कार्यक्रम है, जो रीजनल लैंग्वेज पर फोकस्ड है, वो हमें हमारी ही माटी से जोड़कर रखता है। और इसीलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप तक पहुंचाए जाए जो हमें आपको जोड़ कर रखे। तो अगला मेल अनिल कुमार जी का है, लिख रहे हैं, तनुश्री मैम, विनय सर जी, इतनी खुशी हो रही है आप दोनों आरजे एक साथ शो कर रहे हैं। विनय, हम लोग क्या बहुत दिन बाद शो कर रहे हैं
0: यस बहुत दिनों बाद हम साथ में हैं, और आपकी जो हंसी है वो हम रेडियो पे सुना
1: क्या?
0: करते थे
1: वैसे मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनके भी साथ शो करती हूँ मेरी हंसी वही सेम रहती
0: तो चलिए दोस्तों, मेल्स का सिलसिला यूं ही हम जारी रखेंगे, और एक बेहतरीन सा ट्रैक हम सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बने
1: और
0: रहिए,
1: अनिल कुमार जी का मेल मैं आगे पढ़ती हूँ, तब तक
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: गाना सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं।

प्रोग्राम आप स्पेशल आज सुन रहे हैं, आपके साथ आपके दो आरजेस जुड़े हैं, दोस्त कौन से, तरुश्री और विनय। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम मेल शामिल करेंगे, तो हम मेल्स पर आते हैं वापस। और अनिल कुमार जी का मेल मैंने बीच में छोड़ा था, तो आज उन्होंने खुशी जाहिर की कि आज तरुश्री और विनय की जोड़ी आज उनके साथ है, और मुझे भी उतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि विनय जी के साथ मुझे जब भी मेरा शो होता है तो मुझे उतनी ही डबल खुशी हो जाती है। और विनय जी को खुशी

0: डबल खुशी हो जाती है। और विनय जी को खुशी ये होती है कि उनको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कभी भी गाने की।
1: ये बात तो सही है कि गाने मुझे बड़े पसंद है, बहुत सारे गाने पसंद है, लेकिन एक स्वेच्छा
0: याद नहीं आता
1: है। एक स्वेच्छा और एक आप हैं, ये दो लोग हैं, इनके साथ हम इधर किनारे बैठ जाते और ये लोग गाने बजाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मेरे फेवरेट वाले, ठीक है, और हम एंजॉय करते हैं, अपने लिसनर से बात करते हैं।
0: सही का, तो अब यही है जो चटपटी बातें हैं आपको, जो ये जो रेडियो के इस पार वाली बातें हैं ना, जो हम लोग की आरजेस की जो ऐसे बातें होती हैं वो काफी अच्छी लगती है कभी कभी सुनने में कि हाँ हम लोग की लाइफ भी ऐसी ही है। थोड़ी सी चटकारे वाली, कभी भी ऐसी शरारत करते हैं हम इस रेडियो हॉट सीट पर बैठ के।
1: बिल्कुल, और अनिल कुमार जी के बाद हमें रामराज ने मेल किया है, और ये रायबरेली से हमें हमेशा मेल करते हैं, हर प्रोग्राम में मेल करते हैं, और इन्होंने हम दोनों की तारीफ की है और बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बधाई दी है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज गुप्ता जी का मेल है और लिखते हैं, गुड मॉर्निंग तरुश्री मैडम और विनय सर जी। तो वैसे तो अब मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जुड़े थे आपसे मॉर्निंग से ही, है ना। तो पंकज गुप्ता है लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हैं। आज से आकाशवाणी लखनऊ रेनबो के 26 साल पूरे हो रहे हैं, आप सभी को रेनबो लखनऊ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के जो चौपाल में खूब मजे आने वाले हैं, वैसे तो सच में जो चौपाल लगी थी वो तो बहुत ही ज्यादा अतरंगी चौपाल थी।
1: वैसे शाम को भी चौपाल होने वाली है, बड़े सारे आरजे हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे ये, और अवधि वाली आपने जो सुगंध माटी वाली चौपाल सुन ली, लेकिन शाम को आप जो हमारे स्टूडियो का माहौल होगा ना वो एकदम अलग रहने वाला है।
0: आपको अभी झलक मिलती रहेगी कि ये बीच बीच में किस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले हैं, और खास लोगों से हम बातचीत भी कराते रहेंगे और अपने लिसनर्स को भी हम जोड़ते रहेंगे पूरे दिन। आपके मैसेजेस जो भी आप हमें भेजना चाहते हैं fmakashwani@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। और लिखते हैं, कौन लिख रहा था, पंकज गुप्ता जी ने आगे लिखा है कि आपका कार्यक्रम ये 2004 से सुन रहे हैं और लगभग 22 साल हो गए हैं, इस टाइम में इनकी उम्र 30 साल है, और आज के कार्यक्रम सुगंध माटी की और सुनकर उनका मन प्रसन्न हो गया, उनको खूब मजे आए। वैसे तो बात सही है, हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं कि आपको और प्रसन्नता मिले।
1: बिल्कुल, और देखिए हमें सुधांशु जी ने मेल किया है, वो राधे राधे कह रहे हैं, ये हमें बख्शी का तालाब लखनऊ से मेल करते हैं और 26वें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। कुछ लाइन लिखी है कि सुरमई सी धुनों से सजा हर एक पल, 100.7 की मिठास में बसा कल और आज का सफर, लखनऊ की गलियों में घुली जिसकी हर ताल, FM रेनबो है शहर की धड़कन हमारी पहचान, 26 सालों का ये साथ ये अटूट बंधन, श्रोताओं के प्यार से महका है हर एक आंगन, अपनी बातों से जो हर दिन लाते हैं एक नई मुस्कान, उन सभी प्यारे एंकर्स को भी हमारा दिल से सलाम, 26वें जन्मदिवस की इस खास और हसीन मोड़ पर सजे खुशियों की रंगोली हर एक मोड़ पर, सुधांशु एवं सुधांशु के पूरे परिवार की ओर से मुबारक हो ये सालगिरह, बड़े ही प्यार और स्नेह से, क्या बात है।
0: बहुत बहुत सुंदर ये जो आपने कविता लिखी है। और प्रमुख कुमार जी का मेल आया है लुधियाना पंजाब से, ये लिख रहे हैं और हमारे नियमित श्रोता भी हैं, लिखते हैं, डियर तरुश्री मैम और विनय सर जी, गुड मॉर्निंग, आप दोनों लोगों को 11 बजे से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर। इन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं, लिखते हैं, 26 बरस का खूबसूरत सफर आज फिर मुस्कुराया है, FM रेनबो ने अपने 26वें जन्मदिन का जश्न मनाया है, मीठी मीठी आवाजों से दिलों में जगह बनाई, हर आरजे की शानदार प्रस्तुति ने अपनी अलग पहचान बनाई, किसी की आवाज में मिठास, किसी की बातों में अपनापन, हर आरजे के अंदाज में मिलता है दिल का सुकून और अपनापन, आपकी आवाज जब रेडियो पर सुनाई देती है तो साधारण सी सुबह भी खास बन जाती है, 26 सालों से यूं ही प्यार बरसाते रहिए, हर श्रोता के दिल में अपनी जगह बनाते रहिए, तमाम दुआएं हैं नई ऊंचाइयों हर कदम पर मिलती रहे, हर आरजे की आवाज यूं ही खुशियों के गीत सुनाती रहे, FM रेनबो का नाम यूं ही रोशन होता रहे, हर नया साल सफलता और खुशियों से भरता रहे, 26वें जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और दिल से बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने लिख के भेजी हैं प्रमुख कुमार जी।
1: और साथ ही साथ हमें ये उन्नाव से एक मेल मिला है, स्वतंत्र सिंह उर्फ आजाद जी हैं, लिखते हैं, डियर आरजेस एंड FM रेनबो की पूरी टीम को ये बधाई दे रहे हैं, आई विश अ वेरी हैप्पी 26th बर्थडे, आई एम FM रेनबो लिसनर from 26 years, I used to send postcard for song request and when first time लिसन माई सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड

0: नेम ऑन एयर आई वॉज जम्पिंग विद हैप्पीनेस. क्या बात, आई स्टिल एंजॉयिंग योर कंपनी. लॉन्ग लिव एफएम रेनबो.
1: चलिए, स्वतंत्र सिंह जी उर्फ आजाद, उनका नाम भी आजाद है और उन्नाव से इन्होंने मेल भेजा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल का. और अब चलिए, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं. अब एक बार ये जो डांस का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था वो मैं बिल्कुल करने वाली हूँ. अब बीच पे बूटी होने वाली है, तो एंजॉय दिस ट्रैक.

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।

0: RHL Gold, TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: बारह बज के 31 मिनट का वक्त, और एक प्रश्न मैंने पूछा था आप लोगों से। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे आरजेस को देखा सुना, मतलब देखा इन द सेंस कि सुना, और रेडियो पर जब वो भी आरजेस जब उनसे बात करते थे तो रेडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी फीलिंग आती है, आपको पता है वो क्या है?
2: जी बताइए।
1: वो 1-to-1 कन्वर्सेशन का एक एहसास देती है कि हम सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं, है ना? तो वो जो फीलिंग आती है वो रेडियो की सबसे बड़ी खासियत है। और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे ये पूछी थी कि ऐसे कौन से दो आरजेज हैं जिनको आप मिक्स करना चाहोगे, जैसे उसका अंदाज और एक का अंदाज, एक की बात, एक की आवाज, तो उन दोनों में से कौन से वो दो आरजेज हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच करना चाहोगे, तो ये आप हमें मेल द्वारा बताइए। और साथ ही साथ ये भी मैंने पूछा था कि अगर आपको हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला तो किस आरजे को कॉपी करना चाहेंगे आप।
2: बिल्कुल, और बड़े सारे मेल्स हैं हमारे पास, विशेष के मेल्स हैं। सुबह से हमसे लोग जुड़े हुए हैं और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ये सेलिब्रेशन यूं ही चलता रहने वाला है।
1: और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा मुझे एक आंसर मिला है, गीता जी ने मुझे मेल किया है और लिखते हैं कि फहीम जी और विजय जी और सुनील जी उन तीनों का बड़ा इंतजार हो रहा है, अभी तो वैसे भी वो शाम तक आएंगे और बाकी सब बहुत सारे आरजेस आपसे मिलने वाले हैं। और सुगंध माची प्रोग्राम को तो बहुत ही अच्छे से सराहना मिली है, आज का तो वैसे भी स्पेशल एपिसोड रहा है क्योंकि ये जो सुगंध माची का प्रोग्राम था वो इसीलिए आज स्पेशली बृहस्पतिवार को लेकर आए थे हम लोग, ताकि आप इस माटी की सुगंध को एक बार फिर से महसूस कर सकें।
2: बिल्कुल, वैसे तो आप बुधवार और शनिवार सुनते हैं लेकिन ये जो चौपाल है वो स्पेशली हमारे बर्थडे के दिन ही सजी थी, और चौपाल के जो पात्र थे वो वही थे जो सुगंध माटी में आपसे मिलते रहते हैं, और उनकी आवाजें आपने जरूर पहचान ली होगी। एक आवाज जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, मैंने बताया कि जब वो नूतन मैम हंसती थी उनकी जो आवाज है वो एकदम अलग है। और हमारे मेल्स का सिलसिला है, मोहम्मद आमीन ने हमें मेल किया है, ये लखनऊ से, गंगागंज लखनऊ से मेल कर रहे हैं और गुड आफ्टरनून के साथ कह रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और रेनबो की बर्थडे पर ये यही लिख रहे हैं कि आई लव FM रेनबो।
1: क्या बात है। और जैसे कि मैंने बताया था, वो जो प्रश्न पूछा था मैंने, तो मोहम्मद आसिफ जी ने जो मेल भेजा है तेलंगाना से, वो लिखते हैं कि दो आरजेज निखिल और नितिन, और उनकी तरह सीट पर बैठकर वो इस मेन सीट पर बैठकर उन्हीं की तरह ये काम, मतलब बोलना चाहेंगे, बोलना पसंद करेंगे। तो एक और चीज़ उन्होंने लिखी है कि आरजे राजकिशोर जी, हेलो, मेरी पसंद लेकर आते थे 2010 में, तब से सुन रहा हूँ और नूतन दीदी आती थी पत्र के लिए, धन्यवाद करती
2: जी जी जी।
1: तो ये सब पुरानी यादें हैं जो आज कहते हैं ना कि जब हम स्पेशली कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई एक वर्षगांठ मना रहे होते हैं या फिर बर्थडे मना रहे होते हैं, तो हम वो बातें ज़रूर याद करते हैं जो पिछले बीते हुए वर्षों में हमने महसूस करी या वो पल हमने जिए।
2: बिल्कुल, और नूतन मैम के साथ सत्यानंद सर आते थे वही पत्र के लिए धन्यवाद में, और फिर सत्यानंद सर ने हमारी सुमना मैम के साथ भी वो कार्यक्रम किया। तो वही है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आकाशवाणी FM रेनबो के लिए बहुत कुछ किया है, उसे सहेजने में, उसे खड़ा करने में, और उसमें एक नाम हमारे कार्यक्रम प्रमुख जी का भी है, सुमना पांडे मैम का। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई सालों से जुड़ा हूँ, FM रेनबो से पहले से।
1: तो वही कह रहे हैं ना कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सनालिटी के साथ जुड़े होते हैं तो आपको और भी चीज़ें कई सारी सीखने को मिलती हैं, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और आइए, अब वक्त हो चला है, देखिए सत्यानंद सर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं।
3: You got the music coming night and day. You got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. FM Rainbow Lucknow. Hello, पहचाना क्या? मैं आवाज नहीं हूँ बीते कल की, मैं आवाज हूँ सतरंगी FM में हमेशा इस पल की। सन 2000 की तरह FM ब्रॉडकास्ट का फॉर एवर सुपरस्टार है लखनऊ रेनबो। हैप्पी हैप्पी बर्थ।

टे रेनबो लखनऊ, हमेशा यंग, हमेशा फन, हमेशा नंबर वन। और मैं हूं सत्यानंद वाओ।

0: नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया सिंह कोहली है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं एफएम रेनबो को उनके 26 वर्ष पूरे होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कुछ उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हर रंग एक एहसास है, हर धुन एक कहानी है और हर आवाज एक अपना सा रिश्ता। साल 2000 से शुरू हुआ एफएम रेनबो का यह सफर यूं ही ऊंचाइयां छूता रहे। पूरे रेनबो परिवार और सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
1: जी हाँ, ये सिलसिला जारी है, अभी भी जारी रहेगा और काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में सब मशगूल हो चुके हैं सारे आरजेस भैया बनठन के, सब चले आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं। और अभी जब हमारी पार्टी शुरू होने वाली है ना, 3:30 बजे से ऑफिशियल, यानी कि 4 बजे से हमारी ऑफिशियल पार्टी स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगी, बाकी सारा बहुत कुछ धमाल होगा। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप आकाशवाणी लखनऊ केंद्र, आप सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं हमारा स्टूडियो कैसे सजा हुआ है, एकदम सतरंगी गुब्बारों से सजा हुआ है। और विनय, जैसे कि आपने बताया था पहले भी कि ये जो रेनबो से जुड़ी यादें, आप रेनबो से जुड़ने से पहले भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, तो आप मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि जब मैं आप रेडियो, ये स्पेशली एफएम में जब आप आए, तो पहला ऐसा एक्सपीरियंस क्या था आपका जो आपको घबरा देने वाला था?
2: सबसे बड़ा एक्सपीरियंस घबराने वाला ये था कि हर घंटे न्यूज़ पढ़नी है।
1: वैसे ये तो बात सही कही, क्योंकि एक भी गलत प्रोनंसिएशन, हम लोग को बार बार बीच में फोन आता था, क्या पढ़ा तुमने?
2: आपको बताएं दोस्तों कि जब हम इस सीट पर बैठे होते हैं तो आप अगर 3-4 घंटे लगातार शो कर रहे हैं तो मैं सही मायने में बताऊं, आपको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है और आप मतलब किसी भी जो रूटीन की चीज़ें हैं वो कर नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते, क्योंकि आपको ना बेस्ट से बेस्ट देना होता है और एक के बाद एक चीज़ें लगी रहती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और अगर मैं अपनी बात कहूँ विनय, तो जब पहली बार मुझे ऑन एयर आना था तो मैंने कहते हैं घबराहट में कोई गलती हो जाती है, लेकिन मैंने घबराहट में आज तक की जिंदगी की सबसे बेस्ट न्यूज़ पढ़ी थी जब मैं पहली बार आई थी। लेकिन उसका बैक ऑफ द स्टेज जो कहते हैं ना कि उसके पीछे की कहानी ये थी कि मेरे पैर लगातार कांप रहे थे। तो जो ये जो स्टोरी होती है, ये जो एहसास होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये हमारे साथ हमेशा रहता है। और मुझे याद है मेरा पहला प्रोग्राम जो था तो वो अंजू जी की ड्यूटी बस खत्म हुई थी और मेरा शो स्टार्ट हुआ था और मैं एकदम नई नवेली थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है कैसे करना है। और उसके बाद मैं सोच रही थी मैं न्यूज़ पढ़ूं तो मुझसे गलती ना हो, और सच में गलती एक भी नहीं हुई, लेकिन ये जो एहसास था कि गलती ना हो, उसके वजह से वो जो घबराहट थी ना, वो सारी की सारी शरीर के नीचे ये जो पैर है ना, ये पूरे टाइम कांप रहे थे, जैसा लग रहा था मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी उन्हें।
2: ऐसा होता है कई बार, टेंशन में आप बड़े परेशान होते हैं और न्यूज़ पढ़ते समय मुझसे कई बार गलतियां हुई हैं और इसको मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमसे ही गलतियां होती हैं।
1: हाँ, और हमने उससे सीखा भी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आगे बढ़ते हैं हम, अभी कभी भी कोई अगर गलती करते भी हैं तो हम उसको सीखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। और कोशिश यही हमेशा रहती है कि हम हमेशा आज से कुछ बेहतर करें, अगली बार कुछ बेहतर करें। तो अभी तो आज हम 26वां वर्ष मना रहे हैं एफएम रेनबो का, और आगे आने वाले वर्षों में हमारे जो जूनियर्स हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, उन्हें हम कुछ अच्छा सिखा सकें जैसे हमने अपने सीनियर से अच्छा सीखा।
2: बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं कि जब मैंने अंजू मैम के साथ पहला प्रोग्राम किया, जब मैं अनवारुल सर के साथ इस सीट पर बैठा और साथ ही साथ जब अनुपमा मैम के साथ मैं बैठा, तो मुझे लगा कि सच में मैं कोई ऐसी जगह आया हूं जो बड़ी बेशकीमती, क्योंकि ये सब ऐसे नाम है, रिचा मैम है, ये सब ऐसे नाम है जिनको हम सिर्फ सुना करते थे रेडियो पर और सोचते थे कि काश हम भी इनके साथ बैठें, बात करें और इनके साथ प्रोग्राम प्रेजेंट करें। तो मुझे वो सारे दिन याद है जब इन इन इन कुछ चंद लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम किए हैं।
1: बिल्कुल, और हम लोग को ये

0: मौका मिलता है मेरे ख्याल से एफएम की बर्थडे वाले दिन, जब हम अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं लिसनर्स के साथ। नहीं तो जो हम आए दिन जो घटनाएं हैं या रोजमर्रा के जो प्रोग्राम है वो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो मौका मिलता है ना, ये जैसे लगता है कि कोई रोक नहीं सकता, ये हम पल जो है वो दोबारा जीना शुरू कर दें, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

बिल्कुल, ऐसे कुछ गाने होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, और वैसे भी आज जो है ना वो ग्रूविंग का डे है, हम लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं अपने एफएम रेनबो का। और उसके साथ ही साथ एक सिंगर, एक म्यूजिशियन हमारे सभी के घर में रहता है।

0: और आज उसका दिन है।
1: बिल्कुल, और वो है
0: आप पूरा बिल्कुल पूरी पूरी तरह से आप बताएंगे कि वो
1: वो हमारे कानों के पास पहुंचता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हम बात कर रहे हैं मॉस्किटो की, तो ये जो मॉस्किटो डे आज है, आज बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम मना रहे हैं, और इसी के ऊपर हमारे कुछ आरजेज ने मिलकर एक स्किट तैयार करी
1: है। बिल्कुल, तो आइए उसको सुनने का वक्त है, और देखिए आप आज मॉस्किटो डे पर हमारे जो अतरंगी सतरंगी से आरजे हैं क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।

गॉड राहुल, एक तो तुम्हारे ये खर्राटे, उफ। यूं तो देखने में तुम ठीक ठाक हो, पर ये तुम्हारा नाइट सूट, ओह कितना हॉरिबल है। एंड ये कलर, यू क्या सोच रहे थे? वही हमेशा की तरह मेल मच्छर आएंगे। खून चूसने का काम सिर्फ मेल मच्छर ही नहीं करते, वो तो बेचारे बड़े सीधे होते हैं। असली शिकार तो हम लेडीज करती हैं, वो भी एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में, क्योंकि हम लेडीज हैं मच्छर की रियल बॉस।

0: ये कौन आफत की बला है भाई, चैन से सोने भी नहीं देते।
1: Excuse me, भाई मत बोलो मुझे, मैं हूँ मच्छरों की क्वीन, डंक मारो डीवा, और नाम है मेरा मच्छर रानी पू। वैसे तो ना मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, मुझे शुगर फ्री और थोड़े रेयर डिनर करना ही पसंद है। आज सोचा कुछ एबी नेगेटिव टाइप का अच्छा मीठा ब्लड मिलेगा, लेकिन उफ वही कॉमन ओ पॉजिटिव। पर ठीक है, अब आज इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी राहुल, तुम हमेशा हमारे बारे में कितना सोचते हो, कितनी सुख सुविधाएं देते हो, तो इतना तो बनता है। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स पार्टी।
2: अरे अभी

0: अरे रुको रुको भाई, कौन सी पार्टी और कौन सी सुख सुविधाएं? मैंने कब दिया तुमको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट?
1: अरे भूल गए क्या, तुम्हारी वो बालकनी में वो जो कांच का जार रखा है उसका पानी तुमने पिछले 2 महीने से साफ नहीं किया है, और ये सारी जो गंदगी है, ये सारी गंदगी और ये सारा गंदा पानी, यही तो हमारे लिए लग्जरी होटल से कम है क्या? उस जगह हमारी 500 से ज्यादा सहेलियां और भाई बहन जन्म ले रहे हैं।
0: बाप रे 500! तुम लोग तो पूरी आर्मी खड़ी कर रही हो मेरे घर में।
1: अरे अभी कहाँ, थोड़ा और तो सुनो। तुमने वो छत पर जो अपनी गाड़ी का टायर रखा है, और वो प्यारी सी मम्मी जी ने वो टूटी बाल्टी जो संभाल के रखी है उसमें जमा बारिश का पानी, आय हाय हाय, वो तो पूछो ही मत, हमारे लिए किसी अम्यूजमेंट पार्क से कम नहीं है। पूरा परिवार, अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबके साथ मिलकर पार्टी करते हैं हम लोग यहाँ पर।
0: अरे बाप रे, आप तो बहुत डेंजरस लेडी हैं मैडम। पिछले साल मेरे दोस्त को डेंगू हुआ था, बेचारे के प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि अस्पताल पहुंच गया।
1: अच्छा वो डेंगू, वो तो मेरी कजन है एडीज, और मलेरिया वो है मेरी मौसी एनोफिलीज। ये सारा कमाल ना हम फीमेल्स करते हैं, और पता है आज मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आई हूँ। और क्या, और पता है आज तो बहुत खास दिन है, आज हमारा दिन है, क्योंकि आज है 20 अगस्त। आज हम सभी मिलकर मनाते हैं वर्ल्ड मस्किटो डे। तो चलो, मैं बहुत थक गई हूँ इतनी सारी बातें करके भाई, आज हमारी स्पेशल पार्टी है। चलो जल्दी से जल्दी अब हाथ आगे करो, मुझे बहुत जरूरत है एक स्पेशल ड्रिंक की। जल्दी से तुम्हारा खून पीना है, और फिर डिनर के बाद मुझे शर्मा जी के घर

0: भी तो जाना है। आखिर रिटर्न गिफ्ट में डेंगू मलेरिया भी तो देना है तुम सबको।
1: क्या रिटर्न गिफ्ट? रुको रुको, अभी बताता हूँ।
0: राहुल, तुम तो कितने भोले हो। ताली से मारने का तरीका कितना पुराना एंड ओल्ड फैशन हो गया है। राहुल, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है।
1: अच्छा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। बहुत हुआ तुम्हारा डंक मारू डीवा मच्छर रानी पू, आज लूंगा ऐसा एक्शन कि सब जाओगी भूल, ना मनेगी एनिवर्सरी, ना बनेगी तेरी पार्टी कूल। अब तक मेरा आलस ही मेरी गलती थी, पर अब करूंगा सुधार, रोएगी तू खून के आंसू, होगा तेरा काम तमाम।
0: अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे जार का पानी क्यों फेंक दिया? उफ, ये ऑर्गेनिक खुशबू, मुझे तो इससे बहुत एलर्जी है, मेरा दम घुट रहा है। अब ना रहने की जगह बची, ना काटने की। और राहुल, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। I hate you for this. Come on girls, run. ये राहुल तो जागरूक और समझदार हो गया है। भागो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: और दोस्तों, अभी आपने वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर एक बड़ी प्यारी सी स्किट सुनी, और उसमें जो हमारे आरजे साथी थे वो हैं आरजे मोना और आरजे
4: आरके
3: जी। इसमें एक प्यारी सी मच्छरनी बनी थी
4: मच्छर मच्छरनिया वैसे जो उन्होंने ये संदेश देना चाहा वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सफाई अपने आसपास।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने आसपास जो मच्छर, उनको पार्टी करने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे।
4: हाँ, वैसे ये हम लोग अब रूल बना लेते हैं। हमको तो वैसे भी पार्टी करने का मौका मिल रहा है अभी शाम को, तो हम मच्छरों को क्यों इनवाइट करें
3: तो अपने घर में अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है ना, उसको देखिए। अगर कोई पॉट है या कोई गमला पड़ा है, आपका कूलर है, उसमें पानी इकट्ठा होने मत दीजिए। यही मैसेज दे रहा था ये बहुत ही बेहतरीन सा प्ले स्किट
4: जी। और 12:55 का वक्त हो चुका है, और आज जो राष्ट्रीय रेडियो श्रोता दिवस है, इसके लिए हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब हम एक बड़े ही खूबसूरत, अच्छे, इंटरटेनिंग गाने के साथ इस घंटे को वाइंड अप करते हैं। लेकिन अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज ब्रेक के उस पार हम फिर से आपके साथ होंगे। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये माहौल बिल्कुल बनता रहेगा, चलता रहेगा, और उसके बाद हम और भी लोगों से बात भी कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM Rainbow।
3: बिल्कुल
4: शुरू का लखनवी
3: एहसास।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए सुनिए अनिरोध गीत। और कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो है फिल्म जीत से, जिसमें आवाज है विनोद राठौर अलका याग्निक की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। विमल प्रसाद मोहल्ला दुर्गापुर बीसलपुर जिला पीलीभीत से हैं, और रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन मोहम्मद, रिहान माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी पुराना तालाब डुमराव से, वल्ली उल्ला आसमानास चमन पार्क दिल्ली से, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा सारिमपुर बक्सर से, राज एस डी अंसारी, आसमा खातून गुलफराज भागलपुरी कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य। और ये है हमारे श्रोता जो कि सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान और शुएब खान, साइमा मुस्तबा, आफिया राव भाई, शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और अब सुनेंगे आपके अनुरोध का ये गाना अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाज, फिल्म का नाम जीत।

और अब श्रोताओं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 7:31

पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं, उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार 20 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से, यानी कि आज। और इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए, विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 20 अगस्त, यानी कि आज शाम को 4 बजे से। और टेलीफोन नंबर है 0581-251700। सूचना समाप्त हुई। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। आपकी गाना सुनेंगे जिसमें आवाज है राहत फतेह अली खान की और फिल्म का नाम है सुल्तान। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर एमपी से हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती गणेश दादा, कार्तिक परिसंजना और ललिता। साथ ही ये हैं यादव मोहल्ला सनावद एमपी से ही दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज, फिल्म का नाम सुल्तान।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और अब लीजिए सुनिए अगला गाना, वो है फिल्म कोई मिल गया से, फिल्म का नाम। और अब इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं।

और इससे पहले आपने सुना फिल्म लव आजकल से गीत, जिसमें आवाज दी थी सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर ने। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध। और अब आपको सुनाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से ये गाना, जिसमें आवाज कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण की। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव, दीवान, राधे, भाविक। और ये हमारे श्रोता सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, छत्रपति, संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है और जिसमें आवाज कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण की।

यस बॉस फिल्म से आपने ये गाना सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, और इसमें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत।

और अब आप सुनेंगे जो अगला गाना वो है सोनू निगम जयेश गांधी की आवाज में, फिल्म का नाम मैंने प्यार क्यों किया। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मोहल्ला गढ़िया बरेली से हैं मोहम्मद क्यासर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम, नावेद, राजिया और इनका पूरा परिवार। साथ ही कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर यूपी से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना सोनू निगम जयेश गांधी की आवाज, फिल्म का नाम मैंने प्यार क्यों किया।

0: ऐसे में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत और अगला गाना फिल्म का नाम है जोश, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज, ग्राम बगबुड़वा पथुया छत्तीसगढ़ से नरे नितम और कुसुम नितम इस गाने को सुनना चाहते हैं। नजमुल हुदा एस एम जावेद गुमला झारखंड से हैं, साथ ही गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला गुड्डू, मनु करणपुरी स्माइल और इनके परिवार के सदस्य, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु सत्यार्थ और थियारा ये हैं, इश्तियाक अहमद इदरी से बहेड़ी से और एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबही सलौट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी और गायत्री के अलावा यकेश। और अब सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज।
1: कितना प्यारा।

और सोनू निगम की आवाज में ये गाना आपने सुना, फिल्म का नाम साथिया। इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और बारी अगले गाने की, तो उस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ से, परिमहल कासगंज से, आबाद खान, नबील आरफा, इल्मा और शमसुल कमर राही, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, और ये है रामप्रसाद शर्मा, जयश्री, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, गौरी, कनिष्क, इनके परिवार के सभी सदस्य जो कि होली चौक बरेली से हैं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर, दीपक, झावेंद्र, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। और आप सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गाना जो कि है

0: चक चक चक तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है दिख के उसको।
1: और इसी के साथ ये प्रोग्राम अनुरोध गीत यहीं तक, आगे के प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी के साथ, तो बने रहिए आकाशवाणी बरेली के साथ 100.4 FM पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 2 बज रहे हैं और अब समय हो गया है प्रोग्राम रसरंग का। और प्रोग्राम रसरंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं गजल, कव्वाली और लोकगीत। लेकिन प्रोग्राम हम शुरू करें उससे पहले आपको बताते चलें श्रोताओं, दिमाग में और नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि आज के हमारे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है। विश्व मच्छर दिवस पर विशेष प्रोग्राम है हमारा कि एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना देता है, यानी कि एक मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और मच्छरों से बचाव के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। इन सब बातों पर हम आज आपसे बात करेंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और आप जुड़िएगा हमें हमारे फोन लाइन पर, 2:30 पर फोन कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी जो सोशल मीडिया की पोस्ट है उस पर अपने जीवन के सच्चे अनुभव जरूर लिखिएगा। फिलहाल कार्यक्रम रसरंग का आगाज करते हैं इस मधुर लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग और अभी आप सुन रहे थे दिशा सक्सेना की मधुर आवाज में ये लोकगीत। और श्रोताओं, प्रोग्राम में अब आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि आज हमारे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, जो कि प्रसारित होगा शाम को 4 बजे, उसका विषय है एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना देता है, एक मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और मच्छरों से बचाव के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। और ये हमारा विशेष प्रोग्राम होगा क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व मच्छर दिवस। तो इस विश्व मच्छर दिवस विशेष कार्यक्रम में जरूर शामिल होइएगा। फिलहाल प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आ रहे हैं अमृता कोटलकर की मधुर आवाज में ये नज़्म।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग, ट्यून किया है 100.4 FM। प्रोग्राम के साथ हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश तिवारी। और श्रोताओं, प्रोग्राम में अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोहम्मद अली की आवाज में ये नज्म।

और श्रोताओं, प्रोग्राम रसरंग के अंतिम ये पेशकश लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए परेश पाहुजा की मधुर स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे परेश पाहुजा की आवाज में ये वायर फिल्मी गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं आपको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो श्रोता दिवस की। और आपको बताते चलें कि जस्ट अब से एक मिनट बाद हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम, जिसका विषय है एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना देता है, एक मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और मच्छरों से बचाव के लिए आप क्या उपाय करते हैं। ये होगा आज विश्व मच्छर दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई के नाम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ, प्रेम धवन के बोल, संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ आ।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो, इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी नारे हाय

0: सवतिया हाय संसवतिया ननो शाम पैया परू संसवतिया ननो
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म का नाम शराबी

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं।

0: और बोलियां, जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है,
1: हाँ
0: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं, तो
1: बिल्कुल
0: उनके
1: आरती।
0: बारे
1: और
0: में बात करेंगे।
1: संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
0: बिल्कुल।
1: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहाँ इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी।
0: जी
1: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
0: वो हैं गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार हैं और बहुत ही संघर्षशील महिला हैं, तो उनके बारे में हम
1: और
0: बात करेंगे।
1: चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में भी बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं। तो
0: हाँ
1: कुछ खास शैली इनकी है,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में अगर
0: जी
1: आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे। नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, जब हम बात करेंगे
0: जी
1: गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है, तो क्या कहना है?
0: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां, सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी
0: बिल्कुल
1: है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी
0: बिल्कुल
1: भी समय कुछ भी खाते
0: हाँ
1: हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: लगने लगता
0: अलग
1: है।
0: अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है,
1: हाँ
0: चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ चटोरेपन के
0: हाँ
1: बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन
0: जी
1: आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो
0: बिल्कुल
1: जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
0: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप,
1: हाँ
0: कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये
1: जी,
0: चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप
1: ये
0: बताइए।
1: सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि ये कि सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी
1: और
0: भावना से किया हुआ कार्य।
1: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
0: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं, यही विविधता हमारी ताकत भी है। और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
1: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला
0: बिल्कुल
1: के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे।
0: बिल्कुल, शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए
1: जी,
0: सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
1: और ये
0: और
1: खाली
0: बिल्कुल
1: एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
0: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ पे प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
1: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें एक गीत के
0: एक गीत
1: साथ।
0: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके
0: हाँ,
1: ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता
1: हाँ
0: है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गांव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल।
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल। और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता
0: हाँ
1: है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस
1: हाँ।
0: वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी,
1: हाँ, जैसे
0: अपने
1: कि
0: घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल। संयुक्त तो परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था,
0: जी
1: है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की

0: दक्ष कलाकार थी।
1: क्या
0: उन्होंने
1: बात है?
0: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
1: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
0: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
1: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर। तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक लसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
0: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
1: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
0: बना दिए थे।
1: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
0: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
1: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
0: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांगने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवन समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ,
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
0: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, और कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि नहीं है, हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगटे, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है, और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ

0: रही है कि ऐसी भाषाओं की जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत, परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी
1: बिल्कुल
0: भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
1: बिल्कुल। और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोक मानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो है जुड़ी हुई, जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसलिए
0: एक
1: बहुत
0: संदेश
1: जरूरी
0: के
1: है।
0: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:30 हो रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। और श्रोताओं, अब समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का

0: प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
1: अजी जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
1: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
1: जी।
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
1: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
1: जी,
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी जी जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं, तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
1: जी,
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी,
1: जी,
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई, तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी,
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है, तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है, तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है, तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है, वही महान बने हैं।
0: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी,
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए, तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी,
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे

0: क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो,
5: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां!
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
1: बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
6: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
10: ये मारा! हरा दिया! नाना जी! हरा दिया!

0: तनु, हाथ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
1: जी,
0: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
1: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
0: ये कैसी अजीब बात है?
1: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
0: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
1: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
0: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
1: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
0: अच्छा?
1: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
0: हाँ, बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
1: जल्दी
0: सोचिए किसकी कहानी सुनाऊं। देखो
1: अरे जीवन काका।
0: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
0: अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
0: यहाँ लेट जाओ।
2: जी
0: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
1: जी।
0: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
1: जी अभी लाई।
0: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
0: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
0: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी जी।
0: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
1: जी जी नाना जी।
0: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
0: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र

0: था कि
1: जी
0: जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी,
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे पूरा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर

0: थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी,
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और श्रोताओं, आपको यहाँ बताते चलें कि प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ आज हम लोग पेश करेंगे कमेंट्स के साथ ही, जो आप लोगों ने हमें हमारे फेसबुक पेज पर किए हैं, और जिन लोगों ने भी कमेंट्स नहीं किए हैं वो कर सकते हैं आज की हमारी पोस्ट पर कमेंट। और बस ये याद रखिएगा कि वो जो कमेंट्स हों वो आज के विषय पर ही आधारित हों, जिससे कि कार्यक्रम जो है वो रिलेवेंट रहे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात से सहमत होंगे, और जल्दी से आज आप हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में कॉल्स जो हैं वो शामिल नहीं हो पाई है फ़ोन लाइन की दिक्कत की वजह से।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। और हमारे सभी श्रोताओं को रेडियो श्रोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, अब शुरू करते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ आज हम करेंगे आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स के साथ, और वो कमेंट्स हमारे विषय पर ही होने चाहिए। ये कोई फिल्म फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ना हो, तो इसलिए उस विषय पे चार लाइनें अपने मन की बात ज़रूर लिखिए और उस बात से संबंधित रखिए। और उसी कड़ी में आज का हमारा जो विषय है वो हमने पहले भी आपको बताया और फिर बताते चले कि विषय है एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना देता है, मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और इससे बचाव के आप कौन कौन से तकनीक या उपाय अपनाते हैं। तो फिलहाल इन सारी ही बातों पर हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और ये कमेंट जो हमें भेजा है विष्णु मिस्किन और आपके सभी साथियों ने सोलापुर महाराष्ट्र से भेजा है। और आप कहते हैं मच्छर का काटना सिर्फ खुजली तक सीमित नहीं, कुछ गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं मच्छरों के काटने से। त्वचा पर

दाने खुजली हो सकती है, सूजन और जलन हो सकती है, कुछ मामलों में बुखार और कमजोरी हो सकती है। संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति को विभिन्न संक्रामक बीमारियां भी हो सकती हैं। मच्छर के काटने से जो है वो प्रमुख बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस संक्रमण जो है, और येलो फीवर भी कुछ देशों में होता है। और ध्यान रहे, हर मच्छर इन सभी बीमारियों को नहीं फैलाता, हर विशेष बीमारी के विशेष प्रकार के मच्छर होते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। मच्छरों से बचाव के उपाय में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि घर में मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम रिपेलेंट भी लगा सकते हैं। शाम और सुबह के समय जब मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, घर के आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने की जगह बन सकता है। पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें, खिड़की और दरवाजों पर जाली लगाएं, कूलर, गमले, पुराने टायर आदि में पानी जमा जो है वो न होने दें, उन्हें नियमित रूप से साफ रखें और अपना विशेष ध्यान रखें। आपने अच्छा मैसेज किया है विष्णु मिस्किन जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और श्रोताओं, प्रोग्राम के अगले जो कमेंट हमें भेजा है अगला, वो हमें मिला है कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से। आप हैं जमुना प्रसाद और किरण मौर्य। आप कहते हैं कि मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और फाइलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, और इनसे बचाव के उपाय ये हैं कि जलभराव रोकें, घर या आसपास कूलर, गमलों और पुराने टायरों में पानी जमा ना होने दें, सुरक्षित कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और शरीर को ढका रखें, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, ओडोमॉस या फिर इस तरीके की, मतलब जो रिपेलेंट क्रीम्स हैं उनको यूज़ कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है, और इन अपना विशेष ध्यान रखें क्योंकि मच्छरों के काटने से ढेर सारी बीमारियां और संक्रामक रोग फैलते हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखें। फिलहाल आपने और हम सब ने सुनना चाहा है फिल्म मोहरा का ये गीत, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत है वीजू शाह ने।

श्रोताओं, आप से हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये गुजारिश की थी कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो हम लोग पेश कर रहे हैं आपके द्वारा हमारी फेसबुक पेज पर जो कमेंट किए गए हैं उनके माध्यम से। कारण यह है कि आज की हमारी फ़ोन लाइन है जो वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण से कॉल्स रिकॉर्ड होने में दिक्कतें हुई। तो इस वजह से आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। आपके कमेंट्स हमें मिले भी हैं, और बेहतर हो कि हमारे संबंधित विषय पर आपके और ढेर सारे कमेंट हमें मिले तो कार्यक्रम में और बेहतरीन हो। और अब जो हम जिन कार्यक्रम में कमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसको लिखा है ग्राम्ब पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने। आप कहते हैं कि पहले तो आपने नमस्कार किया है तो आपको भी नमस्कार। एक पुरानी कहावत है कि एक मच्छर के काटने से आदमी जो है परेशान हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल परेशान हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया ये सब बीमारी मच्छरों से ही होती है। घर में पानी जमा नहीं होने दें, कूलर, पुराने बर्तन आदि में पानी नहीं रहने दें, साथ ही शौचालय में भी समय समय पे फिनाइल या फिर पेट्रोल अगर आप थोड़ा सा छिड़क दें तो मच्छरों से बच सकते हैं। और रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें, साथ ही साथ मच्छर भगाने वाली जो है वो क्रीम या फिर अन्य उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरे सावधानी के साथ रहें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। और आपने ये भी कहा है कि सावधानी ही हमें मच्छरों के काटने से होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने रामबाबू मिश्रा जी।

ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं विश्व मच्छर दिवस पर विशेष कार्यक्रम, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि मच्छर इंसान को बीमार कर सकता है, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और आप इसके लिए क्या उपाय करते हैं। और इन सारी ही बातों पर बात करने के लिए

ही बातों पर बात करने के लिए आप या अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की फेसबुक पोस्ट पर। और ये जो अगला कमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है प्रवीण चौहान जी ने, और आप कहते हैं, मच्छरों के काटने से डेंगू होता है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया होता है जो एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस होता है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है जो दिमाग को प्रभावित करता है। मच्छरों के बचाव के लिए हम अपने आसपास पानी जमा होने नहीं देते, शरीर को पूरी तरह ढक के रखते हैं और फुल लेंथ के फुल बाह वाले कपड़े पहनते हैं और घर में मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है प्रवीण चौहान जी कि एहतियात बरतना जो है वो बहुत ज़रूरी है और जानकारी ही बचाव है और बचाव ही सावधानी से रहना ही जो है वो इन सारी बीमारियों से होने वाले खतरों को कम करता है। तो आइए सुनते हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ट्यून किया है 100.4 FM। और श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, प्रोग्राम के अगले जो कमेंट हमें अगला कमेंट किया है हमें, आप हैं हमारे श्रोता हररपुर मटकली से शारुनूर अंसारी और आपके सभी साथी। आप ये कहते हैं कि मच्छरों के विषय में बस यही कहना चाहूंगा कि मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है, मगर इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने से मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, इसलिए हमें अपने घर और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। और मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर, गमले, बाल्टियों, पुराने टायरों और दूसरे बर्तनों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। नालियों की सफाई भी लगातार करते रहना चाहिए ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। शाम और रात के वक्त मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना भी मुफीद है। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना और जरूरत के मुताबिक मच्छर भगाने वाले सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना भी एहतियात का अच्छा तरीका है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मच्छरों से बचाव सिर्फ अपनी हिफाजत तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने खानदान और पूरे समाज की सेहत की हिफाजत भी है। अगर हर शख्स अपने घर और मोहल्ले में साफ सफाई का ख्याल रखे और पानी जमा न होने दे तो मच्छरों की पैदावार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साफ सफाई, एहतियात और जागरूकता ही मच्छरों से बचाव का सबसे बेहतर जरिया है। अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए बेदार कीजिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बात आपने हम तक पहुंचाई है शारुनूर अंसारी जी, और सुनते हैं आपके और हम सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आपके मैसेजेस हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। और आज का हमारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं हमारी फेसबुक पोस्ट से। प्रोग्राम के अगले गीत के वो भी सुनना चाहा है और साथ में हमें मैसेज भी करते हैं आज के हमारे विषय के साथ। और आप हैं कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हमारे श्रोता मुकेश मौर्य, और आप कहते हैं कि सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए जो है बचाव के लिए हमें ये करना है कि पानी जमा ना होने दें गमलों, कूलर और पुराने बर्तनों में साफ पानी इकट्ठा न रहने दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, हल्के रंग के और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, त्वचा पर क्रीम या स्प्रे लगाएं, और रात में ऑल आउट या फिर मींस कहने का मतलब है मच्छरों को भगाने वाले जो भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करें। मच्छरदानी लगाएं, सोते समय बिस्तर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। घर की सुरक्षा के लिए खिड़की और दरवाजों पर जाली लगा कर रखें और जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सकें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। और आपने ये अच्छी बात कही है। श्रोताओं, आप भी हमारे आज के विषय के साथ हमें हमारी फेसबुक पे पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बस विषय के संबंध में बात ज़रूर करनी है। फिलहाल प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

बच के रहिएगा। फिलहाल आपने जानकारी बड़ी अच्छी लिखी है। कहते हैं मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और फाइलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। भाई बचाव के उपाय भी लिखे हैं आपने कि भाई जल भराव रोके, अपने घर के आसपास कूलर, गमलों और पुराने टायरों आदि में पानी जमा ना होने दें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, शरीर ढक कर रखें और एहतियात बरतें। अच्छी बात कही आपने अनोखे लाल जी। उम्मीद करते हैं आगे भी विषयों पर आप अपनी बातें इसी तरीके से लिखते रहेंगे। फिलहाल आपकी और हम सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, प्रोग्राम के अगले भाग के लिए मैसेज हमें करते हैं कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, और आप कहते हैं नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी नमस्कार अनोखे जी। इन दिनों जो है वो मच्छरों का प्रकोप है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया 100.4 एफएम और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। प्रोग्राम के अंतिम पायदान पर ये मैसेज हमें मिला है मोहम्मद आसिफ अंसारी का, शाद नगर फारूक नगर तेलंगाना हैदराबाद से। आप कहते हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इनसे बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा होना होने दें, पूरी बाह के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं। बिल्कुल ठीक बात है। अगला मैसेज हमें किया है फरीदपुर से वसीम भाई, असद और आपके सभी साथियों ने, और आप कहते हैं मच्छर के काटने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, आप कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें और अब पूरी बाजू के कपड़े पहने, आसपास साफ सफाई रखें। बीमारियों से बचने के लिए जिला बरेली तहसील और आप सभी स्तरों पर समय समय पर जो है वो सूचनाएँ प्रेषित की जाती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन को सफल और सुखद और स्वस्थ बनाने के लिए। अगला और अंतिम मैसेज है हमारे पास आरवी सिंह का मैसेज है अलागंज जनपद शाहजहांपुर से। आप कहते हैं मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है और अन्य कई बीमारियां हो जाती हैं, कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है, इसलिए मच्छरों से बचाव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, आप सभी ने सुनना चाहा है ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

और इस गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा और इस मॉनसून के मौसम में अपना ध्यान रखिएगा, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से अपने बचाव कीजिएगा, साथ ही साथ अपने आसपास एक पौधा एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा, साफ सफाई बनाए रखिए और देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम नारी संसार पेश करेंगी शिल्पी शाम को 5:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे चर्चा बारिश में त्वचा और बालों की देखभाल। साथ ही साथ चर्चा होगी फंगल इन्फेक्शन से बचाव के विषय पर, और होगा हेल्थ टिप्स, और सेगमेंट होगा इनसे मिलिए। शाम को 6:00 युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम युवाणी प्रज्ञा पाठक और माधव मिश्रा के साथ। प्रोग्राम में होगा आज का सवाल कुछ खास है आज ओइलक की, और साथ ही साथ चर्चा जो होगी वो होगा अक्षय ऊर्जा दिवस पर। 6:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी पेश करेंगे भैया सुरेंद्र पाल और कन्हैया, जिसमें आज की बात के अंतर्गत चर्चा होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड विषय पर। साथ ही साथ कृषि गोष्ठी में महिलाओं की कृषि में भागीदारी विषय पर प्रतिभागी हैं नेमवती विद्या, और संचालन है क्षमा सक्सेना का। और होगा आज का मौसम आज की नसीहत, बाजार भाव, मौसम व कृषि समाचार। प्रोग्राम में ही सुनेंगे आप लोग गीत। शाम को 7:00 कार्यक्रम ग्राम जगत में होगी चर्चा सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस पर, और प्रोग्राम में ही सुन सकेंगे आप लोग गीत। शाम को 7:31 पर सुनवाएंगे आपको प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन और आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रात्रि 8:00 से। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। श्रोताओं, सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे सुबह 8:15 पर। कार्यक्रम लोकगीतों का लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 9:00 से, और सुबह 10:00 लेकर हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। कार्यक्रम सब रंग का समय रहेगा 11:00। FM रेनबो के प्रोग्राम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 11:30।

दोपहर 1 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम रसरंग का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से। 2:30 पर सुन सकेंगे आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 3:30 पर। प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुनवाएंगे आपको शाम को 4 बजे से।

भजन संध्या का आनंद लीजिएगा शाम को 5:05 से, और प्रोग्राम लकी 3 का समय रहेगा शाम को 5:30 पर। 5:45 पर होगी सामयिक वार्ता, और जो वाणी सुनेंगे आप शाम को 6 वैभव मिश्रा के साथ। प्रोग्राम में होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और नजर आना है शाम। कार्यक्रम ग्राम जगत में होगी चर्चा, यातायात नियमों का पालन करें और होंगे लोकगीत शाम को 6:30 पर। कृषि पाठशाला कार्यक्रम पेश करेंगे शाम को 7 से, और प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 5:05। आइए सुनते हैं भजन संध्या, कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये मधुर भजन।

भवता परमा।

अभी आप सुन रहे थे राम भद्राचार्य जी के मधुर स्वर में ये मधुर भजन, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भजन संध्या। और कार्यक्रम का अगला भजन आप सुनेंगे लखबीर सिंह लखा के मधुर स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने को है। कार्यक्रम नारी संसार लेकर हाजिर हैं शिल्पी चौधरी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारी संसार।

0: नमस्कार बहनों, आज आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में मैं हूँ शिल्पी आपके साथ। और बहनों, बारिश का जो मौसम है वो हम सभी को बहुत ही सुहावना लगता है, लेकिन बारिश अपने साथ जहाँ इतनी हरियाली और खुशहाली लेकर आती है, वहीं थोड़ी सी जो इस मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी होती है वो बढ़ जाती है और इससे स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इससे स्किन चिपचिपी हो जाती है और बालों में डैंड्रफ या फिर इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सूखा और साफ़ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बारिश के पानी में अगर आप भीग जाते हैं तो भीगने के तुरंत बाद आप सादे पानी से ज़रूर नहा लें और बालों को भी वॉश कर लें। दिन में 2 बार किसी अच्छे फेस वॉश से चेहरा धोएं। चिपचिपाहट से बचने के लिए कोई कॉस्मेटिक या क्रीम बिल्कुल भी ना लगाएं। आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। स्किन पर ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ताज़ा जो ज़्यादा ज़्यादा आप मेकअप लगाते हैं उससे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और बारिश के पानी से अगर आपके बाल भीग गए हैं तो बालों को सुखा ज़रूर लें, क्योंकि अगर सुखाते नहीं हैं तो बाल भी टूट जाते हैं, टूटने की समस्या बढ़ जाती है। और इसी के साथ अगर आपके पैर या शूज़ भी भीग गए हैं तो आप अपने पैरों को भी साफ़ पानी से ज़रूर वॉश करें, क्योंकि इस ऐसे में जो हमारे पैर हैं उसमें एलर्जी हो जाती है गीले शूज़ की वजह से। और अगर ये छोटी छोटी सी आप बातें ध्यान रखते हैं तो हम परेशानियों से दूर रह सकते हैं इस बारिश के मौसम में भी, क्योंकि बारिश में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर कपड़े गीले हैं तो उसमें भी फंगस आ जाती है, हमारे पैर शूज़ कुछ भी गीला रह जाता है, वो सूख नहीं पाता है तो फंगस आ जाती है, जिससे हम सबको फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखें और जो बारिश का मौसम होता है उसको एन्जॉय करें, और करवाते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: जी फैजल जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ। आप बताइए।
0: भी बढ़िया है। आज हमारे प्रोग्राम नारी संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
1: धन्यवाद।
0: हाँ फैजल जी, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि विरासत ऐसा शब्द है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम आने वाली
1: जी
0: पीढ़ियों को सौंपते भी हैं, और इसमें भौतिक वस्तुएं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्ति, परंपराएं और ज्ञान शामिल है, और ये किसी
1: जी
0: आज देश या क्षेत्र की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। और हमारा जो
1: जी
0: देश है वो तो विरासत के लिए ही प्रसिद्ध है, फेमस है पूरे दुनिया भर में। तो आप क्या कहना चाहेंगी विरासत के बारे में?
1: विरासत, देखिए विरासत जैसा कि आपने कहा कि हमें हमारे पुरखों से मिली हुई जो हमारा कल्चर है या जो हमारी हमें उनसे जो भी संस्कार मिले हैं। और विरासत अगर हम देखें तो ये दो तरह की होती है। एक तो मूर्त होती है जिसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखते हैं, आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, हमारा कोणार्क का मंदिर हो गया, इत्यादि। और एक हमारी होती है अमूर्त। अमूर्त में आ जाते हैं जैसे हमारे, आप देखा होगा आपने, हमारे प्रसिद्ध जो हमारे नृत्य हैं, कथकली हो गया और कथक हो गया, और ऐसे ही और हमारे बहुत सारी जैसे जातक कथाएं जो हमारे पूर्वजों से चलती चली आ रही हैं और हम उसे जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं, एक लेगेसी है वो।
0: लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज को नहीं समझते, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिन्होंने हमारे लिए ये जो अमूल्य संपत्ति है वो छोड़ी है, तो हमारे जो
1: जी
0: बच्चे हैं इस चीज को नहीं समझते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि मतलब बच्चों को, हमें, मुझे लगता है कि उन्हें इसका जरूर ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को विरासत के बारे में बताना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से और कितना प्रयास करके आज उसको
1: जी जी
0: जो के रखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे बच्चों के बारे में?
1: जी शिल्पी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए जो आजकल हमारे ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है वो हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल
1: वो हम देखते हैं जो हमारी आज की पीढ़ी है वो मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इंटरनेट पे बिजी रहती है, और वो हमारी जो विरासत है उसको सजो कर नहीं रखना चाहती है। उनको इससे, उनको तो विरासत में आजादी मिली है, तो आजादी का मतलब ही उन्होंने गलत निकाल रखा है। उनको ये पता ही नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि की सब भूल चुके हैं कि कैसे किन कितने कठोर परिश्रम से हमें आजादी मिली है और ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको वो विरासत में मिल गई है। तो उसका कारण जो है वो सिर्फ वैश्वीकरण, मोबाइल और इंटरनेट आदि आप कह सकते हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए?
0: हाँ
1: उसके लिए हमें स्कूल्स में अपने, और हमें बींग अ गार्जियन या पेरेंट्स या एज अ टीचर, हमें उनको इस चीज में बताना चाहिए इसके बारे में। जैसे हम स्कूल लेवल पे एक प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे हमारी फील्ड ट्रिप्स होते हैं तो हम बच्चों को वो ट्रिप्स पर ले जा सकते हैं, मॉन्यूमेंट दिखा सकते हैं कि वो उनकी क्या, हमारे लिए क्या वो मुख्य भूमिका है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हम आज भी अगर अपनी पुराने मंदिरों पर जाते हैं या कहीं हम पुराने मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे लोग जाकर वहां गंदगी करते हैं और पत्थरों से अपना नाम लिख कर आते हैं, जिससे हमारी जो एक कल्चरल हेरिटेज है वो बिल्कुल ही बर्बाद होती चली जा रही है। दूसरा कारण इसका है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा खुल गई हैं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण, जिसका एक मुख्य अगर आप देखेंगे उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल पे आप देखोगे उसके पास में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं और उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाले केमिकल्स ना कि हमारी यमुना माँ को गंदा करते हैं, बल्कि उसके कारण हमारा ताजमहल है उसका कलर भी डिफेड होने लगा है, जो हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये हमारे लिए, इससे हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारा भारत जो विश्व कुटुंब कुंभ में विश्वास रखता है, हम हमेशा ही हर किसी को खुली बाहों से, आदर सत्कार से अपने देश में बुलाते हैं और हमारी धरोहर को लोग देखने आते हैं। लेकिन आजकल हमारी युवा पीढ़ी इन सबसे दूर हो चुकी है, तो उसको चाहिए, हमें एज अ एल्डर्स, बीइंग एल्डर्स, हमको चाहिए कि हम उनको इस विरासत के बारे में बताएं, उनको वहां लेकर जाएं और वहां की क्लीनलीनेस और बातों के बारे

0: उसकी मुख्यताओं के बारे में समझाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। कमी तो यही है कि जो आज बच्चे हैं वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को जाते तो हैं, विजिट तो करते हैं, लेकिन वो उसकी गैलरी में नहीं जाना चाहते, सिर्फ वहां पर सेल्फी खिंचवा के आते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि अरे हम वहां घूम। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि अगर ये जो हमारे धरोहर हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, कितने अच्छे कारीगर थे हमारे जो भी बनाए, है ना, और वो आज तक संजो के रखा हुआ है, उस चीज की गहराई में ना जाके सिर्फ उन्हें सिर्फ फैशन नजर आता है कि अरे ये यहाँ पर बिल्डिंग में हमने घूमने गए हैं, फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट कर दिया कि बस। अब
0: बिल्कुल ठीक कहा शिल्पी जी आपने,
1: ये नहीं पता होता है कि कितनी मेहनत से हम लोगों ने ये सब संजो के रखा हुआ है। तो आपने इस विषय पर बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शिल्पी।
2: बहनों, हम हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सौर, पवन, जल और बायोगैस जैसी ऊर्जा जो अक्षय है, उस ऊर्जा के महत्व के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है और लोगों को समझाना है कि सूर्य, हवा और पानी जैसी प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होते हैं और इन्हें संजो कर रखना, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को जागरूक करना कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से धरती को हमें बचाना है।

बहनों, अभी हम बात कर रहे थे बारिश का मौसम और बहुत सारी परेशानियाँ। उसी तरीके से अगर फंगल इन्फेक्शन से आप बचना चाहते हैं तो सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं, जिससे फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बजाय आप ढीले सूती वस्त्र ही पहने, जिसमें हवा भी पार हो सके। और जूतों का भी चुनाव आपको बहुत अच्छे से ही करना होगा, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे जूते या फुटवेयर्स पहन लेते हैं जिनका जो मटेरियल होता है जो वो अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा है कि आप अच्छे लेदर के ही जूते पहने, और कपड़े का जूता अगर आप पहनते हैं तो उसमें भी वही अच्छा है, क्योंकि वो भी आपके पसीने को सोख लेता है। गीला अगर आपका पैर रहता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और अपने सॉक्स, टॉवल, शूज़, ये सभी किसी भी से भी शेयर ना करें। इन सभी चीज़ों को शेयर करने से इन्फेक्शन फैलता है। और आप अपनी डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल और सब्जियों को शामिल करें। दही और लहसुन, ताज़े फल स्किन के माइक्रोबायोम को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे फंगस का पनपना मुश्किल हो जाता है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को बारिश में होने वाले फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।

मैंने स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं और संतुलित आहार लें और एक्सरसाइज ज़रूर करें, और ज़्यादा हो तो आप ताज़ा ही भोजन करें, और खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। रोज़ आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर करें, और टेंशन फ्री रहने के लिए मेडिटेशन करें। खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश ज़रूर करें, और खाना खाने के बाद सौंफ गुड़ ज़रूर खाएं, जिससे आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप अपने खाने में सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते हैं तो उसे अभी रोक दें, सेंधा नमक खाएं।

और कभी भी खाने को खाते समय टीवी या मोबाइल बिल्कुल भी ना देखें। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। और बारिश का जैसे मौसम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें किस किस चीज़ से इन्फेक्शन्स होने का डर रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है बारिश के मौसम में मच्छर बहुत पनपता है, तो ऐसे मौसम में आपको अपने आप को इन मच्छरों से बचाना है, क्योंकि डेंगू मलेरिया का खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि पानी जहाँ भी जमा हो जाता है उसमें मच्छर पैदा होता है। तो आसपास पानी ना जमा होने दें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बच्चे को भी ट्राउज़र और टी शर्ट फुल स्लीव्स की पहनाएं। और अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मच्छर ने काटा है, रैशेज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर टेलकम पाउडर आप डाल सकते हैं। और अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का, तो दीजिए शिल्पी को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं और प्रोग्राम करने के लिए आज युवाणी में एक विशेष मेहमान भी हैं और साथ हैं प्रज्ञा पाठक। और डिटेल जानेंगे आप प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं प्रोग्राम युवाणी।

0: नमस्कार, आदाब, खम्मागढ़ी, कीम छो, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपके साथ,
1: और मैं हूं आपका यार माधव। जितने भी युवा दिल इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सलाम। प्रज्ञा, आज की शाम कुछ खास है क्या?
0: जी हाँ बिल्कुल माधव, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो खास तो होगा ही इन युवा साथियों के लिए। जो आज का एंटरटेनमेंट है वो भी तो आज आपके लेकर आए हैं।
1: तो हमारे युवा साथियों, दो लाइन मेरे दिल में आई हैं। कहना चाहूंगा कि हवाओं के रुख को जो बदल दे उसे जवानी कहते हैं, हवाओं के रुख को जो बदल दे उसे जवानी कहते हैं, और जो इतिहास को ही बदल दे उसे कहानी कहते हैं,
0: और जो युवाओं को झूमने पे मजबूर कर दे उसे युववाणी कहते हैं। तो चलते हैं एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम।
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: वाह प्रज्ञा गाने ने तो समा ही बांध दिया। वैसे दोस्तों गाने से याद आया आजकल का मौसम तो देखा ही होगा आपने। ऐसा लग रहा है जैसे बादल और सूरज के बीच कोई छुपा छुपी का खेल चल रहा है।
5: हाँ माधव सही कहा। शाम की चाय का जो टाइम होता है शाम की चाय का होता है। इतना मन करता है सुहाने मौसम में चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन भाई वजन का जो ध्यान रखना पड़ता है।
4: अरे प्रज्ञा तुम भी ना इस बेहतरीन मौसम पर मुझे एक शेर याद आ रहा है सुनना चाहोगे।
5: क्यों नहीं इरशाद इरशाद।
4: तो अर्ज किया है कि ये मौसम भी कितना हसीन हो जाता है। ये मौसम भी कितना हसीन हो जाता है जब दिल में कुछ कर गुजरने का यकीन हो जाता है। मौसम तो बदलते रहेंगे उम्र भर। मौसम तो बदलते रहेंगे उम्र भर। मजा तो तब है जब हमारी कोशिशों से जमीन का मंजर बदल जाता है।
5: क्या बात है माधव बहुत ही लाजवाब। वैसे मौसम की इस रंगीनी के बीच में मुझे आज का जो विषय है वो याद आ गया है। बहुत ही गहरा और खूबसूरत विषय है। इस बात पर आज ध्यान देना है कि जो ये ऐसा विषय है हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा है हमारे देश की विविधता को बताता है। माधव कभी आपने देखा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको क्या नजर आता है।
4: प्रज्ञा मुझे नजर आता है फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता। हमारे देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो भाषा बदल जाती है और खान पान भी बदल जाता है।
5: बिल्कुल सही। जैसे राजस्थान की रंग बिरंगी पगड़ी और घाघरा पंजाब का कुर्ता और पजामा फुलकारी दक्षिण भारत की सिल्क साड़ी और हमारे उत्तर पूर्व राज्यों की पारंपरिक हथकरघा पोशाक। हर राज्य का अपना एक अलग पहनावा है जो वहाँ की संस्कृति की कहानी बयां करता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा। इतनी अलग अलग भाषाएं हैं इतने अलग अलग प्रधान भी हैं फिर भी जब हम एक साथ खड़े होते हैं एक सही दिखते हैं।
5: बिल्कुल सही बात है माधव। और हम सब की क्या पहचान है एक ही पहचान कि हम भारतीय हैं। यही तो हमारे देश की भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें अनेकता में एकता के धागे में पिरोए हुए हैं जैसे एक ही माला में अलग अलग रंगों के फूल मिलकर उसकी शोभा को बढ़ाते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा। लेकिन आज के सोशल मीडिया के इस दौर में जहां चारों तरफ इतनी चकाचौंध और भटकाव है कि हमारे कुछ युवा इस एकता के महत्व को भूलकर छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में ही उलझ जाते हैं कभी कभी तो वे अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं।
5: बिल्कुल सही बात उठाई माधव। आज के युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि देश की भक्ति सिर्फ सीमा पर जाकर लड़ना नहीं अपने से आप देश की संस्कृति का सम्मान करना अपने आसपास के लोगों से बिना किसी भेदभाव से प्रेम करना देश की तरक्की में अपना योगदान देना ये भी एक सच्ची देशभक्ति है।

0: है। युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि भटकने ना देना अपने कदमों को तुम, भटकने ना देना अपने कदमों को कभी तुम दोस्तों, तुम्हारे हाथों में इस वतन की तकदीर है। लड़ना है तो नफरत और बुराई से लड़ो, लड़ना है तो नफरत और बुराई से लड़ो, क्योंकि तुम्हारी एकता में इस देश की असली तस्वीर है।
1: बहुत खूब प्रज्ञा, आपने दिल जीत लिया। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ अब हमारे युवा साथी को थोड़ा एंटरटेन भी तो करना है।
0: बिल्कुल, तो हम उनको सुनवाते थे हैं ना उन्हीं की पसंद से ये सॉन्ग। तो माधव बता दीजिए ना किन किन लोगों की फरमाइशें आई हैं आज।
1: जरूर प्रज्ञा, मैं जरूर बताऊंगा। तो पहली फरमाइश हमारे पास आई है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मिस्किन, रितका मिस्किन, वाणी मिस्किन, आरव मिस्किन। और दूसरी फरमाइश जो हमारे पास आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह।
0: चलिए इनकी फरमाइश पे सुनेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: चलिए युवा साथियों, आज एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम ऐसे ही रोजाना किसी न किसी युवा साथी को आपके बीच लाते रहते हैं और खास इनकी जर्नी है। आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आप बता दीजिए हमारे युवा साथियों को अपना नाम।
3: जी, मेरा नाम मोनिका यादव है।
2: आपने अपनी पढ़ाई में क्या कर रखा है?
3: जी, मैंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा किया है, जो कि आंखों का होता है, आंखों से रिलेटेड होता है। आंखों के लिए जो भी छोटी मोटी दिक्कत, आंखों में कुछ पड़ जाए या फिर कोई भी आंखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, उसका सोल्यूशन होता है।
2: अच्छा, तो आपने ये डिप्लोमा मतलब ग्रेजुएशन के बाद किया है या कैसे किया है, 12th के बाद?
3: नहीं, मेरा 12th पास के बाद फिर ये डिप्लोमा किया था, ग्रेजुएशन नहीं किया मैंने।
2: अच्छा।
3: कुछ कंपलसरी नहीं है इसके लिए कि ग्रेजुएट हो आप विदाउट ग्रेजुएशन के ये कर सकते हो।
2: अच्छा,
3: after 12th। हाँ जी।
2: अच्छा मोनिका जी, मतलब कैसे आपको लगा कि आपको इसमें जाना चाहिए, इस वाली लाइन में?
3: मैम, इसका बहुत अच्छा स्कोप है, लोग बताते हैं और मैंने देखा भी, जो लोगों को छोटी मोटी दिक्कत होती है आंखों के लिए, उनको छोटी दिक्कत के लिए काफी काफी टाइम उनको लग जाता है। कभी कभी उनकी छोटी मोटी दिक्कत की आंखों में कुछ पड़ जाए, वो अच्छे से ध्यान ना दें, डॉक्टर को ना दिखाएं, हमारी सलाह ना लें, तो मैम वो जो प्रॉब्लम होती है उनकी इतनी बढ़ जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है।
2: आपने ये अपना डिप्लोमा बताया, इसमें आपको क्या क्या सिखाते हैं?
3: इसमें हमारा जो आंखों से कोई भी किसी को दिक्कत हो रही है कि आंखों की कॉर्निया पे कोई दिक्कत आ गई, कोई स्क्रैचेस आ गए, कुछ लग गया, कुछ गिर गया, तो उसके लिए ड्रॉप वगैरह हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ड्रॉप आपको करनी है। और फिर जब एक उम्र के साथ साथ नंबर बढ़ता है तो उसके लिए हम उनको स्पेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका रिफ्रैक्शन करके, उनका चश्मे की जांच करके कि कितना नंबर है, कितना कितना नंबर है।
2: अच्छा।
3: हर उसका, हाँ, तो वो हम उसका चश्मे का नंबर दे देते हैं जांच करके, जिस वो भी नंबर आ रहा है।
2: अच्छा मोनिका जी, आपने बताया कि आपने ये डिप्लोमा किया, क्या प्रेरणा मिली आपको कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए था? आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया था?
3: मैम, मेरा 12th तो बायो से था, साइंस साइड से।
2: आप साइंस साइड बायो से थी
3: जी।
2: अच्छा, तो मोनिका जी, आपको क्या कैसे लगा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? बहुत सारी लाइनें होती हैं।
3: हाँ जी मैम।
2: क्योंकि लिए तो आपने क्या सोचा कि आपको इस लाइन में आगे जाना चाहिए?
3: मैम, इस लाइन से ही हमें मौका मिला लोगों की बातें सुनने का, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। हम आसपास भी देखते रहते हैं लोगों की, उनको कोई आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई छोटी, कभी कभी नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इतना पता नहीं होता कि ये इतनी हानिकारक हो सकती है उनके लिए कि उनकी आंखों की भी रोशनी चले जाए या फिर कुछ और भी हो जाए, कॉर्निया डिफेक्ट हो जाए या फिर कुछ भी। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि इस तरीके से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं हॉस्पिटल में, या फिर हम आसपास भी जो लोगों को देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत है या नहीं है, चश्मे का अगर है कि उनको रोशनी अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं दूर का या पास का, तो उनको चश्मा प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी जांच करके आंखों का।
2: अच्छा मोनिका जी, जो भी डिप्लोमा करना चाहता है, जो भी इस लाइन में जाना चाहता है, तो वो किस तरीके से?

0: से जा सकता है? जैसे उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? आपने क्या करा था?
1: आपको कुछ नहीं, आपको 12th पास करके आपको अपना मन बनाना है कि हाँ आपका मन है कि हाँ आपको इस लाइन में जाना है, आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको आंखों की दिक्कत जो भी है उसको उसको आपको ट्रीट करना है, तो आपको इस विदाउट एनी ग्रेजुएशन आप इसमें वो ले सकते हैं एडमिशन 12th
0: अच्छा,
1: को। इनका वो पैरामेडिकल बोलते हैं, इसमें इसमें काफी कोर्सेज आते हैं, इसमें से एक ऑप्टोमेट्री है, इसको पैरामेडिकल बोलते
0: अच्छा पैरामेडिकल में आता है ये आप हमारा।
1: हैं। हाँ जी मैम, ओटी वगैरह, ऑप्टोमेट्री और मतलब फिजियोथेरेपी, ये सब पैरामेडिकल में आते हैं मैम।
0: जो भी अगर ये करना हमारे युवा साथी करना चाहते हैं, तो जैसे
1: जी
0: कई बार क्या होता है कि किसी भी युवा साथी का एक ये होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़े तो उस क्षेत्र में उनका करियर हमेशा ग्रो करे। तो आप तो इसी लाइन से हैं, तो आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी युवा साथी आगे बढ़ता है तो
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: उनका करियर कैसे ग्रो होगा, या इस क्षेत्र में कितना उनके करियर को आगे सफलता मिलेगी?
1: मैम इसका बहुत अच्छा स्कोप रहता है, बहुत अच्छा करियर है इसमें, मैंने तो कर रखा है
0: जी
1: इसमें। आप इसको आप अपना करके, 2 साल का डिप्लोमा होता है फाइनल करके, आप अपना खुद का, आपको परमिशन होती है, आप अपना खुद का ऑप्टिकल भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी मशीन वगैरह रख के, ड्रॉप्स परमिशन लेके आप वो चला सकते हैं, और अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब भी कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो
1: हाँ जी
0: आप
1: मैम,
0: इसके मतलब किसी डॉक्टर के अंडर काम कर सकते हैं,
1: हाँ जी मैम,
0: और दूसरा
1: अपना
0: आप
1: खुद
0: मतलब
1: का
0: खुद
1: भी
0: का भी खोल
1: सेटअप
0: सकते
1: लगा
0: हैं।
1: सकते हैं, हाँ ऑप्टिकल्स का जो भी है वो खोल सकते हैं मैम।
0: ओके,
1: हाँ जी,
0: अच्छा, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं या फिर
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: प्राइवेट?
1: मैम, हाँ जी, वैकेंसी निकलती है, आपको उसको क्रैक करना पड़ेगा, एग्जाम देना होता है उसमें,
0: अच्छा
1: वैकेंसी निकलती है हर हर साल। हाँ जी, पैरामेडिकल्स
0: अच्छा
1: में निकलती है नेशनल लेवल पर।
0: अच्छा अच्छा ठीक है मोनिका जी, आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि उनको भी अच्छा लगेगा और जो भी इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनको भरपूर जानकारी आज मिल जाएगी।
1: जी मैम,
0: अच्छा
1: बिल्कुल,
0: मोनिका जी, आज आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू।
2: हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप आपके रेडियो सेट पर अपने दोस्त माधव की आवाज।
0: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा। अच्छा माधव, आपको पता है आज का दिन और भी ज्यादा खास क्यों है? क्योंकि आज हमारे देश के जो युवा हैं वो उनके लिए बेहद प्रेरणादायक है।
2: बिल्कुल प्रज्ञा, आज हम बात करने वाले हैं एक दूरदर्शी सोच के नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती की, जिसे पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है।
0: सही कहा माधव, युवाओं की असली प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने ही ये समझाया कि देश की असली ताकत उसकी युवा आबादी में है। उन्होंने युवाओं को 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार दिया, देश के निर्माण में उनकी जो भागीदारी है उसको भी तय किया।
2: और सिर्फ इतना ही नहीं प्रज्ञा, आज हम जो कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल क्रांति देख रहे हैं उसकी नींव भी उन्होंने ही रख दी थी। उन्होंने उस दौर में भविष्य को देख लिया था। उनकी इसी सोच को सलाम करते हुए एक शेर याद आता है,
0: बिल्कुल
2: तो अर्ज किया है कि जो देखते हैं दूर का इतिहास वही बनाते हैं, जो देखते हैं दूर का इतिहास वही बनाते हैं, अपनी सोच से वो पूरे युग को जगाते हैं। हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है, हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है, युवाओं के दम पर ही तो देश की पहचान होती है।
0: वाह, क्या बात है माधव। अच्छा आपको पता है आज का जो दिन है वो एक और महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में।
2: जी बिल्कुल प्रज्ञा, यह दिवस भी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन की स्मृति में ही शुरू किया गया था।
0: और जो इसका उद्देश्य है, कोयला, पेट्रोलियम जिसे सीमित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने, भविष्य में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये हवा और पानी को भी गंदा नहीं करता।
2: अच्छा प्रज्ञा, हमारे श्रोता यही सोच रहे होंगे कि आज नए दोस्त क्या आ गए हैं, ये तो बात ही करे जा रहे हैं, कुछ सुनने को भी नहीं मिलेगा।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनको सुनवाएंगे ना इन्हीं की पसंद से प्यारा सा सॉन्ग। अच्छा फरमाइश बता दीजिए जल्दी से।
2: जरूर प्रज्ञा, मैं फरमाइश बताता हूँ। तो पहली फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS निवाकर, निर्मला निवाकर, विशाल निवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोरके, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा जी की।
0: चलिए इनकी फरमाइश पे सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवाणी। ये आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6:30 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी। और कार्यक्रम करने के लिए स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं कन्हैया भैया और भैया सुरेंद्र। सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: चलते चलते माधव आज के सवाल का जवाब भी बता दीजिए आप।
1: जी बिल्कुल प्रज्ञा, आज हमने अपने श्रोताओं से पूछा था कि सविता पुनिया किस खेल से संबंधित हैं, तो सही उत्तर है हॉकी से। तो प्रज्ञा, हमारे किन किन श्रोताओं ने आज का सही उत्तर दिया?
0: हाँ माधव, आज का जो सही उत्तर देने वाले श्रोता हैं, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, प्रवीण चौहान बरेली से अनोखे लाल मौर्य, राजवीर सिंह यादव जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, राजेश वर्मा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, इन सभी ने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और दोस्तों, इसी खूबसूरत बातों के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं विराम करने का समय आ गया है, और हमें पूरा यकीन है जो आज की बातें हैं वो आपके दिल तक ज़रूर गई होंगी।
1: तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही अपना प्यार हमें देते रहिए। इसी वादे के साथ अपने दोस्त माधव को

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: आज बातचीत करें बात से पहले हमारे साथ में आ चुके हैं हमारे भैया सुरेंद्र। सुरेंद्र भैया राम राम।
5: राम राम भैया, राम राम।
4: और सब किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सब भैया बहनों को हम दोनों की
5: राम राम।
4: और देखो भैया, अब खेती बाड़ी में बहुत सारे काम काज लगे हुए हैं, और हमारे किसान भैया उम्मीद करता है अपनी खेतन से कि हमें अच्छी फसल मिले और कम लागत से मिले।
5: देखो भैया, हर किसान को सपनों होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले
4: जी,
5: और जो हमारी फसल है हमें कम लागत लागे। देखिए भैया, कम लागत लागे और ज्यादा पैदावार मिले जाके लिए कुछ उपाय हैं भी हमें करने पड़ेंगे।
4: वे कौन से हैं भैया?
5: सबसे पहले उपाय और सबसे जरूरी काम होता है भैया, मृदा की जाँच।
4: अच्छा, मिट्टी की जाँच?
5: मिट्टी की जाँच। देखो कन्हैया भैया, होता क्या है कि जो हमारे किसान भैया बहन है, खेत में कोई भी फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करावा। बाकी का करें, 8-10 जगह से मिट्टी इकट्ठी कर ली
4: जी।
5: अब मिट्टी को सुखाएगा, बढ़िया करके चलनी से छान लो, मतलब महीन मिट्टी ले जाएंगे। अपना नाम, खसरा नंबर, खेत नंबर जो है वो लिख कर अपने ब्लॉक पर जो कृषि इकाई केंद्र है वहां पर दया। अब भैया फ्री में मिट्टी की जाँच की जाती है, वहां पता चल जाये कि हमें का पोषक तत्व की कमी है, का चीज डालना चाहिए, यानी कि अपनी जमीन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बने।
4: और साथ ही साथ में सुरेंद्र भैया, एक चीज आप भूल रहे हो।
5: समझ गए हम आपकी बात,
4: क्योंकि हमारे किसान भैया कागज और पेन लेके वो बैठता है अपना कार्यक्रम जब शुरू होता है तो।
5: जी, आप कहना चाह रहे हो कि जो कार्यक्रम के शुरू में सवाल पूछता वो सवाल का है।
4: बिल्कुल सही पहचानी भैया आपने।
5: तो भैया आज को सवाल है, बरसात के मौसम में पशुओं में गलघोंटू रोग होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है? सवाल हमारे भैया एक बार फिर सुन लें, बरसात के मौसम में पशुओं में गलघोंटू रोग होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है?
4: तो भैया करो मंथन और विचार, ढूंढ निकालो जो सवाल को सही जवाब, और कार्यक्रम के अंतिम समय में हम जो सवाल को सही जवाब आपको बतावेंगे, तब आप अपने द्वारा तलाशे गए जवाब को हमारे जवाब से मिलान कर

0: सत्तो।
1: अब भैया देखो, बातचीत तो घर की जारी रहेगी है, लेकिन अब समय ही हुआ है, अपने भैया बहनों को सुनवा दे कृषि गोष्ठी की। जो हमारी महिलाएं हैं वे वो खेती बाड़ी में बढ़ लगे हिस्सा लिए,
2: बिल्कुल।
1: तो आज हम कृषि गोष्ठी में लेके आए हैं महिलाओं की कृषि में भागीदारी। प्रतिभा करुआ नियमवती और विद्या देवी ने, और संचालन करुआ हमारी क्षमा बहन ने। तो क्यों ना अपने भैया बहनों को सुनवा देते जा कृषि गोष्ठी।
3: राम राम बहनों।
4: राम राम। कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को राम राम।
3: राम राम। राम राम। आज हम बात करेंगे उस मेहनत की जो खेतों में तो दिखाई देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो हमारी बहनों की उस मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां बहनों, कृषि में महिलाओं की भागीदारी आज काउ से छुपी ना है। बीज बोने से लेकर निराई गुड़ाई, कटाई, पशुपालन, अनाज की सफाई और घर की देखभाल, महिलाएं लगभग हर काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारी ग्रामीण बहनें खेती बाड़ी में किस तरह अपना योगदान दे रही हैं, उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे कृषि के क्षेत्र में उनकी मेहनत उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रही है। तो आओ बहनों, आपकी मेहनत, आपके अनुभव और आपकी सफलता की कहानी खुद आपकी जुबान से सुनते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बहनों का परिचय जान लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या नाम है?
4: नेमवती नाम है हमारा।
3: और आपको क्या नाम है?
5: विद्या नाम है हमारा।
3: नेमवती जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं?
4: हम फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली की रहने वाली हैं।
3: अच्छा अच्छा। और विद्या जी, आप?
5: उनासी की रहने वाली।
3: आप नेमवती जी बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई की है?
4: हाँ की है पढ़ाई, एमए किया है मैंने, बीएड भी किया कर रखा है।
3: बहुत अच्छी बात है, आपने एमए बीएड कर रखो है। और विद्या जी, आपने पढ़ाई लिखाई की है?
5: जी।
3: कहाँ तक की है?
5: दसवीं तक है बस।
3: दसवीं तक की है, तो आपने उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की?
5: उसके बाद थोड़े परिवार में पड़ गए, फिर शादी भी हो गई थी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा। तो विद्या जी, आपके परिवार में कौन कौन है?
5: जी पति हैं, बच्चे हैं।
3: अच्छा।
5: और सास ससुर भी।
3: और नेमवती जी, आपके परिवार में कौन कौन है?
4: हमारे परिवार में हम चार ही लोग हैं।
3: कौन कौन?
4: पति पत्नी, दो बच्चे।
3: दो बच्चे हैं। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं?
4: हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
3: सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं नेमवती जी कि आज को विषय है महिलाओं की कृषि में भागीदारी, यानी कि हमारो जो कार्यक्रम जो है कृषि गोष्ठी, इसमें हम कृषि खेती बाड़ी की ही बात करते हैं। तो आप जब बताइए हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को, आप खेती बाड़ी करते हैं?
4: हाँ करते हैं।
3: आपके खेत में कौन कौन सी फसल लगी हुई है?
4: इस समय तो धान लगा हुआ है, धान लगवा रखा है। अच्छा, लौकी अच्छा। है, तुरई है।
3: अच्छा।
4: सब्जी के हिसाब से और थोड़ा बेचने के हिसाब से लगाए रखी है, खान पीन के हिसाब से।
3: खान पीन के हिसाब से लगाए रखी है।
4: हाँ।
3: तो आप बेच भी लेते हैं और
4: बेच भी लेते हैं, में भी घर में इस्तेमाल हो जाती है।
3: अच्छा अच्छा। हाँ। और विद्या जी, आपके खेत में काका लगो है?
5: इस टाइम धान भी है थोड़े, और उसके बाद में लौकी तुरई जी, इस टाइम जो सब्जी चलती है, बैगन है।
3: अच्छा अच्छा।
5: और भिंडी है।
3: अच्छा।
5: बेचते भी हैं और घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं।
3: घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं, यानी कि आप खेती बाड़ी पर भी निर्भर हैं।
5: निर्भर हैं जी।
3: नेमवती जी, हम जो जानना चाहते हैं कि आप खेती बाड़ी में कौन कौन से काम करते हैं, यानी कि हमारी बहनें जब खेती करती हैं तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमारी बहनें बहुत अच्छे से निभा पाते हैं?
4: खेती में हम निराइयों कर लेते हैं, फसलों कटवाते हैं, बुवाई से लेकर जब तक न कट कर आती है घर तक, तब तक काम रहते हुए खेती में।
3: तो आप खेती कब से कर रही हैं?
4: खेती तो हमारे बचपन से ही देखते आए हैं, माँ बाप करते हैं, उसी हिसाब से हम सीख गए हैं।
3: तो खेती के अलावा भी कुछ आप करते हैं?
4: हाँ मैं सिलाई भी कर लेती हूँ और बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ।
3: बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हैं। तो आप हमको जब बताइए कि आप कैसे सारी चीजों को मतलब संभालती हैं, कि खेती बाड़ी भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, परिवार भी है आपको, और आप साथ में कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो कैसे इन सब चीजों को आप संभालती हैं?
4: इनके लिए हम सुबह बहुत सवेरे ही उठ जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: हाँ करीब 3:30 बजे से उठ कर घर के ही काम करने में लग जाते हैं। पहले घर को जल्दी जल्दी निपटाते हैं काम।
3: हाँ।
4: फिर बच्चन के लिए तैयार करके स्कूल को भेजते हैं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: फिर अपना जो समय बचता है उसमें हम थोड़ी बहुत सिलाईयों कर लेते हैं।
3: अच्छा, क्या क्या सिल लेते हैं?
4: सूट है, सलवार, जो भी लेडीज में आता है, महिलाओं के जो कपड़े होते हैं वो पूरा सिल लेते हैं हम।
3: अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि आप खेती बाड़ी में तो अपना योगदान दे ही रही हैं, साथ ही साथ आपने अपने घर में भी कमाई को साधन बनाए रखो है, क्योंकि जब हमारी बहनें आत्मनिर्भर होते हैं उनको घर अच्छे से चल पाता।
4: हाँ, आज के जमाने में महंगाई ज्यादा है, एक की कमाई से पूर्ति तो पड़े ही ना।
3: बिल्कुल।
4: और ना ये इतनी ज्यादा खेतियों में बचत हो पाती है, खेती में जे तो लगा लो
3: बिल्कुल
4: उतना ही मिल पाता है, वापस कभी कभी तो बहु ना मिल पाता है। खराब।

0: जाती है तो और क्या।
1: क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर हमारी बहनें कुछ काम कर रही हैं, जैसे कि आपने बताओ कि आप सिलाई करते हैं, बहुत सी बहनें अचार पापड़ बनाए
0: हाँ
1: लेते हैं और उसकी बिक्री करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हमें खेती बाड़ी में नुकसान हो जाते हैं, हमारी फसल खराब हो गई है, तो क्या होता है कि अगर हमारी बहनों ने अपनी बचत कर रखी है घर में अपने काऊ काम से, तो वो हमारे घर में इस्तेमाल हो जाते
0: इस्तेमाल
1: हैं।
0: है जाती है।
1: विद्या जी आप बताइए कि आप खेती बाड़ी करते हैं जैसे आपने बताया, तो आप खेती में क्या क्या काम करते हैं, मतलब आपकी क्या भागीदारी है, आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप खेती में करती हैं, और घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं?
0: जैसे अभी बताया नेमती दीदी ने, हम भी ऐसे ही करते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना होता है, उसके बाद ही मतलब वो अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बच्चों के बाद में जो भी खेती है तो खेती के लिए ऐसा जल्दी काम किया, कुछ काम रह बचा तो वो उसे ऐसे आके कर लेते हैं, क्योंकि खेत का काम कुछ ऐसा होता है धूप में होता नहीं है,
1: हाँ
0: धूप भी पड़ती है, तो उसी हिसाब से वो 9 से 10 11 बजे तक खेत में रहते हैं, नराना बोना ये सारी चीजें, और काटना भी, अगर फसल तैयार है तो उसे टाइम से काटना भी होता है और
1: बिल्कुल
0: टाइम से
1: बिल्कुल
0: सींचना भी होता है, पानी भी लगाना होता है उसमें, और इस टाइम तो अभी बरसात का ही पानी इतना हो जाता है खेतों में कि इनकी
1: हाँ
0: फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती है, बस विशेष थोड़ा दवाई और खेती देखना बढ़ाना जो होता है उसे बहुत कच्ची खेती मानी जाती है, अगर
1: बिल्कुल
0: उसमें एक भी दिन नहीं जाते हैं तो फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है, तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, और थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर इसमें बीच कुछ ऐसा होता है कभी कभी खेत में तो 2 घंटे 3 घंटे में हम सारा काम, कुछ वैसे आस पड़ोस की महिलाएं हैं उन्हें ले जाते हैं तो
1: हाँ
0: थोड़ा बहुत काम जल्दी जल्दी उनसे निपटवा लेते हैं करवा लेते
1: बिल्कुल
0: हैं, और कुछ उन्हें सुविधा भी दे देते हैं ये भी कर लेते हैं कभी कभी। और
1: अच्छा।
0: हाँ
1: नेमति जी खेती में मौसम बहुत मायने रखता
0: हाँ
1: है।
0: जी मौसम बहुत
1: हाँ
0: महत्व,
1: आप जब बताइए कि मौसम को कितना असर पड़ता है हमारी खेती बाड़ी में, जैसे कि अभी बारिश हुई गई, तो इससे आपकी खेती में लाभ हो कि नुकसान?
0: कभी कभी तो ऐसे होता है जैसे फसल है कच्ची, जैसे गोभी की पौध लगा रहे हैं और तो उसमें अगर ज्यादा बारिश हो गई
1: हाँ
0: तो फसल खराब भी हो जाती है, पौध भी खराब हो जाती है,
1: खराब
0: इस
1: हो
0: समय
1: जाती
0: जैसे पौध पड़ रही है
1: है।
0: आगे की जो अब खरीफ की फसल के लिए पौध तैयार करी जा रही
1: तैयार
0: है
1: कही
0: कि
1: जा रही
0: आगे के लिए हमें गोभी तैयार हो जाए,
1: हाँ
0: पालक है, मूली है, ये सब्जियों के लिए हम तैयार करते हैं। तो इस समय फसल अगर ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे धनिया बोया और बारिश हो गई तो वो खराब हो जाता है,
1: खराब
0: तो ये हानिकारक भी है, ज्यादा बारिश होना हानिकारक भी है, और कम होगी तो लाभ नहीं मिल पाएगा,
1: बिल्कुल।
0: सूख भी जाती है कभी कभी।
1: लेकिन जैसे कि धान की फसल के लिए जब
0: धान की
1: बारिश,
0: फसल
1: वरदान
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए
0: धान मक्का इन
1: वरदान
0: चीजों के
1: है,
0: लिए ये वरदान है, बारिश गन्ना है गन्ने के
1: हाँ
0: लिए भी है, इस समय
1: बारिश का
0: फायदेमंद
1: होना।
0: है।
1: नेमती जी आप खेती में महिलाओं की मेहनत को पर्याप्त सम्मान मिलता है, आपको क्या लगता है कि हमारी बहनें खेती बाड़ी करते हैं उसमें पूरा समय देते हैं, तो उनको उस हिसाब से सम्मान मिलता है क्या?
0: कम मिल पाता है
1: कम मिल
0: क्योंकि जो
1: पाता
0: औरत प्रोफेशनल मतलब कहीं नौकरी कर रही है तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। वो क्या होता है कि ये तो खेत में ही काम करती हैं और घर का काम करती हैं, ये क्या जानती हैं,
1: हाँ
0: ऐसा सुनने में आता है, पास पड़ोस के भी लोग कहते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हमारी सोसाइटी भी यही नजरिए से देखती है
1: हाँ
0: कि औरत केवल घर का ही काम कर रही है, और लेकिन घर का काम ऐसा नहीं है कि वो देख सके कि घर में कितनी ज्यादा परेशानी होती है, किस तरह से वो अपने आप को कर रही है काम, मतलब औरत की वैल्यू कम आंकते हैं।
1: बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बहनें घर को तो पूरा काम करती हैं और साथ ही साथ खेत पे जाके अपने पति को अपने बच्चों को हाथ बटाते हैं, और देखो उसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मदद के नहीं हो पाते हैं, तो बहनें उसमें बराबर का योगदान देती हैं।
0: योगदान देती हैं,
1: लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग जा सोचते हैं कि अरे क्या काम है
0: क्या
1: खेती
0: काम
1: में,
0: है,
1: क्या काम
0: खेती है तो
1: किया,
0: वह
1: खेती यही तो है, या तो
0: बचत तो
1: घर
0: सब ही
1: वाली
0: कर लेते हैं,
1: वैसे तो
0: पढ़ी
1: औरत
0: लिखे भी
1: परिवार
0: करती
1: में,
0: है और अनपढ़ भी कर लेती है, खेती को ही ज्यादा
1: वैसे महिलाओं का
0: ये सोचते हैं
1: योगदान
0: विशेष
1: तो
0: काम नहीं
1: परिवार
0: है।
1: में भी है खेती में भी है, और जो भी अपना और भी काम होता है, मगर है औरत का योगदान, मगर आजकल वैल्यू तो नहीं है नहीं ऐसा नहीं
0: जी,
1: है,
0: तो
1: बहुत
0: जॉब
1: से
0: वाली जॉब जो करती हैं उन्हें ज्यादा ही लोग, अरे ये मतलब जॉब कर रही हैं
1: ऐसा
0: जी
1: नहीं है, बहुत सी आप घर पे काम कर रही हैं, या आपने जैसे बताया आप सिलाई करती हैं, या काऊ बहन पार्लर चला रही हैं, काऊ अचार बना रही हैं, मगौड़ी बना रही हैं, तो आज के समाज में उनको भी बहुत अच्छे से आंका हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखो जाता है कि हमारे घर में खेती बाड़ी हो रही है या पशुपालन हो रहा है या हम घर में काम कर रहे हैं, तो महिलाओं को थोड़ो कम
0: कम
1: आंकते
0: हो,
1: हैं।
0: पुरुष प्रधान समाज है गांव का, ग्रामीण एरिया का ऐसा रहता है ज्यादातर,
1: शहर में ये

0: चीजें कम देखने को मिलती हैं।
1: हाँ,
0: गांव में ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल। और नीमती जी, महिला किसान के रूप में आप अपनी कौन सी उपलब्धि सबसे बड़ी मानते हैं कि आप महिला किसान हैं, तो आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपको लगता है कि मैंने जो काम बहुत अच्छा करो है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि मैं खेत का भी काम अच्छे से कर लेती हूँ, उसके साथ साथ सिलाई भी करती हूँ, अपनी इनकम भी करती हूँ। मैं किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहती।
1: हाँ,
0: खुद से अपना कमा सकती हूँ।
1: यानी कि आप एक आत्मनिर्भर महिला?
0: आत्मनिर्भर।
1: आपको काऊ के आगे हाथ नाए फैलाने की जरूरत है?
0: जरूरत है।
1: और विद्या जी, आप बताइए, आप क्या समझती हैं कि मतलब आप महिला किसान के रूप में अपने को देखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है आपको जो मतलब खुशी देता है कि हम एक महिला किसान हैं और हमने अपनी खेती बाड़ी में जो योगदान दो?
2: मेरा मानना तो यही है, जैसे मैं अपने जैसे टाइम के हिसाब से खेती भी कर लेती हूँ और बच्चों को भी देख लेती हूँ, परिवार भी अच्छे से चला लेती हूँ अपना, तो उसमें यही चीजें हैं मुझे मतलब अपना महत्वपूर्ण, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है, मतलब बच्चों के साथ रहना और खेती भी करना, और दो चार महिला भी हो जाती है इकट्ठी तो अपने कोई बात है अपने कहना या खेत का काम भी कराना, उससे उनका भी टाइम पास हो जाता है और खेती भी अच्छे से हो जाती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आप दोनों ने कि आप दोनों ही आत्मनिर्भर हैं, आप काऊ पर निर्भर नहीं हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से कर रही हैं, चाहे वो घर को काम हो, चाहे वो खेती को काम हो, चाहे वो बच्चों के साथ आपको समय है। तो हम जो जानना चाहते हैं कि आप बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहती हैं, बच्चों की शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी?
0: बच्चों की शिक्षा तो काफी जरूरत है, क्योंकि आज के समय में अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आज के जमाना टेक्नोलॉजी का आ रहा है, कंप्यूटर का आ रहा है, अगर अनपढ़ रह जाएंगे तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त होगी बच्चों को।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए मैं अब तो सरकार ने भी सुविधा कर दी है कि 6 से 8 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
1: जी जी जी।
0: उस पे भी बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो सभी माता पिता को ये चाहिए कि उन्हें शिक्षा प्रदान करें।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें घर के काम ना लगाएं। मान लो खेती कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं खेती में ही काम करो, पढ़ के क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये ना सोचें क्या होगा। मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है, फिर भी बच्चों को शिक्षित कराना हमारी जिम्मेदारी है। हर माँ बाप को यही चाहिए कि वो बच्चों को शिक्षित कराए
2: और इससे आगे
0: भविष्य भी सुरक्षित
2: अच्छा
0: हो उसका, बच्चे का
2: अच्छा चलेगा और अच्छा मतलब देख रेख भी हो पाएगी। जैसे अभी अभी की जो संस्कृति इतनी अच्छे से पढ़ रही है, तेजी से भाज रही है, आगे और अच्छे से भाजेगी।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे आपने अभी कहो कि खेती करनी है तो पढ़ाई की क्या जरूरत है, लेकिन हमारी खेती बाड़ी में भी पढ़ाई
0: की जरूरत होती है,
1: क्योंकि जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो नई नई जो तकनीकें हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं या बहुत से विशेषज्ञ की राय, जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आप
0: पूछोगे क्या,
1: लोगों से कैसे आप जागरूक कैसे होंगे,
0: जागरूक
1: हमारे खेती में कौन कौन सी चीजें हमें,
0: मान लो कौन सी हमें दवा की जरूरत है, कौन सा बीज हमारे फसल के लिए अच्छा होता है, ये भी तो देखना पड़ता है
2: किस सीजन पर, ये सीजन भी पढ़ी लिखो मतलब पढ़े लिखे ही बता सकते जानते हैं।
1: बिल्कुल।
2: चीजों में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, कौन सा टाइम है सब्जी, कौन सी टाइम कौन सी सब्जी लगानी है, बोनी है या कितनी मात्रा में क्या दवा लगानी है, इन चीजों के लिए भी मतलब पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है।
1: बहुत अच्छी बातें की आपने नेमती जी, विद्या जी। अंत में आप हमारे कार्यक्रम में गांव की दूसरी महिलाओं को खेती के बारे में कौन सा संदेश देना चाहते हैं? पहले नेमती जी आप बताइए।
0: मैं सभी से कहना चाहूंगी ग्रामीण महिलाओं को कि वो खेती भी करें, उसके साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल भी करें, उन्हें शिक्षित भी बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं केवल खेती पर ही डालें।
1: हाँ।
0: और जो भी समय अपने लिए बचता है कुछ समय अपने लिए भी बचाएं, अपने जीवन के लिए। मान लीजिए कोई काम करती हैं, जो अपनी इच्छाएं वो पूरी करें
1: जी।
0: ये काम करने के आप मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर बने ज्यादातर।
1: और विद्या जी आप क्या कहना चाहती हैं हमारी बहनों से?
2: मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो नेमती दीदी ने बोला है, मैं भी आज महिलाओं के लिए
0: आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं काम करना चाहिए,
2: स्वयं काम करना चाहिए और किसी पर आधारित ना रहेंगी और अपना आगे का भविष्य आगे से बच्चों का भी और अपना भी अच्छे से रख कर पाएंगी,
1: सुरक्षित
2: रख पाएंगी।
1: नेमती बहन और विद्या बहन आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सुरेंद्र भैया देखो अब हमारी महिलाओं ने बताई ही कि किस तरीका से वे खेती बाड़ी कर रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ में कैसे देखभाल कर रही हैं, और अन्य महिलाएं जरूर प्रेरणा लेंगी कि हमें खेती में किस तरीका से काम

0: काज करने हैं।
1: मेन चीज ये है कि अब महिलाएं भी खेती बाड़ी में पीछे ना है, तो हमारी जो कृषि गोष्ठी ही महिलाओं की कृषि में भागीदारी, जिसमें प्रतिभा करो हो नियमती और विद्या ने, संचालन करो क्षमा बहन जी ने। और आज भी ये देखो एक बात और है,
0: कौन सी?
1: आज है अक्षय ऊर्जा दिवस।
0: यानी प्राकृतिक ऊर्जा को जब हम उत्पन्न करते हैं, बाकू आज दिन है,
1: दिन है। यानी कि हम लोग किस तरीका से देखो, बात अगर सिंचाई की करने लिख रहे घर के, तो पहले रेड चलते, तो इंजन आए, बिजली की मोटर आई,
0: बिल्कुल।
1: और अब भैया जो सिंचाई ही रही है ना, बस सौर ऊर्जा से ही रही है।
0: भैया सौर ऊर्जा जो संसाधन है ना, वो अब हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही सुलभता से लग जाता है और बड़ी मदद करता है। बिजली को इंतजार करने पड़तो बाकी ले देखते आ रही है नया आ, और कहूं भैया हवा भी आ रह जात नहीं
1: तो तार गिर गए, खंबा टूट गए,
0: हमारे किसान भैया फसलें सूख जाती जाए इंतजार में। लेकिन अब जो अक्षय ऊर्जा दिवस पे का आपने काऊ से ऐसी बातचीत करी है हमारे किसान भैया से?
1: भैया हम 6 संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत एक गाँव में गए, किसान भैया से बातचीत करी, जहाँ पर उन्होंने सौर ऊर्जा को जो अपनो सिंचाई करने को साधन हो, तो क्यों ना वो बातचीत अपने भैया बहनों को सुनवाई दे।
0: अरे बिल्कुल,
2: आज अक्षय ऊर्जा दिवस है। स्वच्छ ऊर्जा खेती और किसान के जीवन को कैसे आसान बना सकती है, आज इसी बात को लेकर के हम पहुंचे हैं गांव में। हमारे साथ एक किसान भैया है, वो अपना सौर ऊर्जा से अपनी खेती बाड़ी काम करता है, और उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने सौर ऊर्जा लगवाई, क्या क्या फायदे हैं, और सरकार से कैसे जाके सब्सिडी मिली। भैया राम राम।
3: राम राम भैया।
2: क्या नाम भैया?
3: हमारा नाम है सुशील कुमार।
2: अपने जिस गाँव में खड़े हैं, जो गाँव को कर
3: भमोरा,
2: किस ब्लॉक को गाँव?
3: फतेहगंज ब्लॉक, तहसील मीरगंज, जिला बरेली।
2: उम्र कितनी हुई आप?
3: उम्र है लगभग 57 साल।
2: पढ़ाई लिखाई करी आपने?
3: पढ़ाई लिखाई करी है।
2: कहाँ तक करी पढ़ाई लिखाई?
3: बीए करिया।
2: उसके बाद खेती बाड़ी?
3: खेती बाड़ी।
2: हम देख रहे हैं जो सौर ऊर्जा लगी हुई है आपके यहाँ पर खेत पे, जहाँ आपने कैसे और किस तरीका से लगवाई?
3: ये कुसुम योजना के तहत इसमें अप्लाई करी हमने, 2000 रूपए पहले इसके जमा हुए, और उसके बाद 297 रूपए और जमा हुए,
2: 2,97,000
3: छूट काट के, उसके बाद ये यहाँ लगी है हमारी।
2: अच्छा, खेती बाड़ी में काम सही होता है?
3: खेती बाड़ी में काम हाँ सही है, बढ़िया है।
2: सिंचाई को पहले जो साधन हो इंजन से होती, अब बहुत पहले बात करें आपके जमाने के, तो रेट देखे होंगे आपने।
3: रेट हमारा लगा है।
2: रेट तो हाँ आप लगाइए आपको। और जो धूप निकलती हुई तभी चलती हुई?
3: हाँ धूप निकलती तभी चलती है, 10 के करीब। जी
2: कितने किलो वाट की है?
3: ये 7.5 किलो वाट है।
2: तो एक दिन में लगभग कितनी भराई कर देते?
3: एक दिन में जो 6-7 बीघा भरती है।
2: अच्छा, खर्चा तो कुछ होए ना?
3: खर्चा कुछ ना इसमें।
2: एक बार जो आपने 2,97,000 दे दे वही दे दे। अच्छा, ये योजना अच्छी है ना?
3: योजना बढ़िया है।
2: बढ़िया है क्योंकि सरकार की तरफ से आपको या कुसुम योजना के तहत मिली हुई है, और खेती बाड़ी को आप काम करते ही है, और पहले आप बता रहे कि हम रेटों से भराई करते, अब इंजनों से आपने करी हुई, अब जा से कर रहे हो, सब भराई में क्या अंतर है?
3: इसमें अंतर जाए, इसमें जीरो खर्चा है, एक बार पैसा लगा दिए और जीरो खर्चा।
2: अच्छा, जैसे इस समय बरसात का मौसम है तो इस समय तो वैसे ही जुट रहा है,
3: इसमें तो पानी की जरूरत भी ना है, और वैसे बादल भी चलेगी भी नहीं है।
2: ठंड को मौसम आ गएगा फिर कैसे चलेगी?
3: ठंड के मौसम में जो दिसंबर और जनवरी नहीं चलेगी।
2: अच्छा,
3: और धूप निकलेगी फरवरी में तब चलेगी। अच्छा, धूप दिसंबर में निकलेगी तब भी चल जाएगी।
2: कहने का मतलब यह है कि इसके लिए धूप बहुत जरूरी है, और बिना धूप के तो ये काम करेगी ना भाई। जब धूप निकलेगी तभी सिंचाई जरूरत, धूप ना निकलेगी सिंचाई जरूरत भी ना। अब सौर ऊर्जा आएगी, और आज जो है अक्षय सौर ऊर्जा दिवस भी है। सौर ऊर्जा लोग लगा रहे हैं, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, और अब तो अक्सर लोग बिजली की जगह घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यागो
3: हाँ,
2: क्या कहना चाहोगे आप?
3: नहीं, योजना बढ़िया है, योजना बहुत बढ़िया है, और सरकार का जो लक्ष्य है वो उसको लेकर चला, मगर जहाँ सुधारों की जरूरत है,
2: सुधार की भी जरूरत है। नहीं, सही बात है, जब कोई योजना चलती है तो वहां में सुधारों की जरूरत होती है। आप इस योजना के तहत आपने सौर ऊर्जा लई है और खेती बाड़ी में लगवा रहे हो, तो आपको ज्यादा अनुभव हो कि जहां में कितने का सुधार की जरूरत है। लेकिन जो और किसान भैया बहन बे लगवाना चाह रहे हैं, तो कुल मिलाकर योजना अच्छी है,
3: योजना बढ़िया है, योजना में कोई कमी ना है।
2: आपने कैसे करके योजना को आवेदन करो?
3: हम तो कुसुम जो है निकलती है, कुसुम योजना में फॉर्म, तो उसमें फॉर्म पड़ते हैं, उसमें 5,000 रूपए फीस जमा होती है पहले बार ऑनलाइन, फिर उसके बाद लॉटरी द्वारा निकलता है। जैसे
2: अच्छा लॉटरी द्वारा निकलता है, तो कितना दिन का प्रोसेस था लगभग?
3: ये करीब आप जो समझो दिसंबर में कराया था हमने, और फरवरी में हमारा जो है क्लियर हो गया था कि तुम्हारा नाम है उसमें।
2: अच्छा नाम है उसमें। हाँ। अच्छा दस्तावेज की बात करें तो कौन कौन से दस्तावेज?
3: नकल लगी थी और फोटो हमारा और बैंक की पासबुक, ये दस्तावेज लगे।
2: ये आपने ऑनलाइन करा दिया? ऑनलाइन के बाद आपका लाइट सिस्टम निकले, आपको मिल गई। फिर

0: लगने का क्या प्रोसेस था इसका?
1: लगने का जहाँ पैसे उसमें 2,97,000 जमा करके विभाग के नाम से, वो भी ऑनलाइन जमा करे बैंक से ही, रसीद मिल गई, उसके बाद एक महीना बाद वो लोग आए और लगा के चले गए सिस्टम।
0: अच्छा, तो ये 7.5 किलोवाट?
1: 7.5 किलोवाट।
0: बोरिंग कितने इंची का?
1: बोरिंग हमारा है ये 10 का 8 का, इसमें सामान है सब।
0: कितने दिन ही गए लगभग, दिसंबर कौन साल में?
1: ये हमारे 2 साल हो गई।
0: कोई कमी तो ना आई 2 साल में?
1: ना, कभी कोई नहीं है,
0: लगातार चल रही है। अच्छी
1: चल रही है।
0: आज आपकी और हमारी बातचीत रेडियो पर बहुत सारे किसान भी अगर सुन रहे होंगे जो अपने खेत में जो सौर ऊर्जा लगवाना चाह रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे
1: उनके लिए? बस ये हम कह रहे हैं, योजना बढ़िया है, योजना में कोई कमी है, लोग लगवाएं, फायदा लें उसका, खासकर आदमी, मगर थोड़ा विभाग और सरकार देखे इसको बहुत निगरानी से
0: देखें। योजना अच्छी है, कोई कमी योजना में नहीं है, सब्सिडी आपको मिली गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस यह है सरकार थोड़ा ध्यान करे,
1: ध्यान करे कि योजना को सही तरीका से लागू कराना है।
0: यहाँ एक बात हम और पूछना चाहेंगे, का ध्यान करे सरकार, क्योंकि आपको यह योजना को लाभ मिलो
1: है,
0: और जो समस्याएं हुई भी आपके सामने आई हुई,
1: जो ध्यान ये करना चाहिए, जो शिकायत जा रही है जिस पोर्टल पर जा रही है उसकी सुनवाई करना चाहिए, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए इसकी चीज को।
0: समझ गए आपकी बात, की जो कभी समस्या आई हुई आपके पास इसमें सौर ऊर्जा प्लांट में, उसके बाद आपने शिकायत करी, बस शिकायत की सुनवाई
1: नहीं हुई।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, योजना अच्छी है, किसान भाई लाभ लें, लेकिन थोड़ा सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो शिकायतें इसके संबंधित हैं उन शिकायतों को निस्तारण जल्दी से
1: जल्दी कराइए।
0: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुरेंद्र भैया, देखो जब बातचीत आपने करी ही आज हमारे अक्षय ऊर्जा दिवस पर, बहुत अच्छी बातचीत थी आप दोनों लोगों की, और बड़े सहज तरीका से इन्हें बताओ कि आज जो सोलर पैनल है किस तरीका से इनकी खेतीबाड़ी के कामकाज में मदद कर रहा है। और वहीं पर भैया आज के कृषि समाचार में हमारे किसान भैया से काका हुए
0: कन्हैया भैया, कृषि समाचार में हम तो अपने जो किसान भैया उनसे जय कहेंगे कि खरीफ की फसलों में जल निकासी और फसल सुरक्षा पर ध्यान देने को समय है, बरसात में खेतों की नियमित निगरानी जरूरी है।
2: और भैया वहीं पर सामने दीवार में लगी घड़ी अब हमें इशारों कर रही है भैया,
0: इशारों कर रही है भैया कि अब वो सवाल कार्यक्रम में शुरू में पूछो हो,
2: हाँ
0: वो सवाल बता दो, और बहुत से भैया बहनों ने सोशल मीडिया पर सवाल जवाब भी दो है।
2: बिल्कुल,
0: तो सवाल हमने पूछो हो कि बरसात के मौसम में जानवर में गलघोटू बीमारी का खतरा क्यों बढ़ जाता है?
2: जी,
0: तो जाकू जवाब है भैया कि बरसात के मौसम में जो जानवर है ना उनमें गलघोटू को जो खतरा है वो इसलिए बढ़ जाता है, एक तो गंदगी होती है, दूषित पानी हो जाता है, और भैया साफ सफाई बरसात के मौसम में कम होती है, तो विशेष ध्यान रखे हमारे किसान भैया बहन कि जानवरों को दूषित पानी न पिलाएं और साफ सफाई को विशेष ध्यान रखेंगे तो गलघोटू बीमारी न हो।
2: बिल्कुल, और वहीं पर सुरेंद्र भैया चल चल तो पूर्वानुमानित मौसम के बारे में काका हुए
0: भैया, बात करें कल के मौसम के बारे में तो कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने को अनुमान है। कल दिन में एक दो बार बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, बादल जो है भैया आंशिक रूप से घिरे रहने की उम्मीद है, और बरसात को मौसम देखते हुए हमारे किसान भैया बहन खेती बाड़ी में काम करें।
2: और भैया चल चल नसीहत के रूप में किसान भैया से जय कहेंगे कि अपनी जो खेतन में खड़ी फसल है बाकी नियमित रूप से देखभाल करें,
0: और जब देखभाल करेंगे तभी भैया हमें आमदनी ज्यादा हुई। इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र
2: और कन्हैया को दे अनुमति, भैया बहनों
0: राम राम। हर जो

0: बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम में एक बार फिर सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया भैया, देखो आजकल गाँव का माहौल आपने देखा है
1: भैया, गांव के माहौल की जहां बात करो तो वहां पर एकदम बहुत सारे लोग कहीं किसी गली में चले जाओ इकट्ठे मिलते हैं।
0: इकट्ठे का भैया सावन को महीना चल रहा है और इस समय ज्यादातर आदमी है ना भैया, वो जा रहे हैं सावन के महीना में कावड़ लेने। एक साथ इकट्ठे हो गए, सब जल लेने जाता है, जय जय भोले के जयकारे कर चले।
1: सुरेंद्र भैया, एक बात और याद आ रही है हमको, जय एकता में बहुत बड़ी शक्ति है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। आज को हमारा जो विषय है ना भाई चर्चा, वो बहु जय है एकता में शक्ति। यानी एकता तो किसी चीज की सही। अगर देखो जय जो हमारे भैया बहन जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं ले लो, अगर एक काम को 10 आदमी एक साथ ही करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाए, और बे काम को एक एक आदमी करेंगे तो भैया बहुत समय लगे
1: जी।
0: एक उदाहरण बताऊं आपके लिए, हम छोटे छोटे हमारे दादा सुनाते, उन्होंने हमें 4 लकड़ियां दी एक साथ तोड़ने आई।
1: अच्छा,
0: बोले तोड़ कर दिखाओ, हम तो टूट गए ना। तो उन्होंने हमें एक एक करके दी, हमने एक एक करके तोड़ दी। बोले पतो जाओ का मतलब, हमने क्या मतलब दादा बताओ। बोले जाको मतलब जो है, अगर सब इकट्ठे रहोगे तो कुछ तोड़ ना पाओगे,
1: और अलग अलग हो गए भैया तो कोई भी आपको तोड़ सकते हैं।
0: तोड़ सकते हैं, इसलिए एकता में शक्ति बहुत जरूरी है। एक रंगे तो हम सब बने रहेंगे।
1: और भैया वहीं पर देखो, आज अक्षय ऊर्जा दिवस है। आज हम पहुंचे एक गांव में और एक भैया मिले जो कि अपनी चक्की चला रहे। भैया
0: कैसे चला रहे भैया चक्की भी अपनी?
1: उनके छत पर प्लेटें लगी हुई बहुत।
0: अच्छा, तो सौर ऊर्जा से चक्की चला रहे होंगे।
1: हाँ, तो उनसे कुछ बातचीत भैया आज हमारी, तो सुनवा देते अपने श्रोतन को।
0: आओ भैया सुन लेते जो 6 संकलित कार्य।
2: आपका परिचय?
3: मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं ग्राम गैनी का रहने वाला हूँ।
2: विकासखंड कौन सा लगता है?
3: मझगवा।
2: नवनीत जी, क्या उम्र होगी आपकी?
3: मेरी उम्र 21 साल है।
2: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी?
3: मैंने BA कर रहा हूँ।
2: अब हर कोई ना कोई कामकाज करता है अपने जीवन यापन के लिए, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर कोई कामकाज से जुड़ गए हैं?
3: नहीं, मैं कामकाज से जुड़ गया हूँ। मैंने सोलर पैनल का एक प्लांट लगाया, उससे मैं चक्की चलाता हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है, आपने सोलर प्लांट लगाया है और बता रहे हैं आप आटा चक्की चलाते हैं। तो आज अक्षय ऊर्जा दिवस भी है।
3: जी।
2: यानी कि 20 अगस्त को हम अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं, जिसको हम प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसके उद्देश्य को लेकर के किन किन यंत्रों से हम प्राकृतिक ऊर्जा जो है वो बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हमारी आपसे बात हो रही है। क्योंकि आपने भी एक सोलर प्लांट लगाया है जो कि प्राकृतिक रूप से आप ऊर्जा को बना करके उसका इस्तेमाल आटा चक्की चलाने में कर रहे हैं। आप युवा भी हैं, और आपके मन में विचार कैसे आया कि हमें सोलर प्लांट लगाना चाहिए?
3: हमारे मन में ऐसा विचार आया कि अगर लाइट से लगाएंगे चक्की तो लाइट आए ना आए, बारिश का मौसम, और फिर अगर हम डीजल जनरेटर या इंजन वगैरह इस चीज़ से करते तो डीजल भी आजकल बहुत महंगा हो चुका है।
2: जी
3: जी, तो इसी चक्कर में हमने सोचा कि एक बार पैसे पड़ जाएंगे तो हमें 20-25 साल की जो वारंटी है वो एक बार ही मिल जाएगी और हम अपना काम करते रहेंगे। धूप निकलते ही हम अपना काम चालू कर देते हैं।
2: आपके पास में लाइट की भी व्यवस्था सही है, हम देख रहे हैं खंभे भी गड़ रहे हैं, तो आपने इससे क्यों नहीं चलाया?
3: लाइट का वो ही है जो अगर 2 घंटे ना आए 3 घंटे ना आए फिर गांव में लाइट की समस्या ज्यादा है।
2: अच्छा,
3: फिर लाइट का ऐसा काम है कि अगर आंधी या हवा आ रही है तो लाइट का

0: तारे कट जाते हैं,
1: जी
0: गिर जाते हैं, टूट जाते हैं
1: जी,
0: तो इसी चक्कर में खंभे वगैरह टूट जाते हैं। और ये हमारा सूर्य ऊर्जा का ये प्लांट ऐसा है, अगर धूप निकल आए हल्की, ज़्यादा नहीं धूप हल्की आ जाए, तो हमारी चक्की ये चलाती रहती है।
1: अच्छा, ये आपने इस विचार को करके लगाया है कि हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना है, हमारा जो धूप निकलेगी काम शुरू हो जाएगा। ये जो चक्की का काम है, इसके लिए आपने लगभग कितनी प्लेटें लगाई हैं?
0: लगभग हमने 30 प्लेटें लगाई हैं।
1: अच्छा, काम सही चलता है?
0: बिल्कुल।
1: हमारी आपकी बातचीत को आज के कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे श्रोता जो हैं वो सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस अक्षय ऊर्जा के संबंध में, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हम ऊर्जा बनाते हैं वो कितनी सहूलियत देती है, कितनी आरामदायक है, और इससे क्या क्या किया जा सकता है?
0: ये बहुत अच्छा साधन है, और एक बार पैसा लगाओ, एक बार पैसा लगा के आप अपना काम निश्चित समय से कर सकते हो। जैसे बिजली आती है नहीं आती है, और हम बैठे हुए हैं बिजली नहीं आ रही है
1: जी,
0: तो इसी चक्कर में इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है,
1: अपना काम समय पर हो जाता है,
0: अपना काम समय पर हो जाता है।
1: ये जो सौर ऊर्जा का प्लांट आपने लगाया है, ये किस तरीके से लगाया और इसके लिए क्या क्या करना पड़ा आपको?
0: ये हमने जैसे सूर्य पैनल जो लगाएंगे, तो हमने जो ये चक्की वगैरह जो चलाते थे, तो हमने उनके पास गए, उनसे बात की, और जो डीलर थे दुकान, उन्होंने बताया, दुकानें बताई कि वहाँ जाओ, वहाँ अच्छा मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, तो हम वहाँ गए, तो हमने वहाँ लीड लगवा दिया उन्होंने।
1: अच्छा, ये जो सौर ऊर्जा है उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के माध्यम से भी कुछ जो है छूट दी जाती है, क्या आपको वो मिली है?
0: जी हाँ, मैंने फॉर्म भर दिया है।
1: अच्छा, ये कितनी प्लेटों को आपने लगाया है, कितनी पावर आपको इससे मिल जाती है?
0: मैंने 30 प्लेटें लगाई थी, 600 वाट की।
1: अच्छा, ये लगभग आपका कितना काम करती हैं?
0: मेरा 18 किलोवाट है, तो 15 किलोवाट की मोटर है वो चक्की, और चक्की उठाती रहती है। 3 किलोवाट हमने ऐसे लगवाया है, मतलब घर के हिसाब से, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, 3 किलोवाट वो घर चलाते रहे घर में।
1: जी, यानी कि आपका ये घर परिवार का काम भी कर सकती है।
0: हाँ।
1: और अगर किसी स्वरोजगार संबंधी कोई चीज़ चलाना चाहते हैं, जैसे आप आटा चक्की चला सकते हैं,
0: जी, जी, जी,
1: तो इसके लिए जो है पूरी तरीके से ऊर्जा मिलती रहती है?
0: जी जी, पूरी तरीके से ऊर्जा मिलती रहती है।
1: अच्छा, कोई समस्या भी आती है इसमें लगवाने में, या फिर जो हमारे घर के यंत्र हैं उनको चलाने में कोई दिक्कत भी होती है क्या? किस किस्म होती है?
0: नहीं नहीं नहीं, दिक्कत बिल्कुल कुछ नहीं होती, ना लगवाने में दिक्कत होती है।
1: अच्छा, आसानी से लग गया आपका?
0: आसानी से लग जाता है।
1: कहीं ऐसा तो नहीं है लोग लगवाने के लिए शुरू करते हैं तो फिर चक्कर लगाते रहते हैं, काफ़ी समय लग जाता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
1: आपने लगवाया तो आपको लगभग कितना समय लगा?
0: मुझे लगभग 10 दिन में मेरा रेडी कर दिया था, ऊपर जो स्ट्रक्चर पैनल और पीएफडी मेरी 10 दिन में लमसम लगा के रेडी कर दी थी।
1: अच्छा, तो इसके लिए जो यंत्र हम लोग बिजली से चलाते हैं, क्या वो इससे वही चलते हैं या और कोई यंत्र लेने पड़ते हैं?
0: नहीं, इसमें हमें कोई भी यंत्र अलग से नहीं लाना पड़ता है, एक स्टार्टर होता है उसको हम लगा देते हैं, तो वो हमारी सूर्य, जो सूर्य पैनल वाली वो होती है लाइट, उसे बिजली में कन्वर्ट कर देता है वो।
1: अच्छा, घर में वो ही चलते रहते हैं जो यंत्र हम बिजली से चलाते हैं?
0: हाँ,
1: वो ऐसे चलते रहते हैं।
0: वो ऐसे ही चलते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कोई समस्या आती है क्या?
0: समस्या आती है उस टाइम पे, जिस टाइम ज्यादा बादल हो या ज्यादा कोहल वगैरह हो, तो उस टाइम दिक्कत आती है,
1: यानी कि सूर्य अगर कम दिखाई देते हैं तो समस्या होती है,
0: बिल्कुल,
1: बाकी सब सही चलता रहता है।
0: बिल्कुल सही चलता रहता है।
1: आज अक्षय ऊर्जा दिवस है, आपकी हमारी बातचीत को लोग सुन रहे हैं, तो चलते चलते संदेश के रूप में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा आज ऊर्जा दिवस है
1: जी,
0: तो ये काम, मतलब जो काम बिजली से होते हैं वो इनसे होते हैं, और हमारी सरकार द्वारा, और ये लगाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए, जो काम लाइट से हो रहा है वो काम ये कर रही है।
1: जी, आपने अपने अमूल विचार आज अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में हमारे श्रोताओं के बीच में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया सुन रहे हैं 6 संगलित कार्यक्रम। सौर ऊर्जा से आटा चक्की चलाने वाले उद्यमी नवनीत सिंह, जो ग्राम गैनी, विकासखंड मझगवां, तहसील बरेली से, और भैया आपने बड़ा अच्छी बातचीत करी उनसे। और देखो, ऐसे ही अगर हमारे और भैया बहन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। और अब देख रहे हैं सोशल मीडिया पेज पे बहुत सारे हमारे भैया बहन है ना, वे लोकगीत सुनने की भरमास कर रहे हैं।
1: भैया, लोकगीत की जहाँ आपने चर्चा करी और बात करी एकता की, तो कुछ ऐसे ही संदेश दे रो है हमारो जो लोकगीत कछ नाय धरो लड़ाई में।
2: अब सुन लेते जो प्यारो सो लोकगीत।

0: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं लोकगीत, कुछ ना धरो लड़ाई में, यानी कि हमें एक बनकर रहना चाहिए, एकता में ही शक्ति है। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया सुरेंद्र,
1: और कन्हैया को दीजिए अनुमति, श्रोताओं राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनते हैं। अजय ग्राम धर्मपुरा थाना मुजरिया जनपद बदायूं से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी हिनेश दिनांक 3 जुलाई 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 18 वर्ष है। कद 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, चेहरा गोल, ये साड़ी पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश। साथियों, अब श्रोताओं एक अन्य खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। काशी इरम कॉलोनी मीरासराय थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं से मीरू उर्फ कासिम सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी अरसी दिनांक 30 जून 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, चेहरा गोल, ये सूट सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और 3 मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
1: अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील, और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई, साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ITI को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय

0: प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के

0: में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग सांस्कृतिक धरोहरों, तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।
2: आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के कमांडर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं, आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी।
1: उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है।
3: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
1: आकाशवाणी लखनऊ का एफएम केंद्र एफएम रेनबो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में एफएम रेनबो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000048।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार जी।
5: डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार कितना खतरनाक, कराएं कौन सी जांच, और जो हमारे श्रोताओं की शंकाएं हैं उनके समाधान भी आपसे चाहेंगे। इससे पहले हमारे कोई श्रोता आपके समक्ष अपना प्रश्न रखे, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू बुखार वास्तव में है क्या, किस तरह का बुखार है?
6: देखिए, हम लोग अब इस समय तो समाज हमारा कितनी बड़ी बड़ी विभिषताओं से जूझ चुका है
5: जी,
6: तो हम लोग डेंगू को भूल ही चुके थे
5: जी,
6: लेकिन अचानक एक महीने ने दोबारा से डेंगू की याद दिला दी है
5: जी।
6: अच्छा, तो डेंगू बुखार हम भी जानते हैं कि वायरल फीवर है एक, और डेंगू बुखार भी वायरस के जाने के बाद उसके द्वारा होने वाली एलर्जी की वजह से सारे के सारे लक्षण होते हैं, जैसा कि कोविड वायरस बुखार की वजह से होता था
5: जी जी।
6: तो अब हम लोग डेंगू बुखार को नई दृष्टि से, नए अवलोकन से देख रहे हैं। दरअसल डेंगू या डेंगी जिसे कहा जाता है
5: जी
6: इंग्लिश में, वो एक प्रकार का वायरस है
5: जी।
6: वो दरअसल एक वायरस नहीं है, वो चार वायरसेस की एक फैमिली है
5: जी जी।
6: जैसा आप लोगों ने देखा होगा कोविड में म्यूटेशंस हो जाती हैं, हम लोग डेल्टा, बीटा, गामा, लैम्डा की बात करते थे
5: जी डॉक्टर साहब।
6: इसी प्रकार में हम लोग सालों से जानते हैं कि डेंगू के चार प्रकार होते हैं
5: जी,
6: डेन 1, 2, 3, 4
5: जी,
6: और चारों का इफेक्ट एडिटिव होता है
5: जी।
6: एडिटिव का मतलब यह है कि अगर आपको एक बार एक डेंगू बुखार हुआ है
5: जी,
6: तो उस नंबर का बुखार आपको जिंदगी में दोबारा नहीं होगा।
5: अच्छा, ये बात भी है डेंगू के साथ। डॉक्टर साहब, और भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन एक श्रोता लाइन पर इनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं, परिचय दें और डेंगू से संबंधित जो भी प्रश्न हो आपका पूछें।
7: सर, मेरा नाम सुपेंद्र वर्मा, ग्राम झालमुंगा, पोस्ट तहसील आंवला, विकासखंड नरेंद्र, जनपद बरेली से बात कर रहे हैं।
5: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
7: सर, प्रश्न ये है कि ये डेंगू कभी हल्का बुखार आता है, फिर इसके बाद में दवा भी ले लेते हैं, फिर भी ये छोड़ता नहीं है, इसके लिए सर क्या उपाय हो सकते हैं?
5: जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न आप तक पहुंचा है
6: जी। पुष्पेंद्र जी, आपका सवाल ये कि हल्का बुखार होता है फिर भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। बात यह है पुष्पेंद्र जी कि हमारे इतने सालों से सब लोगों में, ज्यादातर लोगों में मन में ये बैठ गया है कि बुखार आ गया तो पैरासिटामोल की गोली खा लो, बुखार उतारने की गोली खा लो, और लोग ये सोचते हैं कि बुखार उतारने की गोली खाने से बुखार को दबा देना इलाज हो गया। जबकि हम लोग कई बार FM पे वार्ता में बता चुके हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं होती, वो तो बीमारी का एक लक्षण है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या। हाँ, तो देखिये, तो जो आजकल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बुखार फैला हुआ है वो एक वायरल फीवर और दूसरा डेंगू बुखार या डेंगू जैसे बुखार है। तो अगर आपको बुखार, हल्का बुखार आया, तो आपको या तो एंटीवायरल दवा लेनी चाहिए उस वायरस को खत्म करने की, और डेंगू को खत्म करने की कोई एंटीवायरल दवा अभी तक रिकमेंडेड नहीं है। तो डेंगू बुखार का फीवर अगर आपको है, तो बुखार के होने वाले लक्षणों को कम करने की या उसके होने वाली दिक्कतों को कम करने का इलाज लेना चाहिए। मैं यहाँ आपको बता दूं कि डेंगू बुखार का सबसे बढ़िया इलाज है ORS का घोल पीना। डेंगू बुखार में होने वाली सारी समस्या, खून आना, सांस फूलना, दिमागी दौरे पड़ना, गफलत में चले जाना, सब चीजों के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो शरीर में पानी और नमक की कमी होना। बुखार और हाथ पैर में दर्द हो, पहले दिन से ORS का घोल पीने लगे तो कोई भी लक्षण नहीं आएंगे और बीमारी मामूली वायरल फीवर।

0: दोबारा चली जाएगी। ऐसा है आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा पुष्पेंद्र जी।
1: जी,
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने ये भी बताया था कि चार तरह का होता है डेंगू बुखार, और एक बार अगर जो बुखार हो जाता है वो दोबारा वापस जीवन भर नहीं होता।
0: हाँ, एक्चुअली ये थ्योरी बताने के पीछे इसका मकसद ये है
2: जी,
0: कि लोग अक्सर इस बात पे अचरज करते हैं कि किसी को डेंगू बुखार हुआ और मामूली बुखार की तरह चला गया और किसी की जान पे बनाई
2: जी।
0: ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: जैसे कि आपने सुना होगा कोविड में कि जिसको एक बार नॉर्मल कोविड हो चुका है उसको बीटा कोविड होने को या डेल्टा कोविड होने से जान का खतरा ज्यादा है।
2: जी जी,
0: ठीक इसी प्रकार से डेंगू के चार म्यूटेशन है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4।
2: अच्छा,
0: एक प्रकार का डेंगू होने के बाद जीवन में वो पूरे शरीर में उस डेंगू के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है
2: जी।
0: लेकिन बाकी किस्म के डेंगू बुखार अगर होंगे तो वो पहली बार की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वजह से ज्यादा बड़े लक्षण पैदा करेंगे। यानी कि अगर आपको पहली बार डेंगू बुखार हुआ तो मामूली वायरल की तरह चला जाएगा, दोबारा हुआ
2: तो वो खतरनाक हो सकता है,
0: ज्यादा तेज होंगे, और अगर गलती से तीसरे चौथी बार हो गया
2: जी
0: तो उसमें आपका रिएक्शन काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा सीरियस होगा,
2: यानी वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न पूछें।
3: जी, मैं सृष्टि मिश्रा बात कर रही हूँ बीतपुर से। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ जब ये बुखार आ जाता है तो इस बुखार में कमजोरी बहुत आ जाती है और पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐसा क्यों?
0: डेंगू बुखार में सब लोग अक्सर ही एक कम्प्लेन करते हैं, मुंह सूख रहा है, कमजोरी आ रही है, खड़े होने पे चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, और ज्यादा कमजोरी बढ़े तो पेशाब आना कम हो जाती है। तो इन सबके पीछे कारण वही होता है, नमक और पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना। डेंगू बुखार की जो प्राइमरी पैथोलॉजी है, जो असली नुक्स होता है, वो ये होता है कि नाड़ियां जिनमें खून होता है वो गीली हो जाती हैं और उनसे प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, यानी कि खून में से पानी निकल के बाहर चला जाता है। तो आदमी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी और नमक की। तो इसलिए हम लोग हमेशा से बताते रहते हैं, अगर बुखार हो और हाथों पैरों में दर्द हो तो पहले दिन से इलेक्ट्रॉल पीना शुरू कर दीजिए। आज के टाइम में जबकि डेंगू बुखार फैला हुआ है, तब हर समय नहीं, अगर यही अगर आपको आज से 4 महीने बाद हो, दिसंबर जनवरी फरवरी में हो, तो वो मामूली वायरल फीवर होगा। लेकिन इस समय अगर आपको बुखार और हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर दें। एक व्यक्ति को 1 से 1.5 लीटर तक ORS का घोल पीने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ORS का घोल पियेंगे तो ना आपको पानी नमक की कमी होगी, ना कमजोरी होगी और ना हाथों पैरों में जकड़न होगी। कुछ लोगों में बुखार से बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद भी कमजोरी रहती है,
3: जी डॉक्टर,
0: वो वायरल फीवर के बाद की वीकनेस है और उसको ठीक करने के लिए मल्टी विटामिन लेने से फर्क पड़ जाता है।
3: जी जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: डॉक्टर साहब, हमारी बात चल रही थी डेंगू के म्यूटेशन के ऊपर। आपने बताया कि चार तरह के डेंगू बुखार होते हैं और पहली बार अगर डेंगू होता है तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसके बाद दोबारा और तीसरी बार चौथी बार जो डेंगू होता है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
0: अब इसका एक पहलू और है मुकेश जी।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: पहलू ये है कि आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को डेंगू बुखार लक्षणों के साथ हो रहा है
2: जी,
0: तो कम से कम 90 मरीज ऐसे होते हैं जिनको अनडिफरेंशियल डेंगू फीवर होता है, मामूली वायरल फीवर होता है।
2: जी जी,
0: आपको याद होगा आज से 3 और 4 साल पहले शहर में जब डेंगू बुखार जैसा फैला था
2: जी,
0: तो ज्यादातर लोग कहते थे ये तो मामूली वायरल है,
2: जी बिल्कुल,
0: डेंगू बुखार क्यों कह रहे हैं।
2: जी जी,
0: क्योंकि इससे पहले WHO ने डेंगू बुखार को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था
2: जी।
0: पहली श्रेणी थी अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर, यानी कि मामूली वायरल फीवर जिसे हम कहते थे
2: जी।
0: वो व्यक्ति अगर जीवन में पहली बार डेंगू हुआ है तो मामूली वायरल की तरह होता था, गले में खराश हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, थोड़ा बहुत दर्द हुआ और 3-4 दिन में मरीज ठीक हो गया।
2: जी डॉक्टर,
0: और जिनको दूसरा और तीसरी स्टेज होती थी, दूसरी स्टेज में प्लेटलेट काउंट कम होती थी और ब्लीडिंग होने के चांसेस होते थे, तीसरी स्टेज में पानी की कमी होती थी।
2: जी डॉक्टर,
0: तो जितने लोग को सिर्फ गले में खराश थी वो सोचते थे मुझे तो मामूली वायरल फीवर है। अब ये कैसे समझाएं कि मामूली वायरल फीवर या जनरल वायरल फीवर नाम की कोई बीमारी
2: होती
0: किसी भी किताब में नहीं लिखी है।
2: जी बिल्कुल,
0: ये तो लोग की भाषा में आ गया कहीं से वायरल फीवर।
2: जी, जी,
0: उस वायरस का नाम तो चाहिए ही, जैसे हम कहने लगते हैं कि बुखार हो गया है,
2: बिल्कुल
0: बुखार कोई बीमारी थोड़ी है, वायरल फीवर भी कोई बीमारी नहीं है।
2: जी,
0: वो वायरस अधिकतर लोगों में जो आज से 3-4 साल पहले जिनको मामूली गले की दिक्कत हुई थी उन सबको पहली बार डेंगू फीवर हो चुका
2: जी।
0: तो इन लोग को जब

0: डेंगू फीवर होगा या दूसरी स्ट्रेन का डेंगू होगा तो वो तेजी से लक्षण दिखाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: यही है कि हर बार जब नई जो इस खास तौर से इस बार जो लोग लक्षण लेके आ रहे हैं उनमें बड़ी एक भयंकर बात देखने को मिल रही है कि 2 या 3 दिन के बुखार में ही लोगों को ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है, गुर्दे खराब हो जा रहे हैं या लोग काफी सीरियस हो जा रहे हैं।
1: वाकई में डॉक्टर साहब, हम इस बारे में भी बात करेंगे आपसे। एक श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
2: नमस्कार सर, मैं उमेश कश्यप बात कर रहा हूँ, ग्राम जनक जागीर भोजपुरा बरेली से। नमस्कार सर, मेरा सर सवाल ये है कि इसमें मौसम चेंज हो रहा है सर, तो हल्का सा बुखार आता है और जुकाम लगती है, तो ये सर डेंगू के लक्षण है क्या? डेंगू से बचने के क्या उपाय हैं सर?
0: कश्यप जी, आप बाकी सारे बुखार इस समय भूल जाइए। जब शेर जंगल में खुला हो तो लोमड़ी और गिद्धों और खरगोशों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय हमारे आंकड़ों के हिसाब से बरेली और इसके आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इसके आसपास के इलाकों में भी डेंगू जैसे बुखारों का बहुत प्रकोप है। तो इस समय अगर किसी को भी बुखार हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले डेंगू की जाँच करा लें और घबराए ना, क्योंकि डेंगू बुखार का इलाज सबसे सिंपल है, एक ही इलाज है और वो है ORS का घोल पीना। वायरस कौन से वायरस का बुखार है, कौन से वायरस की वजह से बुखार है, ये पकड़ पाना शुरू के पहले दूसरे दिन में बहुत संभव नहीं होता है, लेकिन डेंगू बुखार के लिए एक टेस्ट बन चुका है जिसका नाम है NS1। तो NS1 टेस्ट कराने से पहले दिन ही पता चल जाता है कि जिसको आप वायरल फीवर समझ रहे हैं वो मामूली गले का वायरस है या डेंगू फीवर है। ठीक है
1: जी, धन्यवाद कश्यप जी फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने जांच की बात की तो डेंगू बुखार के लिए खास तरह की जांच है, क्या इसके अलावा कोई और भी जांच है या फिर किस खास तरह के लक्षण हो जबकि जांच कराई जाए?
0: डेंगू बुखार में कौन सी जांच कराने के लिए हमारे को बुखार की क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: जैसे हमने बताया कि डेंगू बुखार की पहली परेशानी है नाड़ियों का लीक करने की वजह से, नाड़ियों का गीले होने की वजह से घूमने वाले पानी का कम हो जाना या ब्लड की कमी हो जाना।
1: जी,
0: इसमें व्यक्ति को ना पसीना आता है ना डायरिया होता है, फिर भी पानी की कमी हो जाती है और मुंह सूखता रहता है।
1: जी डॉक्टर,
0: क्योंकि नाड़ियां जो हमारे पूरे शरीर के अंदर पतली पतली नाड़ियां जो खून का दौरा करती हैं, उनसे पानी लीक होके बाहर चला जाता है और जब पानी लीक होके जाता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने लगता है।
1: जी,
0: हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन दरअसल एक परसेंटेज है खून के अंदर लाल रंग या लाल अवयवों के होने की मात्रा।
1: जी,
0: तो जब पानी कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगता है। जितने लोग गांव देहात से आते हैं वो सिर्फ प्लेटलेट काउंट की जांच करा के आते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम इनको बार बार समझाते हैं कि सिर्फ अकेले प्लेटलेट काउंट की जांच होने से कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की जाँच या PCV की जाँच होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: आपको याद होगा आज से 5-6 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने सुबह जांच कराई तो इतने प्लेटलेट निकली और 2 घंटे बाद जांच कराई तो प्लेटलेट ज्यादा निकले।
1: जी जी डॉक्टर,
0: तो वो भी इसलिए होता है कि जब आपको IV फ्लूइड चढ़ा दें या थेरेपी दे दें या ग्लूकोज चढ़ा दें, पानी की मात्रा बढ़ जाए तो प्लेटों की संख्या बदल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो यह है इसकी प्राइमरी पैथोलॉजी, यानी कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन की जांच होना जरूरी है, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की। हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई है तो व्यक्ति को पानी की कमी है, उसको या तो ORS का घोल पीना चाहिए या फिर IV फ्लूइड्स लगवाने चाहिए। सबसे पहले होती है WBC की कमी।
1: जी जी,
0: यानी कि जो श्वेत कण जो होते हैं,
1: जी,
0: सबसे पहले वो कम होते हैं।
1: अच्छा,
0: और उनके कम होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आगे प्लेटलेट कम होने वाले हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: और उसके बाद RBC भी कम हो सकते हैं।
1: जी,
0: और उसके बाद प्लेटलेट काउंट कम होने का नंबर आता है।
1: जी
0: मुकेश जी, हम लोगों ने हमेशा से बायोलॉजी में पढ़ा है, 9th, 10th, 7th में भी, जो लोग इतनी बायोलॉजी सब लोग जानते हैं।
1: जी,
0: कि कोई भी कोशिका या कोई भी सेल जिंदा तभी माना जाता है जब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
1: डॉक्टर साहब, हम अपनी बात जारी रखें, एक श्रोता लाइन पर है इसी बीच। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न पूछे।
3: सुधीर कुमार सक्सेना, ग्राम जनक जागीर भोजपुरा बरेली से बात कर रहे हैं।
1: जी
0: पूछिए, सवाल पूछिए।
3: सर ये है कि ये जो ये मौसम खराब हो रहा है तो इसमें ये डेंगू की कोई ज्यादा शिकायतें हो रही हैं, तो इसके लिए सर क्या हम बचाव करें?
0: देखिए, बचाव के तरीकों पे तो सरकार ने इतने सारे पोस्टर और कागज निकाले हैं और बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि ये जो है शहरी मच्छर है, ये साफ जगहों पे होता है, साफ पानी में होता है, घर के ऊपर आपकी जो टायर पड़े हैं उसमें होगा, कंप्यूटर के केस में होगा, और हम लोग अक्सर यही एग्जांपल देते हैं, मिसाल बताते हैं, ये आपको शहर के अंदर मिलेगा तो आपको घरों के अंदर छतों के ऊपर कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए था। डेंगू ना हो

0: उससे बचने के लिए तो वही पुराने लक्षण है, पूरी बाहों के कपड़े पहनिए। लेकिन जो हमारी वार्ता से आप फायदा उठा सकते हैं वो ये है कि अगर बुखार हो जाए गलती से तो कैसे उससे आपको नुकसान ना हो। और उसी के विषय में हम बात कर रहे हैं कि अगर आज की तारीख में साहब बहुत सारे क्षेत्रों से डेंगू जैसी बीमारियां आ रही हैं, तो अब वो सफाई करके बचाव करने वाला टाइम निकल गया। अब तो आप ये समझें कि अगर किसी को बुखार हो रहा है और हाथों पैरों में दर्द हो रहा है तो वो पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर दे अगर उसे शुगर नहीं है तो, और शुगर है तो नमक पानी का घोल पीना शुरू कर दे तो पानी की नमक की कमी नहीं होगी और ये बुखार मामूली वायरल बुखार की तरह चला जाएगा। सुधीर कुमार सक्सेना जी भोजीपुरा से, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डेंगू बुखार का मेन इलाज जो है वो ORS का घोल पीना है। अभी कल भी मेरे पास किसी एक अस्पताल से एक मरीज आए जिन्होंने बताया कि जिनकी प्लेटलेट 20,000 रह गई थी और वो 4 दिन में 20 प्लेटलेट चढ़वा चुके हैं और एक जम्बो पैक चढ़वा चुके हैं। तो मुझे उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन इस तरह के इलाज को देख के हंसी आई। प्लेटलेट काउंट कम होने से कुछ नहीं होता है, प्लेटलेट काउंट क्यों कम हुई इस बात का इलाज करना होता है। प्लेटलेट कम होना, कमजोरी होना, लीवर में सूजन आना, चक्कर आना, बीपी कम होना, इन सबकी एक ही वजह होती है सर्कुलेटिंग फ्लूइड का कम होना, पानी और नमक की कमी होना। अगर आप पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी।
1: ठीक है,
2: धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इन श्रोता को भी बताया कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्लेटलेट काउंट के पीछे जो वजह है, कम होने के पीछे वजह है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: इसमें एक और बड़ा वाक्य है, एक बड़ी अच्छी बात है मुकेश जी, मैं आपको बताऊं।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: वो जो लोगों में भ्रांति है प्लेटलेट काउंट को लेकर, जो लोग परेशान होते हैं
2: जी,
0: उन्हें ये मालूम नहीं है कि अब जो ज्यादातर शहरों में क्या हो गया है, छोटे छोटे गांव देहातों में लोगों ने वो चाइनीज वाली 1.5 लाख रुपए की मशीनें लगा ली हैं
2: जी,
0: जो TLC CBC करके दे देती हैं।
2: बिल्कुल,
0: आप जानते हैं वो कैसे काउंट करती हैं
2: जी?
0: उनके सॉफ्टवेयर में 3 आकृतियों को देखने की क्षमता होती है।
2: अच्छा,
0: अगर वो साइज मैक्रॉन का बिल्कुल गोल सा स्ट्रक्चर है तो वो उसको RBC गिन देती है।
2: ओ।
0: अगर वो 32 से 30, 28 माइक्रॉन का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है
2: जी,
0: टेढ़ी मेढ़ी चीज है, तो उसे WBC काउंट कर देती है। और इन दोनों के बीच में टूटी फूटी सी लकड़ियां जैसी जो चीज होती है उनको प्लेटलेट्स गिन लेती है। तो ये जो प्लेटलेट्स हम लोग गिनते हैं, दरअसल ये वयस्क प्लेटलेट्स या बूढ़े प्लेटलेट्स या जिन्हें कहा जाए प्लेटलेट्स की लाशें होती है।
2: ओके।
0: हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, क्या पूरे जगत में सेल वही जिंदा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
2: जी जी जी।
0: जब न्यूक्लियस नहीं होता तो वो सेल डेड या फिर इनएक्टिव हो जाता है।
2: बिल्कुल।
0: तो ये जो प्लेटलेट्स, जो ओरिजिनल प्लेटलेट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लेटेड प्लेटलेट्स
2: जी,
0: उनको देख पाना इन छोटे सेल काउंटर से संभव नहीं है।
2: बिल्कुल।
0: उसको
2: बिल्कुल।
0: देखने के लिए दूसरी कला का किमोफ्लोरेसेंस का मशीन यूज करनी पड़ती है
2: जी,
0: और उसे इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन देखा जाता है
2: जी,
0: यानी कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस वाले प्लेटलेट्स कितने हैं
2: जी जी जी।
0: तो ये न्यूक्लियस वाले प्लेटलेट्स दरअसल यही सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर,
0: तो आपने देखा होगा कई बार के प्लेटलेट संख्या 1,000 रह गई या 10,000 रह गई
2: जी,
0: तब भी मरीज को ब्लीडिंग नहीं हो रही है
2: जी।
0: और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट संख्या 1,00,000 है फिर भी उन्हें ब्लीडिंग हो रही है,
2: हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर,
0: वो होता इसलिए कि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव प्लेटलेट्स हैं, इमैच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन है, वो अच्छा होना चाहिए
2: जी।
0: हमसे मरीज आके पूछते हैं कि बताइए कि मेरे प्लेटलेट्स गिरेंगे या बढ़ेंगे
2: जी,
0: या मुझे प्लेटलेट चलाने की जरूरत है, तो हम सबसे पहले उनका इमैच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन कराते हैं।
2: अच्छा।
0: और अगर वो अच्छा है तो हम कहते हैं आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है
2: जी,
0: आप ORS का घोल पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे।
2: डॉक्टर साहब, डेंगू के विषय में ये कहा जाता है कि डेंगू बुखार में ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में डेंगू में बेहोशी किसी खतरे की ओर अलार्म करती है, इंगित करती है?
0: देखिए, डेंगू बुखार में बेहोशी होने के मोटे मोटे 3 कारण हो सकते हैं
2: जी।
0: पहला कारण होता है डेंगू बुखार की वजह से दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस हो जाना
2: जी।
0: और दूसरा कारण होता है डेंगू की वजह से, लीवर पे असर होने की वजह से अमोनिया का बढ़ जाना जिससे व्यक्ति का बेहोश हो जाना
2: जी जी।
0: और तीसरा, अगर लंबे समय तक बीपी कम रहे तो व्यक्ति रीनल फेलियर में जा सकता है और यूरिया बढ़ने की वजह से बेहोश हो सकता है,
2: यानी किडनी पे असर आता है सीधा
0: किडनी पे जी हाँ। तो जो इसमें से जो दिमागी बुखार है
2: जी,
0: डेंगू की वजह से होने वाला दिमागी बुखार है
2: जी,
0: इसका इलाज करना बड़ा आसान है।
2: अच्छा,
0: इसमें अगर आप एसाइक्लोविर इंजेक्शन, मतलब एंटीवायरल इंजेक्शन

0: लगाते सही व्यक्ति को बहुत अच्छा फर्क आ जाता है।
1: अच्छा।
0: इनफैक्ट अगर हमने जितनी बार देखा गया डेंगू की वजह से जो लोग इंसेफ्लाइटिस जैसे लक्षण लेके आते हैं
1: जी
0: वो बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं।
1: जी
0: और दूसरा कारण है लीवर की दिक्कत होना। और ये अब हम लोगों ने अब सब जगह अमोनिया नापने के इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान ये सब जांचें बढ़ा ली हैं,
1: जी
0: इनसे डेंगू के मरीजों में भी जांच करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो
1: अच्छा
0: जो सीरम अमोनिया जिनका बढ़ जाता है लीवर की दिक्कत होने की वजह से,
1: जी
0: उनका अमोनिया कम करने की दवाई दो तो वो होश में बिल्कुल तेजी से आ जाते हैं। पर
1: अच्छा
0: अमोनिया ठीक होने में कई बार दो दो तीन तीन चार चार दिन ले लेता है।
1: जी। इस हालात में फिर मरीज को अस्पताल में एडमिट रहने की जरूरत होती है।
0: मैक्सिमम अस्पताल में मरीज को एडमिट नहीं आईसीयू में रखना पड़ता है, क्योंकि
1: ओके
0: तो जो अमोनिया बढ़ने की वजह से व्यक्ति बेहोश होता है वो पूरा बेहोश नहीं होता है,
1: जी
0: वो एजिटेटेड होता है, हिंसक होता है, हाथ पैर पटकता रहता है,
1: जी
0: मतलब अर्धमूर्छित या अर्धविक्षिप्त अवस्था में होता है समझ लीजिए। तो
1: जी जी
0: अगर ऐसा व्यक्ति और प्लेटलेट काउंट पहले से ही कम है, अगर चोट लगा लेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, तो
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब।
0: अक्सर ऐसे व्यक्तियों को सुला के रखना पड़ता है।
1: अच्छा
0: अमोनिया बढ़ने की वजह से जो दिमागी असंतुलन होता है उसका असली इलाज होता है कि पखाने के रास्ते की धुलाई करना
1: अच्छा
0: और सीरप देना जिससे बार बार मोशन आए,
1: जी
0: और कुछ
1: जी
0: इंजेक्शन है वो लगाना।
1: जी
0: दिमागी जो लीवर की वजह से जो लोग बेहोश हो जाते हैं
1: जी
0: उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा कभी कभी बेचैन हो जाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ऐसा व्यक्ति ठीक होने में तीन तीन चार चार पांच पांच दिन लगा देता है।
1: जी
0: हमने कई बार यहाँ पे देखा कि व्यक्ति बेहोश है, जहाँ तीसरा दिन हुआ तो एक सिंड्रोम होता है भर्ती मरीजों में तीसरा दिन का सिंड्रोम,
1: जी
0: कि कोई भी रिश्तेदार मिलने का कहना अरे आज 3 दिन हो गए मरीज को होश नहीं आया।
1: जी
0: अब ये 3 दिन का कौन सा वो है कि तीसरे दिन अगर व्यक्ति होश में नहीं है तो लोग परेशान होने लगते हैं, आज 3 दिन हो गए मरीज होश में नहीं है। तो
1: जी जी
0: लीवर की दिक्कत होने से होश में आने में व्यक्ति को 5 6 7 दिन भी लग सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। बस इस दौरान वो उल्टी ना कर लें, हलक में ना चली जाए, बेड
1: जी
0: सोर ना बन जाए, या अपने
1: ओह
0: आप को चोट ना मार लें, इसका ध्यान रखना होता है।
1: डॉक्टर साहब, खतरनाक कब होता है डेंगू? जबकि एक तरह से जान का जोखिम हो जाता है।
0: मुकेश बाबू,
1: जी
0: मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे पेशेंट देखे हैं
1: जी
0: जो 1 मिनट के अंदर वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम,
1: ओके
0: वो जिनमें जब एसिडोसिस हो जाती है,
1: जी
0: मतलब जिनके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है,
1: जी
0: उनको एकदम से बीपी कम होता है, ऐसे व्यक्ति आते 2 दिन का बुखार की बात कही, और ऐसे व्यक्तियों में अधिकतर पहले डेंगू हो चुका होता है
1: जी
0: और वो कुछ भी करने का मौका नहीं देते। इस सीजन में भी मैं कम से कम 2 से 3 व्यक्ति ऐसे देख चुका हूँ,
1: जी
0: लेकिन दोनों तीनों में बात एक कॉमन थी,
1: जी
0: वही दोनों तीनों ने फ्लूड नहीं लिया था, वायरस का घोल नहीं पिया था, जहां से इलाज करा रहे थे वहां पे उन्होंने आईवी फ्लूड नहीं लगाया था। हम लोगों
1: ओके
0: ने 5 साल 4 साल पहले भी सब जगह सीएमई कर करके लोगों को बताया था,
1: जी
0: गांव देहात के डॉक्टर को भी, पेरिफेरी में भी, कि डेंगू फीवर के जो 3 फेज हैं
1: जी
0: पहले फेब्राइल फेज में सबसे ज्यादा ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, और ग्लूकोज चढ़ा के हाइड्रेट कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी।
1: यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं डेंगू बुखार में जो ओआरएस घोल आप बता रहे हैं या जो फ्लूड चढ़ाने की बात बता रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जी
1: इलाज
0: हाँ
1: की शुरुआत उसी तरह से होनी चाहिए
0: जी हाँ जी हाँ
1: और सभी हमारे श्रोताओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों जल भराव की जहां तक बात है डॉक्टर साहब, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो बरसात हुई है पिछले दिनों में, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास खेतों में सब जगह जल भराव है। ऐसे में मच्छर ज्यादा से ज्यादा पनप सकते हैं
0: जी हाँ
1: और बीमारी को और बढ़ा सकते हैं।
0: मुकेश जी, डेंगू के ऊपर इतनी सारी रिसर्च चल रही है,
1: जी
0: इतने सारे टेस्ट, इतने सारे इंटरवेंशन, इतनी सारी दवाइयाँ और इतने सारे इलाज करने के तरीके आ चुके हैं, तरकीबें आ चुकी हैं,
1: जी
0: कि अगर बहुत बिगड़ने से पहले, मतलब बिल्कुल ही डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने से पहले अगर व्यक्ति आ जाए तो
1: जी
0: व्यक्ति बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं,
1: जी
0: और किसी की भी मृत्यु अब डेंगू बुखार से नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसी ही कामना करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी कि कोई भी व्यक्ति डेंगू की वजह से अपनी जान न खोए, ये हमारी कामना है। बहरहाल सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और डेंगू की जो प्रमुख वजह है मच्छर, उससे अपना बचाव करना है। अगर डेंगू की बीमारी हो जाए तो घबराना नहीं है, इलाज कराना है, उचित तरह से इलाज कराना है और उचित जांचों की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, न सिर्फ डेंगू बुखार से संबंधित बल्कि जांचों के विषय में जो आपने

0: जानकारी दी है। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
1: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू।
3: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
1: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दें कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम लकी थ्री और मनभावन में अपने कमेंट्स हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457395859। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457395859।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती ममता सिंह का कविता पाठ।
2: इस कविता का शीर्षक है करते कोशिश जो। करते जो हैं परिश्रम वो फल पाते हैं, आज ना

इस गजल का शीर्षक है नजरों में जिनके। जो कर न सको ऐसा कोई काम नहीं है, जो

अपनों को यहाँ अपने ही ध्यान नहीं है, अपनों को यहाँ अपने ही ध्यान नहीं है। जब हर हाल में है जीना तो हंस के ही जियो, जब हर हाल में

संघर्ष है ये जीवन आसान नहीं है। इस गीत का शीर्षक है प्यार में प्यार हो। जब भी

हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती ममता सिंह का कविता पाठ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नितिन मुकेश के गाए भजन।

नितिन मुकेश के गाए इसी भजन के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार। घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट सीन।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना आरजू फिल्म का ये गीत।
1: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पीजीआईएमएस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18 विधानसभा।

0: FM रेनबो, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: तुम सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हमारी सुबह की मुस्कान हो, बच्चों की हंसी हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो। माँ की रसोई के साथी हो, पापा की शाम की चाय हो, दादी के पुराने गीत हो और पूरे परिवार के यादों का हिस्सा हो। मैं आपकी नन्ही दोस्त तविष्का। हैप्पी बर्थडे रेनबो।
2: नाच गुड्डू टमकू, आलू कचालू खा लड्डू, मुर्गा बोला कुकड़ू।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था हम है राही प्यार के। और इसी के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की

0: एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा

0: कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जुड़ जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उससे को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जब बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन आईसीटी है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को

0: कराया। ओली दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा ज्वाली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है योगेश ने। तर्ज है सलील चौधरी की, फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से पहली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और

0: संस्कृति का संगम।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है पड़ोसन।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है पासपोर्ट।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

0: हुआ।
1: पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

एक पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ आगे बढ़ रहे थे।

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया और बस वो रम गए इस किरदार में।

0: खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

बारह में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

कि वो अब अच्छी स्टोरी देखकर ही फिल्म साइन करते हैं, क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीक से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शिफ्ट। शिफ्ट फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग की। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: FM रेनबो, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू जी।
0: तुम सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हमारी सुबह की मुस्कान हो, बच्चों की हंसी हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो। माँ की रसोई के साथी हो, पापा की शाम की चाय हो, दादी के पुराने गीत हो और पूरे परिवार के यादों का हिस्सा हो। मैं आपकी नन्ही दोस्त तविष्का। हैप्पी बर्थडे रेनबो।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। रात का ये समय यादों का भी होता है। कुछ यादें मुस्कुराती हैं, कुछ हल्की सी नमी छोड़ जाती है।

रात की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि ये दिल की आवाज़ को साफ सुनती है। बस कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ गीतों से कही जाती हैं।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहां।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे जान हो जाए।
2: हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना अनपढ़ फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में अगला गीत। फिल्म का नाम है अनुपमा।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था भीगी रात। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रजनीश मिश्रा का तबला वादन, ताल 3 ताल।

0: हारमोनियम पर लहरा था दीपक चौबे का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनो ना।
4: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा

0: रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaiji during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The PM noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post.